0: 5527-0897 or visit astrologereeshwar.com.
1: अरे अरे अरे, डैलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं, बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है, तारा कमर्शियल एनर्जी। 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर, होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स, कॉम्पिटेटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस। तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर 2 decades. कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे। तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे।
2: जिंदगी एक रंगमंच है
3: और घर ढूंढना सिर्फ इंटरवल। असली क्लाइमेक्स तो तब है जब क्लोजिंग स्मूथ हो, पेपर वर्क क्लियर हो और चाबी आपके हाथ में हो। पर्दा गिरने से पहले फर्स्ट यूनाइटेड टेक्सास टाइटल, हम पक्का करते हैं कि घर सच में आपका हो, हर कदम आपके साथ।
4: कॉल 972-897-1530, firstunitedtexastitle.com।
3: रेस्टोरेंट चूज करना हो, गूगल रिव्यूज। होटल बुक करना हो, गूगल रिव्यूज। लेकिन बच्चों के डॉक्टर की जब बात आए तो एक ही रिव्यू सबसे इम्पोर्टेंट होता है, माँ का रिव्यू।
4: इसलिए डॉक्टर फरहाद हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज अ DFW चाइल्ड मॉम अप्रूव्ड पीडियाट्रिशियन फॉर 4 consecutive years, 2023 through 2026। मीट डॉक्टर निशात फरहाद एट पैशन हेल्थ पीडियाट्रिक्स, सर्विंग फैमिलीज एट फ्रिस्को एंड ऑब्री, स्टार्टिंग एट द एंड ऑफ ऑगस्ट। पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर, बिकॉज एवरी हेल्थी स्माइल बिगिंस विद ट्रस्टेड केयर। कॉल 214-666-6259 एंड शेड्यूल योर अपॉइंटमेंट्स टुडे।
5: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट्स के बिना अधूरी लगती है तो ये खबर आपके लिए। दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स, तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम। चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स। डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्डन, वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन।

0: Lawson Travels Cruises. Honeymoons, custom family trips, stress-free travel every mile. Call 214-631-2458 today.
1: आज ही सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे?
2: इंडिया में? तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं, वो कैसे अटेंड करेंगे?
1: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा।
2: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
1: सच में सब संभालेंगे?
2: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर। वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह। सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
0: कॉल हरी बसेरा ऑन 4694428770. Vanessa Events, your celebration partner.

guys, we are back. Back तो नहीं, back ही है. कल से तो back ही हो गई हूँ. लेकिन this is Ippy the Hippy and you guys are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM and this is my show. Can you sing it with me? An evening in Dallas. That is right, guys. कैसे हैं आप सभी लोग? मैं तो ठीक हूँ. आज कुछ ज़्यादा ही गर्मी नहीं है. I mean, सुबह सुबह लग रहा था कि उतनी गर्मी है नहीं. लेकिन आई थिंक जब तक क्या बोलते हैं, एज द डे काइंड ऑफ प्रोग्रेस्ड, आई फील लाइक द सन जस्ट काइंड ऑफ गॉट टू मी. आई मीन, आई डोंट नो अबाउट यू गाइज, बट डेफिनेटली इट गॉट टू मी, राइट? सो ट्राई टू स्टे कूल, बिकॉज यू नो दिस गर्मी इज गोना गो ऑन ऑल द वे टू द एंड ऑफ ऑगस्ट एंड इवन अंटिल सेप्टेम्बर. सो प्लीज मेक श्योर यू स्टे कूल, ओके? So guys, aage badhte hue, let's start the day with some really nice tunes and then we will talk about lots of things.

Guys, did you hear this? I came across this really amazing thing. Apparently, New York they have started introducing AI-powered robots into classrooms in schools, okay? Which means like a humanoid robot looks exact. जैसे वो नहीं movie देखी आपने कृति सैनन की and शाहिद कपूर वाली जिसमें she's a humanoid robot, but actually, I mean, you know, he thinks she's a real girl, but she's a robot, right? It's basically something like that, but inside classrooms. लेकिन न्यूयॉर्क स्कूल डिस्ट्रिक्ट हैज़ फाइनली डिसाइडेड कि नहीं भाई इसको पॉज लगाते हैं, ये कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, बिकॉज वी डोंट वॉन्ट अ रोबोट टीचर इन द क्लास रूम. कैन यू इमेजिन योर लाइफ कि अगर ये ना, इस पर बहुत मूवीज़ बनी हुई हैं, हॉलीवुड में तो बहुत सारी मूवीज़ बनी हुई हैं कि यू नो देर इज़ अ ह्यूमनॉइड फॉर्म एंड पीपल आर हैविंग कॉन्वर्सेशंस लाइक फुल ऑन. अभी तो खैर आई नो सो मेनी पीपल दे आर यूजिंग चैट जीपीटी एज देयर थेरेपिस्ट बिकॉज थेरेपी इज़ प्रॉबेबली मोर एक्सपेंसिव एंड अ चैट जीपीटी सब्सक्रिप्शन इज़ नॉट दैट एक्सपेंसिव. हाउएवर कैन यू इमेजिन इफ लाइक अ ह्यूमनॉइड रोबोट लाइक लुक्स एंड यू नो टॉक्स लाइक अ रियल पर्सन बट इज़ अ रोबोट इज़ एक्चुअली टीचिंग योर किड्स थिंग्स. I mean, I don't know how would that be? How would you think it would be? लेकिन आगे बढ़ते हुए guys, उसको छोड़ के अगर आप अपने finances के बारे में सोच रहे हैं and if you're talking about your financial future, retirement, growing your investments, then you know you need to check out My Time Equity led by CPA Sudhir Pai because it helps individuals and families build smarter financial strategies through portfolio management, real estate opportunities and alternative investments. Okay, they have personalized goals designed, they have personalized solutions designed around your goal. Call 469-702-1272 or visit mytimeequity.com. by the way guys, you should do it sooner than later because there is a new bill that is apparently, I just saw that is introduced, where they are saying all the H1B holders, they are going to start taxing if your investments, especially if you're a non-resident person, so anyone who's on a visa basically, if your investments are going to go above $60,000, then they're going to start taxing, which is currently at like, I think $15 million or something like that. So, abhi bahut leeway hai us pe, lekin you should look into it. I just quickly read across that, so mujhe exactly full details nahi pata, but do your own search. However, don't wait for that bill to pass. Start investing in your future today, right? आगे बढ़ते हुए गाइस, आपको पता है ना आज थर्सडे हो चुका है और दो दिन बाद क्या होने वाला है, दो दिन बाद प्रभु देवा का कॉन्सर्ट होने वाला है. आपने टिकट्स ली कि नहीं अपनी? देखो भाई, अगर आपने वीकेंड के प्लान्स नहीं बनाए हैं तो बना लो. मथांगी एंटरटेनमेंट ग्रुप ब्रिंग्स इंडियाज माइकल जैक्सन प्रभु देवा लाइव टू DFW. उनके साथ है लॉरेन गोटलिएब, सोनल भदौड़िया, अलेक्जेंडर नोल, हनीदी नीलकंतन, Natasha Sharpa and Sanve Meghna for the ultimate pan-Indian dance concert. Saturday 1st August ko hai at the Texas Trust CU Theatre in Grand Prairie. Book your tickets now. Call 248-2333-3828. Or agar wahan se nahi jana chahte hain, then you can go directly to any of the Funasia's social media pages and you will be directed to a link for the tickets directly over there.

0: right, guys, we are back. I had a very long conversation abhi. Gurmeet ji, thank you so much for your calls. Agar aapko aur bhi kuch information chahiye, to feel free to reach out to Phanesia. Aur I'm sure aapki calls wo answer kar denge. Aur aapki queries answer kar denge. By the way, guys, that song was Main Bolu Glass Aadha Khali from Jaane Tu Ya Jaane Na. Kind of jazzy, hai na? तो अगर आपको वैसे ही ब्लूजी और जैजी गाने सुनने हैं, आई विथ माई बैंड आई एम परफॉर्मिंग ऑन 1st of August, विच इज दिस सैटरडे एट स्टीव्स वाइन बार एट 7 PM. इट्स अ वेरी पर्सनल शो टू मी, क्योंकि इट इज माई कमिंग बैक इन टू द ब्लूज आफ्टर ए लॉन्ग टाइम. एंड इट्स गोइंग टू बी अमेजिंग, बिकॉज मेरे बैंड के साथ आई हैव इन्वाइटेड अ बंच ऑफ गेस्ट आर्टिस्ट एंड एवरीथिंग. सो इफ यू डू वॉन्ट टू चेक आउट मोर म्यूजिक लाइक दैट, डू कम बाय. इट्स गोइंग टू बी सुपर फन. वी आर गोइंग टू प्ले म्यूजिक ऑल नाइट एंड देन देयर इज गोइंग टू बी एन ओपन जैम. तो अगर आप कोई इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, गिटार बजाते हैं या ड्रम्स बजाते हैं, एंड यू वॉन्ट टू प्ले जैम ऑन सम ब्लूज ट्यून्स, तो जरूर आइए एंड यू कैन सिट इन ऑन द शो. दैट्स राइट. लेकिन इट हैज टू बी ब्लूज, बिकॉज दिस इज द सेलिब्रेशन फॉर इंटरनेशनल ब्लूज डे. तो गाइज, आगे बढ़ते हुए, आपको पता है ना कि लाइफ में आज पता क्या हुआ, बाय द वे इट्स टोटली रिलेटेड टू वॉट आई एम सेइंग. आज आते हुए ना, आई वॉज ड्राइविंग फ्रॉम डैलस. मैं डैलस में रहती हूँ. डैलस से आई वॉज ड्राइविंग टू मिकिनी, जहाँ पे हमारा ऑफिस है. आते आते मैंने देखा कि कस्टर रोड पे ना इतनी सारी कंस्ट्रक्शन हो रखी है. मतलब बीच वाली लेन ब्लॉक्ड है, साइड से दोनों लेन्स खुली हुई हैं, लेफ्ट और राइट वाली, लेकिन मिडल वाली लेन पूरी तरह से ब्लॉक्ड है. और एक ट्रक ने मतलब बीच वाली लेन में डाल के किसी और से मतलब बड़ा सा, बहुत बड़ा सा क्रैश हुआ है बेसिकली. उस वजह से काफ़ी ट्रैफिक था. तो अभी डैलस की रोड्स, आई मीन DFW, ऑल ओवर DFW रोड्स, कुछ और ही सीन चल रहा है. एंड देयरफॉर यू हैव टू बी लाइक रियली रियली केयरफुल व्हेन यू आर ड्राइविंग अराउंड DFW. एंड व्हाट आई हैव हर्ड इज इट्स गोइंग टू कंटिन्यू ऑल दिस कंस्ट्रक्शन ऑल द वे टिल 2nd of August. मेरे ख्याल से उसके बाद भी चलेगा, बट यू नीड टू बी केयरफुल. ओके, सो ड्राइव स्लो, ड्राइव सेफ और टाइम लेके निकलना, क्योंकि एक्सीडेंट कभी भी हो सकता है इस तरह से. एंड इफ यू गेट इनटू एन एक्सीडेंट, देन डोंट ट्राई टू हैंडल एवरीथिंग बाय योरसेल्फ. इट इज समटाइम्स इजियर टू डेल.
1: जीनी हुकम मेरे अका, हम आज पार्टी के मूड में हैं. एक ऐसी जगह बताओ जहां मेरी एंट्री ही रॉयल हो.
2: मिराज लाउंज, चलिए मेरे अका. लग्जरी लिमोजीन राइड्स आपके इंतजार में हैं.
3: मुझे ज्यादा क्राउड पसंद नहीं.
2: नो प्रॉब्लम अका, लग्जरी प्राइवेट स्पेस भी हाजिर है आपकी प्राइवेट पार्टी के लिए.
3: और एंटरटेनमेंट,
2: मूवी नाइट, बेली डांसिंग नाइट्स, प्रीमियम हुकर्स और अमेजिंग वाइब्स, सब आपकी खिदमत में है.
3: वाह जीनी, ये जगह है या कोई जादू?
2: जादू नहीं, मिराज लाउंज एट मिकिनी रेंज पार्कवे. मिरेकल्स हैपन इन मिराज.
4: ब्रेकिंग न्यूज, होम लोन या रीफाइनेंस अब और भी आसान. myfamilyhomeloan.com देता है ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग, नो हिडन फीस, नो सरप्राइजेस. और हाँ, सबसे बड़ी खबर, उनका AI पावर्ड प्लेटफॉर्म रियल टाइम रेट्स कंपेयर करता है, ताकि आपको मिले बेटर डील्स एंड फास्टर अप्रूवल्स. 15,000 प्लस गूगल रिव्यूज, हजारों फैमिलीज का भरोसा. विजिट myfamilyhomeloan.com और कॉल 4697343338. 4697343338. myfamilyhomeloan.com is powered by Loan Factory. NMLS 2025289. Licensed mortgage broker in Texas. All loans subject to credit approval. Equal housing lender.
5: Filmon ka maza action, drama aur romance mein hai. Aur khane ka maza har flavor ke zabardast performance mein.
6: Kabhi chatpata sa twist, kabhi teekha sa kick, kabhi meetha sa sukoon.
5: Jahan har flavor kare full on entertain. The Flavor Lounge.
6: Papri chaat se malpua rabri tak, har dish mein mile zindagi ke flavors ka asli swaad. Visit their new website or download the Flavor Lounge app for exclusive deals. The Flavor Lounge, हर बाई सुपर हिट.
7: जीत उनकी होती है जिनकी नजर सिर्फ टारगेट पर होती है, चाहे ओलंपिक स्टाइल आर्चरी हो या 10 मीटर्स इंडोर प्रिसीजन शूटिंग. फोकस, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी. फ्रिस्को प्रिसीजन स्पोर्ट्स एकेडमी, वन एंड ओनली इन नॉर्थ डैलस. फ्रॉम बिगिनर टू कंपेटिटिव एथलीट्स, स्ट्रक्चर्ड कोचिंग, एक्सपर्ट गाइडेंस एंड परफॉर्मेंस ड्रिवन ट्रेनिंग एजेस 8 एंड अबव.
8: फ्रिस्को प्रिसीजन स्पोर्ट्स एकेडमी पावर्ड बाय अर्जुन आर्चरी एकेडमी, कन्वीनिएंटली लोकेटेड ऑन क्वाइट रोड इन फ्रिस्को. विजिट friscoprecisionsports.com और कॉल 4693331099.
9: Mention Fun Asia and get 50% off on tryout session. Please don't say your usual place again. I'm tired of the same food.
10: Excuse me. It's called being loyal.
9: It's called being predictable.
10: Okay then. Let me surprise you. Let's go to Neon Cactus in Fairview.
9: And what's so special at Neon Cactus?
10: Went there with my office team last week. Mexican cuisine with global influences. Everything fresh, wonderful flavors, Zabia Halal options, and plenty of great vegetarian choices too.
9: Not bad.
10: Happy hours Monday to Friday, and amazing food and drink deals every day.
9: Okay, this I didn't expect from you.
10: Wait till you experience Neon Cactus. Neon Cactus, Fairview, Mexican cuisine with global influences.

हैरत तो है, लेकिन भाई आप सबकी तबीयत खैरत है, खैरियत है ना, सब सब खैरियत। तो गाइज आगे बढ़ते हुए लेट्स टॉक अबाउट टुडे। आई एम गोना शेयर समथिंग रियली कूल दैट आई सॉ ऑन द इंटरनेट। ओके, शर्मिला धनकार। ओके, डू यू गाइज नो हु दैट इज? प्रॉबली नॉट, बिकॉज एज इंडियंस वी डोंट फॉलो फीमेल स्पोर्ट्स दैट मच। लेकिन आई कैन टेल यू दैट शी इज एन इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन, एंड आफ्टर ओवरकमिंग मैनी मैनी मैनी मैनी मैनी ईयर्स ऑफ हार्डशिप, शी हैज़ फाइनली वन ए गोल्ड मेडल फॉर इंडिया। ओके, आफ्टर कमिंग ईयर्स एंड ईयर्स ऑफ हार्डशिप, अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स शी इज 40 ईयर्स ओल्ड एंड शी वॉज ह्यूमिलिएटेड बाय हर हजबेंड, स्ट्रिप नेकेड, थ्रोन इन टू द स्ट्रीट्स, ओके, एंड टॉर्चर्ड सिवियरली बाय हर हजबेंड बिकॉज शी हैड अ डिसेबिलिटी। And despite all of that, she rebuilt her life through sports and then went on to achieve international success. Her journey is a really good example of resilience, courage, and determination. अगर आपको कुछ inspiration चाहिए for your everyday life and you're going through some stuff which is not very nice, it could be anything, and you need some courage and some determination कि नहीं यार कुछ inspiring चाहिए, please go look up Sharmila Dhankar. I think her story is very inspirational, and many of you will relate to it.

भाई, वी ऑल नो दैट टिकटॉक शॉप एंड अमेजोन इज सच अ बिग कन्वीनियंस, राइट? यू ऑल नो दैट, आई नो दैट, एंड वी ऑल बाय थिंग्स फ्रॉम टिकटॉक शॉप और अमेजोन ऑल द टाइम. इन फैक्ट पीपल ऑल्सो बाय स्टर्लिंग, कोट अनकोट स्टर्लिंग सिल्वर ज्वेलरी. बट डिड यू नो दैट द स्टर्लिंग सिल्वर ज्वेलरी विच इज अपेरेंटली सोल्ड ऑन अमेजोन इज 92% कैडमियम, विच इज ए हाईली टॉक्सिक मेटल नोन, a well-known human carcinogen, which means it has cancer-causing materials. So you guys, you have to be really, really careful. There was a study done by Sunday Times. Sunday Times found that the jewelry sold through Amazon and TikTok shop contained illegal quantities of cadmium, a silver-white heavy metal that resembles silver but really is not silver. That's why, have you ever wondered ki 10-10, $15-15 mein bade achche-achche silver ke claiming to be 92 point silver jewelry, 92.5% silver, sterling silver, jo hota hai na, 0.925 sterling silver jewelry, itne saste mein kaise mil raha hai, $10-15 mein mil raha hai. And sometimes you wonder like, yaar, ye log itne saste mein kaise bech rahe hai, while Macy's and all these other stores, they sell it for like $50 and everything, especially jab silver ki price itni mehengi ho gayi hai. Guys, don't buy stuff from like TikTok and all that, itna nahi hai wo, matlab, use thoda sa apna logic use karke, thoda dhyan se khareediye, asli jewelry store se khareediye, okay? हम लोग फानेजिया पे कितना एडवर्टाइज करते हैं, कितने सारे ज्वेलरी स्टोर्स हैं. गो टू वन ऑफ दोज प्लेसेस एंड गो गेट सम ज्वेलरी फ्रॉम देयर. इजी पीजी, लेमन स्क्वीजी.

0: is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: हीरे मोती मैं ना चाहूं।
3: अच्छा, मैनिफेस्ट करने से पहले थोड़ा दोबारा सोच लो, क्योंकि अब डायमंड्स में मिल रहा है बाय टू गेट वन फ्री ऑफर। तन्मय ज्वेलर्स इन अर्विंग, डायमंड रिंग्स, पेंडेंट्स, इयररिंग्स और ब्राइडल ज्वेलरी पर बाय टू गेट वन फ्री, और वो भी सब कुछ होलसेल प्राइस पर। चाहे प्रपोजल हो, वेडिंग हो या बस अपनी स्पार्कल अपग्रेड करनी हो, अब शाइन डबल विद इन बजट। Luxury, brilliance, celebration. Tanmay Jewelers in Irving.
4: Experience peace, music and meditation with Archana Didi at a free 3-day retreat in DFW. Join us on August 7th at Bharatiya Nivas in Richardson, August 8th and 9th morning at Sri Raghunath Temple in Plano, and August 8th evening at DFW Hindu Temple, Ekta Mandir in Irving. Enjoy meditation, soulful music and free vegetarian prasad.
5: Proudly supported by Roma Pithadia, Sri Vimal, Shankar Vilas, Payal Dance Class, Rajula's Kitchen, Fun Pizza Kitchen, Raghunath Temple, DFW Temple and Fun Asia.
4: Register free now at meditation.funasia.net.
6: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
7: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
8: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
9: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
4: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
10: यार, बॉस ने फिर से डांट दिया, ट्रैफिक अलग और ऊपर से ये स्ट्रेस।
11: अरे रिलैक्स, यू नीड अ कूल थेरेपी।
10: थेरेपी? वो तो बहुत महंगी है।
11: नहीं, कूल मतलब कूल चा थेरेपी।
10: ये क्या होता?
11: सिंपल, चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस इन एलन।
12: चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस सर्विंग सम ऑफ द बेस्ट पंजाबी फूड इन डैलस, फ्रॉम बटरी करीज टू ऑथेंटिक पंजाबी स्ट्रीट फूड फेवरेट्स, स्ट्रेट फ्रॉम शेफ गगन पन्नू'स किचन। सो नेक्स्ट टाइम लाइफ गेट्स स्ट्रेसफुल, जस्ट टेक अ डोज ऑफ कूल चा थेरेपी एट चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस।
13: एंड नाउ एट अ बिगर लोकेशन जस्ट 3 डोर्स डाउन विद लिमिटेड रिजर्वेशन।
14: Coughing or sneezing at home? Your air duct may be to blame. And clogged dry vents can even cause fires. Duct Time removes dust, pollen, allergens and lint, giving you cleaner air, better health, energy savings and peace of mind. Serving the DFW area and 15 plus years of experience with CSIA certified technicians and free estimates. Fun Asia listeners get $100 off duct cleaning plus free dryer vent cleaning and sanitizer with service. Call Jeetu Patel at 972-877-2500 or visit callducttime.com. Breathe easy, live safe with Duck Time.
15: Hocho.
16: Hoko.
15: Hocho.
16: Hoko.
15: Hocho.
16: It's Hoko.
17: अरे बस भी करो यार।
16: अरे नया रेस्टोरेंट है पर नाम समझ ही नहीं आ रहा है।
17: नाम होको हो या होचो क्या फर्क पड़ता है? एक बार वहाँ के लेजेंडरी चना पूरी, आइकॉनिक सैंडविचेस, डिलीशियस करीज, चाट्स और फेमस कोल्ड कोको टेस्ट करोगे ना, फिर नाम नहीं सिर्फ टेस्ट याद रहेगा।
18: इंडिया के सबसे लव्ड फूड ब्रांड्स में से एक होको अब फ्रिस्को में। वही आइकॉनिक फ्लेवर्स, वही अनफॉरगेटेबल टेस्ट एंड वेरिएड कैटरिंग ऑप्शंस। टेस्ट इंडिया, रीलिव मेमोरीज।
19: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है।
20: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स। मान्यवर मोहे, लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग।
21: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
22: कुछ भी नहीं, Ura Debt Relief will do it for us.
21: क्या मतलब?
22: Ura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
21: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. हम खुद ही मैनेज कर लेंगे।
22: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled and they have a 100% money back guarantee. Call तो करो 888-888-9914.
21: अब तो करना ही पड़ेगा मैडम।
23: Don't let debt ruin your life. Visit ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
0: This 15th of August, don't just celebrate Independence Day, celebrate it the Indian way. Join India Association of North Texas's Anand Bazaar 2026 at the Comerica Center in Frisco. Saturday from 2 p.m. onwards, experience a grand Independence Day parade, authentic Indian food, colorful cultural performances, live music, shopping, family fun, and an unforgettable celebration of India's independence. And the best part? It's completely indoors and free for everyone.
1: For sponsorship booth from $3,000 to $50,000 and vendor stalls at $750, call 214-529-3257.
0: Celebrate India's 80th Independence Day with the entire community. IANT Anand Bazaar 2026 on Saturday, the 15th of August, 2 p.m. onwards at the Comerica Center in Frisco.

फ्रेंड्स, आपको पता है कितने बजे? इट इज 8:10, विच मीन्स इट इज द टाइम फॉर आवर, ड्रम रोल प्लीज, डिश, इट इज टाइम फॉर आवर गिव अवे. दैट इज राइट. लेकिन आज हम क्या जीतेंगे गिव अवे से? वही जो हमने कल जीता है, क्योंकि इस महीने का पूरा आई थिंक गिव अवे वही है. फ्रॉम सैन इडली रेस्टोरेंट, दिस इज योर चांस टू विन ए फिल्टर कॉफी एंड अ डोसा ऑफ योर चॉइस एट सैन इडली वेजिटेरियन रेस्टोरेंट एंड इंडियन फूड. 100% प्योर वेजिटेरियन, मेड विथ फ्रेश ऑथेंटिक फ्लेवर्स, क्रिस्पी डोसा, फ्लफी इडलीज एंड कम्फर्टिंग साउथ इंडियन फेवरेट्स. और सच में शहर की बेस्ट फिल्टर कॉफी. दैट्स राइट. फैमिली डिनर्स टू केटरिंग सर्विसेज विद जैन फ्रेंडली ऑप्शन. विजिट सैन इडली वेज रेस्टोरेंट एट हाईवे 121 एंड कस्टर्ड जंक्शन. तो विदाउट फर्दर अडू गेम खेलें, क्योंकि आपको पता है गेम क्या है. आई मीन इट्स द सेम थिंग एज एवरी टाइम. आई विल प्ले यू ए सॉन्ग फ्रॉम एनी वेयर इन द वर्ल्ड. दिस टाइम इट इज एक्चुअली फ्रॉम आर होम टेरिटरी, सो इट माइट बी अ लिटिल एक्स्ट्रा फेमिलियर. हाउएवर, आई विल गिव यू हिंट ऑल्सो, तो आई एम श्योर यू कैन ऑल गेट इट. तो गाइज, माई नंबर इज 9722355555. मैं गाना बजाऊंगी, उसका एक बॉलीवुड कॉपी गाना है, ठीक है? अब वो गाना आपको सुन के लगेगा कि यार ये तो बॉलीवुड ही है, लेकिन ये बॉलीवुड नहीं है भाई लोगों और बहन लोगों. ये नॉन बॉलीवुड कहीं और का गाना है, विच वॉज अपेरेंटली रिकॉर्डेड फर्स्ट एंड देन बॉलीवुड रिप दिस ऑफ. ओके, सो इट माइट सीम वेरी फेमिलियर. हियर वी गो, एंड दिस इज

Guys, congratulations to Vrushal and Nandini for winning that giveaway. भाई मुझे कई बार ये जो कॉपी कैट वाला जो गेम है ना इसको थोड़े टाइम बाद चेंज करना पड़ेगा क्योंकि आई एम यू नो वैसे तो मतलब इतने सारे गाने हैं जिसका कॉपी है और जो मैंने ओरिजिनल जो बजाया था दैट्स एक्चुअली अ पाकिस्तानी इंडिपेंडेंट सॉन्ग बाय आई थिंक फ्रॉम सम पाकिस्तानी ड्रामा बाय द वे और उसका जो बैकग्राउंड ट्रैक था दैट वॉज रिप्ड ऑफ बाय प्रीतम एंड देन उससे बना इन दिनों वगैरह वगैरह आपने वो गाना सुनी लिया है तो आंसर भी कर दिया है तो समटाइम्स आई फील लाइक मुझे इतना इतने सारे नहीं मतलब सबके राज नहीं बताने चाहिए इतने सारे हमारे कंपोजर्स के लेकिन वॉट टू डू इट्स काइंड ऑफ फन एंड इट्स अ गुड गेम राइट ट्राई टू फिगर आउट द धुन लाइक दैट तो आगे बढ़ते हुए गाइज आई एम गोना प्ले यू दिस ट्रैक कॉल्ड एतबार बाय दिस रियली नाइस Pakistani duo artist called Zeb and Hania. I have been in love with this group for many, many years. And they have actually visited India also and played at the South Asian Music Festival in Delhi in way back in 2005. So I fell in love with them since then. And this song is called Etbar.

गाइज, अगर आपको वैसे गाने पसंद आए ना जो थोड़े ब्लूजी टाइप के हैं, देन यू नीड टू कम डाउन टू स्टीव्स वाइन बार ऑन सैटरडे एट 7 PM. दैट्स व्हेन माय बैंड इज परफॉर्मिंग एंड वी गोना बी प्लेइंग लॉट्स मोर ट्यून्स लाइक दैट विद लिल मोर एनर्जी एंड लिल मोर पावर. थिंक ब्लूज मिक्स रॉक. ओके, तो बड़ा मजा आएगा. आई एम वेरी एक्साइटेड. इट्स गोना बी अ लॉट ऑफ अमेरिकन म्यूजिक, लेस हिंदी म्यूजिक, मोर इंग्लिश म्यूजिक, बट इट स्टिल बी ग्रेट फन बिकॉज आई ऑल्सो गेट टू प्ले विथ माई प्रोफेसर. दैट्स राइट. आगे बढ़ते हुए गाइज, आपको पता है ना कि लाइफ में बहुत स्ट्रेस होती है. आपको भी स्ट्रेस होती है, मुझे भी स्ट्रेस होती है. मतलब कुछ कुछ का मतलब चलता रहता है. पैसे नहीं मिलते, ये नहीं मिलते, काम करे जा रहे हैं, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, एक्सीडेंट हो गया, ये हो गया, बहुत कुछ चलता रहता है. लेकिन डोंट टेक स्ट्रेस इन लाइफ. वेन यू नीड अ ब्रेक फ्रॉम एवरी डे स्ट्रेस, देन यू नीड टू कॉन्टैक्ट ओशो यूनिवर्सल. क्योंकि August 2nd तक, फ्रॉम 31st जुलाई, दैट इज 31st जुलाई जो कि कल है, और August 2nd तक ओशो कैवलिया धाम में देर इज अ ओशो मेडिटेशन रिट्रीट. मे बी यू नीड टू वाइंड डाउन, मे बी यू नीड टू सेंटर योर सेल्फ एंड देन चैनल ऑल योर एनर्जी इनवर्ड्स. ओके, एंड ओशो कैवलिया धाम इज इन डेनिसन, टेक्सस. एक्सप्लोर पावरफुल मेडिटेशन टेक्निक्स विथ म्यूजिक, celebration, deep silence and inner transformation under the guidance of Swami Prem Maitreya. अगर आप beginner हैं या फिर experienced meditator हैं, everybody is welcome. Seats बहुत ही limited हैं, मतलब कल शुरू हो रहा है तो जल्दी जल्दी करो यार. 214-395-6757 यहाँ पे WhatsApp करिए टू रिजर्व योर टिकट्स. ओके, योर जर्नी टू इनर पीस बिगिंस हियर एंड 8:27 ऑन द क्लॉक. And guys, we are about to go into a break in a really, really short while. So make sure you come back because I'm going to be here only today for this week. Uske baad phir main seedha aapse Monday milungi, theek hai? To isliye wapas aa jana because bahut acche acche gaane sunenge. And yeah, that's about it.

0: At Tanishq, no two diamonds are exactly alike. They're beautifully rare, just like the woman who wears them. That's why this is the perfect time to find yours at the Tanishq Festival of Diamonds, with up to 25% off on diamond value and making charges, plus zero deduction on your old gold exchange above 18 carat. Visit Tanishq Dallas at 2809 Preston Road, number 1200, Frisco, 75034 today. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
1: डॉक्यूमेंट्स या पार्सल भेजनी है?
2: हाँ.
1: घर रिलोकेट करनी है?
2: हाँ.
1: गाड़ी भी ट्रांसपोर्ट करना है?
2: हाँ भाई हाँ.
1: तो फिर टेंशन क्यों ले रहा है? SFL Worldwide को कॉल कर.
3: डॉक्यूमेंट्स शिपिंग, बॉक्सेस शिपिंग, कंप्लीट डोर टू डोर रिलोकेशन, ऑटो ट्रांसपोर्ट, सिर्फ इंडिया नहीं USA और दुनिया भर में ट्रस्टेड शिपिंग और मूविंग सर्विसेज. SFL Worldwide, हर मूव का परफेक्ट सॉल्यूशन. विजिट SFLWorldwide.com और कॉल 1-800-691-2335.
4: भूख लगी है या बस कुछ एक्सेप्शनल खाना है?
3: स्ट्रीट स्टाइल चाट्स, रिच अवधी फ्लेवर्स एंड दैट क्लासिक बटर चिकन यू कीप गोइंग बैक टू, ऑल अंडर वन रूफ एट पेज 3 ईटरी. ऑनेस्टली, ये सिर्फ खाना नहीं है, इट्स व्हाट योर मूड इज एक्चुअली क्रेविंग.
4: अ क्विक बाइट, अ परफेक्ट लंच एम्बियंस एंड एन इवनिंग दैट जस्ट फ्लोज इनटू द नाइट. यू डोंट गो जस्ट एनीवेयर, यू गो टू पेज 3, हब 121 मैकिनी.
5: साल तो कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया.
6: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
5: नहीं.
6: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
5: नहीं.
6: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
5: वो भी नहीं.
6: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त.
7: रेवेन्यू देखकर खुश मत होइए. बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रांग हो. फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट agfintax.com, कॉल 972-618-8555. AG Fintax, your growth, our strategy.
4: AG Fintax, led by Forbes Finance Council member Anil Granthi.
8: Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.

0: Lawson Travels Cruises. Honeymoons, custom family trips, stress-free travel every mile. Call 214-631-2458 today.
1: Craving delicious Indo-Chinese and North Indian food? Red Hot Chili Pepper is the place to go. With locations in Frisco, McKinney, Richardson and now our newest location in Allen at Waters and 121. Whether you're dining in, taking out or catering, Red Hot Chili Pepper is Dallas's number one choice for Indo-Chinese and North Indian cuisine.
2: Are you looking for a smarter approach to reducing taxes while building and preserving wealth? My Time Equity, a registered investment advisory firm led by CPA Sudhir Pai, offers active portfolio management, structured notes, tax and financial planning, real estate strategies, AI and late-stage pre-IPO opportunities, and other alternative investments. Learn how a personalized strategy can help you pursue your financial goals. Visit mytimeequity.com or call 972-330-2771.
3: My Time Equity is a fee-based registered investment advisory firm. This advertisement is for informational purposes only and does not constitute investment, legal or tax advice. Investing involves risk, including the possible loss of principal.
4: For decades, one man has made the world dance.
3: Now, Mathangi Entertainment Group proudly brings India's Michael Jackson, Prabhu Deva, live to DFW. Joining him are Lauren Gottlieb, Sonal Bhadoria, Alexander Noel, Harini Nilakantan, Natasha Sherpa and Sanvay Meghna for the ultimate pan-Indian dance concert. Saturday, August 1st at the Texas Trust CU Theatre, Grand Prairie. Book your tickets now. Call 248-233-3828. Media partner, Fun Asia Network.
5: Friends, it is 8:34 on the clock and I'm here for you. I'm here for you, yes, and with you for only an hour and a half. Sirf 10 baje tak hoon main aur uske baad main fir aapse Monday ko milungi. This is Ipi the Hippie and y'all are listening to Fun Asia 104.9 FM on my show. An evening in Dallas. That's right, guys. Bhai, congratulations to our giveaway winners, Nandini and Vrushal. However, Nandini, आपने तो मुझे कॉल बैक किया ही नहीं, तो अगर आप सुन रही हैं तो प्लीज़ मुझे कॉल बैक करिए क्योंकि आपकी कॉल कट गई थी. आप विनर हैं, मुझे आपका इन्फॉर्मेशन चाहिए सो आई कैन सेंड इट टू द रेस्टोरेंट सो यू कैन गो एन्जॉय योर डोसा एंड योर फिल्टर कॉफ़ी. तो आप प्लीज़ कॉल बैक मुझे करिए. एंड गिव अवे से रिलेटेड बाय द वे, रोज़ीना जी जिन्होंने अभी मुझे कॉल किया. रोज़ीना जी, पहले तो आई हैव टू से व्हाट अ यूनिक नेम, मैंने पहले कभी नहीं सुना. कितना प्यारा सा नाम है रोज़ीना, वाह. तो रोज़ीना जी, ये गाना आपके लिए. रोज़ीना जी ने शी रिक्वेस्टेड, जो ओरिजिनल गाना था ना जो मैंने गिव अवे वाला बजाया था, तो शी रिक्वेस्टेड कि मैं वो वाला गाना दोबारा बजा दूँ. तो मैं पूरा गाना बजाऊँगी इस बारी, नॉट अ लिटिल क्लिप. तो आप इन्जॉय करिए. मेरा नाम है मोहब्बत बाय द आर्टिस्ट वकार अली.

And guys, we are back. It is 8:43 on the clock. भाई मेरे दिल में भी आप सभी समा गए, लेकिन आप अपने दिल का ध्यान रख रहे हैं कि नहीं? और अगर नहीं रख रहे हैं तो यू नो वट यू हैव टू डू. यू हैव टू हेड डाउन टू पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर, क्योंकि वो आपकी हेल्थ अपॉइंटमेंट में पूरे 30 मिनट का टाइम अलॉट करेंगे. ठीक है, बाकी डॉक्टरों की तरह नहीं 5-10 मिनट, पूरे 30 मिनट्स, बिकॉज अंडरस्टैंडिंग योर हेल्थ एंड योर हार्ट टेक्स टाइम. दैट्स राइट. एट पैशन केयर हेल्थ यू आर नॉट जस्ट अ पेशेंट, आप हमारी फैमिली जैसे हैं. फॉर यू, योर फैमिली एंड फॉर द हेल्थ ऑफ आर कम्युनिटी. 30 मिनट्स इट ऑल इट टेक्स, वेदर यू लुकिंग फॉर एंग्जाइटी केयर, फाइब्रो स्कैन, एल्कोहल रिलेटेड कंसर्न्स, लिवर कंसर्न्स, एल्कोहल रिलेटेड लिवर कंसर्न्स, विटामिन B12 डेफिशिएंसी, या फिर और भी कोई भी टेस्टिंग अगर होगी. सो पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर इज गोना टेक केयर ऑफ इट. यू जस्ट नीड टू कॉल देम. कॉल 214-666-6259 टू बुक योर अपॉइंटमेंट. योर हेल्थ इज देयर पैशन. ओके, सो मेक श्योर यू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ. गाइज, आई हैव सम अमेजिंग थिंग्स दैट आई फाउंड आउट टुडे. There is this new trend on TikTok, by the way, which is the 369 rule of relationships. Okay, this woman, she put out a video and she became insanely popular because people were like, oh, what is this new 369 wala rule? So I'm going to tell you a little bit about that 369 wala rule. Lekin uske pehle aap ye gana suniye, and then we will talk more about modern dating and the 369 rule that I think is actually pretty helpful, very insightful. I read it and I was like, नहीं, इसमें कोई तो बात है, दिल की बात ही है.

भाई पहली बार यही होता है, हनीमून स्टेज होता है. ओके, दिस इज द हनीमून स्टेज. फर्स्ट 3 मंथ्स, जैसे मैंने बोला था, इज कॉल्ड द हनीमून स्टेज. व्हाई? बिकॉज एवरीथिंग फील्स इजी, ब्रीजी एंड अमेजिंग. आप फन डेट्स पे जा रहे हैं, यू आर हुकिंग अप एवरीवेयर, एवरीवन इज लाइक फिजिकली अट्रैक्टेड टू ईच अदर. यू कैन नॉट गेट इनफ ऑफ ईच अदर. लाइक हमेशा बात करें, जानू आज आपने तुमने क्या खाया डिनर में, मैंने तो ये खाया, ऑल ऑफ दैट स्टफ. आई नो वी कैन ऑल रिलेट टू इट. ओके, इट फील्स लाइक अ रोम कॉम कम टू लाइफ, राइट? दिस स्टेज यूजली लास्ट 3 मंथ्स, मे बी लाइक 2 to 3 months. ओके, बिकॉज उसके बाद पीपल, मतलब ड्यूरिंग द स्टेज पीपल आर स्टिल प्रोजेक्टिंग ऑन टू देयर पार्टनर, कि वो अपना आइडियल पार्टनर इमेजिन कर रहे हैं. And they are projecting that partner onto the partner they are dating. Ki, oh, this person is exactly like mere sapno ka Rajkumar and all of that, okay? And it tends to take this much time to stop seeing the fantasy and actually seeing the reality. Matlab, 2-3 mahine tak aap sirf us pe fantasy imagine kare ho ki, oh, this person is so nice. Ye roj subah mujhe good morning text bhejta hai. Hi, darling, good morning, all of that. Theek hai? And there is... we stop recognizing that there is a very fallible person right in front of you, जो गलतियाँ भी कर सकता है. कई बार आपका बर्थडे भी भूल जाते हैं, होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं. हनीमून फेज इज ऑल्सो वेन पीपल आर ऑन देयर बेस्ट बिहेवियर. ठीक है, वो किसी को दुख नहीं देना चाहते, सो दे आर वेरी केयरफुल. पीपल आर वेरी केयरफुली चूजिंग देयर वर्ड्स सिंस दे आर ट्राइंग टू बेसिकली इम्प्रेस ईच अदर. ठीक है, इट्स ईजी टू फील लाइक यू हैव फाउंड द वन, someone who's truly perfect. It's also tough. It is also very tough to gauge the compatibility. क्योंकि आपको पता नहीं चलता कि ये person seriously, truly मेरे साथ compatible है कि नहीं, क्योंकि आप उनका असली शक्ल ही नहीं देख पा रहे हो. It is only after the first 3 months that they start showing their real faces, okay? And all you're doing is basically hanging out and everything. तो उसके बाद क्या होता है? From month 3 to month 6. I will tell you about that after the song.

तो गाइज हम बात कर रहे थे सपनों के राजकुमार या राजकुमारी के बारे में एंड द हनीमून फेज. बिकॉज याद है मैंने आपको बोला था कि फर्स्ट 3 months ऑफ द रिलेशनशिप यू आर स्टिल काइंड ऑफ पैनिंग थिंग्स आउट एंड यू आर स्टिल काइंड ऑफ फिगरिंग इट आउट. तो आप लोग अपने सपनों का राजकुमार इमेजिन करते हो और उसको प्रोजेक्ट कर देते हो ऑन योर पार्टनर दैट यू आर डेटिंग इन द फर्स्ट यू रिलेशनशिप. तो लेकिन गाइज सपने सच भी हो सकते हैं. इसीलिए इफ यू आर एवर थिंकिंग ऑफ बाइंग अ सपनों का घर और अगर वैसे सोच रहे हो देन यू नीड टू कॉन्टैक्ट ड्रीम होम मॉर्गेज बिकॉज योर सपनों का घर मे बी योर सपनों का राजकुमार मे नॉट बी क्लोजर बट योर सपनों का घर इज क्लोजर देन यू थिंक विद ड्रीम होम मॉर्गेज. सिंस 1998 दे हैव हेल्प फैमिलीज अक्रॉस द कंट्री टर्न होम ओनरशिप रियालिटी इन टू रियालिटी with personalized mortgage solutions and a smooth and a stress-free process. They are licensed in all 50 states and they will find the right loan option tailored to your needs. Chahe first time khareed rahe hain, upgrade kar rahe hain ya refinance kar rahe hain. Start your home ownership journey with confidence today. Call 972-245-5626 or visit dreamhomemortgage.com. So guys, aage badhte hue, pehle 3 mahine ke baad kya hota hai? Phir यू नो 3 to 6 months आता है द सेकेंड फेज. ओके तो 3 to 6 months में क्या होता है आफ्टर द हनीमून स्टेज वेयर्स ऑफ रोमन ऑफ सेज यू नो द साइकोलॉजिस्ट दैट वी वर टॉकिंग अबाउट शी सेज यू स्टार्ट फेसिंग द फर्स्ट फ्यू चैलेंजेस एज अ डुओ एज अ टीम. ओके दिस इज वेयर योर पार्टनर्स इम्परफेक्शंस कम आउट एंड देयर शॉर्टकमिंग्स और देयर गलतियां बिकम मोर अपेरेंट वेदर यू गो ऑन वेकेशन या आप घर पे रह रहे हैं. सम पीपल एक्चुअली ऑल्सो मूव इन टुगेदर इतने छोटे से टाइम में दे रियलाइज एंड वाइन वेन दे आर हंग्री और यू स्टे ओवर एट ईच अदर्स हाउसेज स्पेंड द नाइट ओवर एंड यू स्टार्ट टू बिकर ओवर लाइक स्मॉल थिंग्स लाइक अरे मेरा खाना किसने खाया मेरे जूते यहाँ पे ऐसे क्यों फैले हैं तुमने तौलिया क्यों नहीं टांग के रखा यू नो दोस काइंड ऑफ रैंडम थिंग्स इजंट दैट फेमिलियर. सो दिस इज वेयर small arguments and disagreements actually happen and you may find yourselves navigating really tough conversations about really small and simple issues. Bigger issues can also arise jaise fantasy starts to fade away to jaise real life takes over you know maybe you realize your partner's work ethic does not match your own or maybe यू रियलाइज दैट ये बंदा तो हमेशा लेट आता है यार डेट पे मैं हमेशा वेट करती रहती हूँ ये तो हमेशा आधा घंटा लेट आता है एंड यू नो शुरू में यू टॉलरेट इट बट आफ्टर लाइक 3 months यू डोंट वॉन्ट टू टॉलरेट इट. और फॉर एग्जाम्पल वन ऑफ माई फ्रेंड्स वॉज टेलिंग मी ही वॉज विद दिस गर्ल फॉर 11 years एंड शी वुड प्ले वीडियो गेम्स टिल लाइक 3 o'clock इन द मॉर्निंग लाइक कम ऑन गाइज यू नो एंड For him, initially it was okay. He was like, "Acha, she likes video games. I also like video games." Lekin for a long time, it does not work. Theek hai? And it is completely normal to feel disappointed at this stage. And this is where people actually break up. Theek hai? Uske baad aata hai stage 3, month 6 to 9. What happens there? We will talk about it after this song.

0: कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये?
1: जो बॉलीवुड का असली मजा जानते हैं, फन एशिया पर ही आते हैं।

पुष्पा झुकेगा नहीं और फनेजिया रुकेगा नहीं। नॉन स्टॉप बॉलीवुड, नॉन स्टॉप स्वैग,

0: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: पर डैलस में सिर्फ एक ही बात होती है, फन एशिया प्लेज द बेस्ट बॉलीवुड।

playing the best tunes in all of Dallas. Fun Asia Radio, 104.9 FM.

रात तो वक्त की पाबंद है, ढल जाएगी। देखना ये है कि संगीत की ये सवारी आपको कहाँ तक ले जाएगी। सुरों का सफर, आपका हम सफर। फन एशिया रेडियो 104.9 FM।

Nandini!

तन्हाई में, अकेले में, महफिल में और मेले में, आपके साथ है फनीशिया।

दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ को सिंपल बनाना चाहते हैं तो एक गोल्डन ट्रिक याद रखें, declutter your desk, declutter your mind. सफाई सिर्फ घर की नहीं बल्कि thoughts और दिमाग की भी जरूरी है. So clean space, clean thoughts and clean vibes only. यही है Fun Asia Radio का अंदाज. सुनते रहिए हमें और इस next गाने को.

क्या आपको पता है कि आपकी हार्ट बीट सिंक हो सकती है म्यूजिक के साथ? अगर गाना फास्ट हो तो दिल की धड़कन तेज हो जाती है, और अगर गाना स्लो हो तो काम हो जाती है, हल्की हो जाती है। तो अगला गाना सुनते ही अपना दिल जरूर चेक कीजिए। फनी रेडियो, लिटरली प्लेइंग विद योर हार्ट बीट्स।

हेलो एवरीवन, एक सिंपल ट्रिक फॉर इंस्टेंट हैप्पीनेस। अपने आप को आईने में देखिए और 30 सेकंड्स के लिए मुस्कुराइए। अजीब तो लगेगा, फनी भी लगेगा, लेकिन आपके दिमाग को ये मैसेज जाएगा कि यू आर जेन्युइनली हैप्पी। वो कहते हैं ना, मुस्कुराहट सबसे खूबसूरत जेवर है, सो इस जेवर को पहने रखिए, स्माइल करिए और डैलस की ट्रैफिक को थोड़ा हल्के में लीजिए इस गाने के साथ।

नेकी कर दरिया में डाल, ये मशहूर जमाना कहावत तो आपने जरूर सुनी होगी, लेकिन आजकल का वर्जन कुछ अलग ही हो गया है। नेकी कर और ऑनलाइन पोस्ट कर दे, मगर आप ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। कोई भी अच्छाई, कोई भी नेकी जो आप करते हैं, उसे अपने तक ही रखिए, क्योंकि काइंडनेस इज लाइक वाईफाई, सबको फील हो जाती है, पासवर्ड की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ती। इसी तरह फन एशिया रेडियो आपके दिलों में धड़कता है बगैर आपको महसूस हुए।

हेलो एवरीवन, यू ट्यून्ड इनटू 104.9 एफएम फनी शेयर रेडियो। क्या आपको पता है कि असल में चॉकलेट वंस यूज्ड टू बी अ करेंसी? जी हाँ, माया सिविलाइजेशन में चॉकलेट वाज मनी। इमेजिन आज के जमाने में अगर आपकी सैलरी चॉकलेट्स में मिलती हो तो क्या होगा? डालस में सब सारे के सारे जिम फुल हो जाएंगे। जी हाँ, लेकिन जिंदगी की मिठास तो जिंदगी की मिठास है। मजा लीजिए जिंदगी की मिठास का फनी शेयर रेडियो के साथ।

0: the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: फिल्मों का मजा एक्शन ड्रामा और रोमांस में है और खाने का मजा हर फ्लेवर के जबरदस्त परफॉर्मेंस में
3: कभी चटपटा सा ट्विस्ट कभी तीखा सा किक कभी मीठा सा सुकून
2: जहां हर फ्लेवर करे फुल ऑन एंटरटेन द फ्लेवर लाउंज
3: पापड़ी चाट से मालपुआ रबड़ी तक हर डिश में मिले जिंदगी के फ्लेवर्स का असली स्वाद विजिट देयर न्यू वेबसाइट और डाउनलोड द फ्लेवर लाउंज ऐप फॉर एक्सक्लूसिव डील्स द फ्लेवर लाउंज हर बाई सुपर हिट
4: For decades, one man has made the world dance. Now, Mathangi Entertainment Group proudly brings India's Michael Jackson, Prabhu Deva, live to DFW. Joining him are Lauren Gottlieb, Sonal Bhadoria, Alexander Noel, Harini Nilakantan, Natasha Sherpa and Sanve Meghna for the ultimate pan-Indian dance concert. Saturday, August 1st at the Texas Trust CU Theatre, Grand Prairie. Book your tickets now. Call 248-233-3828. Media partner, Fun Asia Network.
5: Hi, this is Sharvari. You are listening to Fun Asia Radio.

नेगेटिव लोगों से, नेगेटिव वाइब्स से और नेगेटिव चीजों से बिल्कुल दूर रहिए, क्योंकि नेगेटिविटी ब्रीड्स नेगेटिविटी। वही नेगेटिविटी आप तक ट्रांसफर हो और आपके सुकून को बर्बाद कर दे, इससे बेहतर है कि पॉजिटिव थॉट्स की तरफ जाइए। और अगर कोई भी पॉजिटिव थॉट आपको नहीं मिल रही तो कोई बात नहीं, फाइनेंशियल रेडियो पे ट्यून इन कीजिए और सुनते रहिए हमारे साथ इन जबरदस्त गानों को। कीप एंजॉयिंग।

वहमो गुमान से दूर दूर, यकीन की हद के पास पास, दिल को भरम ये हो गया, उनको हमसे प्यार है।

दोस्तों, नॉलेज इज द ओनली थिंग जो बांटने से कम नहीं होती बल्कि बढ़ती जाती है. नॉलेज इज दैट लाइट जो आपकी जिंदगी को रोशन करती है. और सबसे इंटरेस्टिंग बात, आज के जमाने में नॉलेज सिर्फ किताबों में नहीं, हर कॉन्वर्सेशन, हर सफर, हर गाने में मौजूद होती है. तो क्यूरोसिटी रखिए, सवाल कीजिए, क्योंकि जानने का जुनून ही बनाता है इंसान को बड़ा. नॉलेज ही पावर है, और पावर तो आपको फनी जर रेडियो भी देता है विद दिस नेक्स्ट सॉन्ग, फील द पावर.

क्या आप जानते हैं कि लाफ्टर इज लाइक अ 15 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज। जैसे वर्कआउट किया हो आपने, मतलब अगर आप हंसी हंसी में हमारा शो सुन रहे हैं तो समझ लीजिए कि आपकी कैलोरीज भी बर्न हो रही हैं। तो रेडियो सुनना अब हेल्दी भी है, तो सुनते रहिए फनीशर रेडियो।

Thank you for tuning into 104.9 FM Fun Asia Radio. एक मशहूर कहावत है, बूंद बूंद से दरिया बनता है. मतलब छोटी छोटी एफर्ट से बड़ी बड़ी चीजें बनती हैं. छोटे छोटे मसलों के हल ढूंढिए, बड़े बड़े मसलों के हल खुद ही निकल आएंगे. जैसे छोटे छोटे गाने मिलकर बनते हैं फन एशिया की बहुत बड़ी और कमाल की प्लेलिस्ट. सो कमाल धमाल फन मस्ती और एंटरटेनमेंट के लिए बने रहिए फन एशिया रेडियो के साथ.

0: इस साल तो कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया।
1: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
0: नहीं।
1: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
0: नहीं।
1: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
0: वो भी नहीं।
1: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।
2: रेवेन्यू देखकर खुश मत होइए। बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रांग हो। फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट agfintax.com, कॉल 972-618-8555। AG Fintax, योर ग्रोथ आवर स्ट्रेटजी। AG Fintax, led by Forbes Finance Council member Anil Grandhi. Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
3: यार, मेरे फोन में हम दोनों के कितने सेल्फीज है यार।
4: तो चल उन सेल्फीज से पिज़्ज़ास खाते हैं।
3: What?
5: This friendship day, bring your friendship to Fun Pizza Kitchen. Post a selfie with your friends on Instagram, tag Fun Pizza Kitchen and enjoy 10% off your bill or a free garlic bread. Offer valid till August 3rd. Visit funpizzakitchen.com for more details.
6: Some journeys begin with silence and some begin with devotion. At Osho Universal, experience both. Seek inner awareness through Osho's powerful meditation techniques and bow your head at the serene Neem Karoli Baba Temple, where faith, peace and blessings come together. Stay overnight or simply visit for the weekend. Next to beautiful Lake Texoma, it's the perfect destination for spiritual rejuvenation and quality time with your family. Osho Universal, where meditation meets devotion. Visit oshouniversal.org to learn more and

0: जिंदगी के कई रंग फनीशा रेडियो के संग।
1: फिर नजरें मिलाती हूँ।

0: और मैं फूल फेंक रहा हूं।
1: तुम?
0: अरे और फिर तुम जाने लगती हो और मजाक कर रहा था ना बिल्ली।

0: अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है।
1: पनवेल हो या डेलस, सफर तभी मस्त जब गाने हो जबरदस्त। ओनली ऑन फन एशिया रेडियो।

0: is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Fun Asia 104.9 FM. Turn up the volume.
3: Beta, 95% aaye?
4: Haan, mummy.
3: Good. Ab chaliye, papa. Aap apna report card dikhaiye.
5: Mera?
3: Haan. Profit margin, cash flow, tax planning, business goals. Sare accounts updated.
5: वो
6: स्कूल का रिपोर्ट कार्ड साल में एक बार आता है बट बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड हर महीने एजी फिनटैक्स हेल्प्स यू अंडरस्टैंड प्रॉफिटेबिलिटी कैश फ्लो टैक्स प्लानिंग बिजनेस ग्रोथ थ्रू बुककीपिंग एंड सीएफओ सर्विसेज विजिट agfintax.com कॉल 972-618-8555 एजी फिनटैक्स लेड बाय फोर्ब्स फाइनेंस काउंसिल मेंबर अनिल गांधी सर्विसेज आर सब्जेक्ट टू इंडिविजुअल एलिजिबिलिटी एंड एप्लीकेबल लॉस टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई
7: सम जर्नीज बिगिन विद साइलेंस एंड सम बिगिन विद डिवोशन At Osho Universal, experience both. Seek inner awareness through Osho's powerful meditation techniques and bow your head at the serene Neem Karoli Baba Temple, where faith, peace and blessings come together. Stay overnight or simply visit for the weekend. Next to beautiful Lake Texoma, it's the perfect destination for spiritual rejuvenation and quality time with your family. Osho Universal, where meditation meets devotion. Visit oshouniversal.org to learn more and plan your trip.
8: Hi, this is Rani Mukherjee. You're listening to Fun Asia Radio.

0: कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये?
1: जो बॉलीवुड का असली मजा जानते हैं, फन एशिया पर ही आते हैं।

0: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट्स के बिना अधूरी लगती है तो ये खबर आपके लिए। दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स, तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम। चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स। डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्डन, वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन।
1: This 15th of August, don't just celebrate Independence Day, celebrate it the Indian way. Join India Association of North Texas's Anand Bazaar 2026 at the Comerica Center in Frisco. Saturday from 2 p.m. onwards, experience a grand Independence Day parade, authentic Indian food, colorful cultural performances, live music, shopping, family fun, and an unforgettable celebration of India's independence. And the best part? It's completely indoors and free for everyone.
2: Sponsorship booth from $3,000 to $50,000 and vendor stalls at $750. Call 214-529-3257.
1: Celebrate India's 80th Independence Day with the entire community. IANT Anand Bazaar 2026 on Saturday the 15th of August, 2 p.m. onwards at the Comerica Center in Frisco.
3: Hi, this is Deepika Padukone and you're listening to Fun Asia Radio.

पुष्पा झुकेगा नहीं और फनेजिया रुकेगा नहीं। नॉन स्टॉप बॉलीवुड, नॉन स्टॉप स्वैग।

0: और झुमका।
1: पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है
2: और एंटरटेनमेंट भी। स्टे ट्यून्ड टू फन एशिया।

0: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: पर डैलस में सिर्फ एक ही बात होती है, फन एशिया प्लेज द बेस्ट बॉलीवुड।

ताली मार दो हथी वीरा ताली बजेगी।

0: अच्छा, मैनिफेस्ट करने से पहले थोड़ा दोबारा सोच लो, क्योंकि अब डायमंड्स में मिल रहा है बाय टू गेट वन फ्री ऑफर। तन्मय ज्वेलर्स इन अविंग, डायमंड रिंग्स, पेंडेंट्स, इयररिंग्स और ब्राइडल ज्वेलरी पर बाय टू गेट वन फ्री, और वो भी सब कुछ होलसेल प्राइस पर। चाहे प्रपोजल हो, वेडिंग हो या बस अपनी स्पार्कल अपग्रेड करनी हो, अब शाइन डबल विद इन बजट। लग्जरी ब्रिलियंस सेलिब्रेशन, तन्मय ज्वेलर्स इन अविंग।
1: यार, मेरे फोन में हम दोनों के कितने सेल्फीज है यार।
2: तो चल उन सेल्फीज से पिज्जा खाते हैं।
1: व्हाट,
3: दिस फ्रेंडशिप डे ब्रिंग योर फ्रेंडशिप टू फन पिज्जा किचन। पोस्ट अ सेल्फी विद योर फ्रेंड्स ऑन इंस्टाग्राम, टैग फन पिज्जा किचन एंड एंजॉय 10% ऑफ योर बिल और अ फ्री गार्लिक ब्रेड। ऑफर वैलिड टिल August 3rd। विजिट funpizzakitchen.com फॉर मोर डिटेल्स।
4: Dallas, are you ready? Jago Times Group of Publications अब आ चुका है डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई मिलियन फॉलोअर्स के साथ, बोथ इन इंग्लिश एंड उर्दू, लेड बाय द फेमस एंड फियरलेस जर्नलिस्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा, जिन्होंने अपनी कलम से सोशल इनजस्टिस और करप्ट प्रैक्टिसेस के खिलाफ भरपूर आवाज उठाई। डैलस और दुनिया भर की ताजा तरीन खबरों के लिए द जागो टाइम्स अवेलेबल है एक क्लिक पर, thejagotimes.com। फॉर मोर डिटेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट कॉन्टेक्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा 6825516500। The Jago Times Commission, Jago Bhi, Jagao Bhi. Exclusive media partner, Panacea.
5: Hi, this is Kunal Kapoor and you're listening to Panacea Radio.

0: Hubcap.
1: Claustrophobia. White House ki canteen mein store pahunch gaya. Please check.
2: Achha, kaun sa wo hydrogen bomb wala?
3: Sir, court mein baat kijiye.
2: Ashraf secure line hai. Please don't irritate me. नहीं तो अभी वो ट्रिगर दबा दूंगा. हाँ, फाइनल चेक्स एवरीवन. शाफ्ट सील करने का वक्त आ गया है. कम ऑन, गेट रेडी.

0: The Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: अजी सुनते हो?
3: अजी नहीं, एजी सुनते हैं।
4: The OG of tax planning, AG FinTax. सुनेंगे आपके financial concerns, देंगे smart solutions. Every Friday 9:45 AM, only on Funasia Radio.
5: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट्स के बिना अधूरी लगती है तो ये खबर आपके लिए। दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स, तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम। चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स। डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्डन, वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन।
6: Some journeys begin with silence and some begin with devotion. At Osho Universal, experience both. Seek inner awareness through Osho's powerful meditation techniques and bow your head at the serene Neem Karoli Baba Temple, where faith, peace and blessings come together. Stay overnight or simply visit for the weekend. Next to beautiful Lake Texoma, it's the perfect destination for spiritual rejuvenation and quality time with your family. Osho Universal, where meditation meets devotion. Visit oshouniversal.org to learn more and plan your trip.

0: अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है।
1: पनवेल हो या डेलस, सफर तभी मस्त जब गाने हो जबरदस्त। ओनली ऑन फन एशिया रेडियो।

104.9 FM Fun Asia Radio. Fun Asia Radio. Pure Fact, they see.

0: is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
3: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show suna tha, and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land. Oh, harap, ye $1 million property bhi.
4: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
5: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com. Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, Division of Brazos National Bank.
6: Jaane wo kaun sa desh jahan tum chale gaye.
7: आपका डॉक्टर गया लॉन्ग वेकेशन पर, कोई बात नहीं. पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर के मल्टीपल लोकेशंस, एक्सपीरियंस फिजिशियंस के साथ क्वालिटी केयर कभी नहीं रुकती. और सिर्फ ट्रीटमेंट ही नहीं, आज ही अपना एनुअल फिजिकल शेड्यूल कीजिए. रेगुलर स्क्रीनिंग्स के साथ डिप्रेशन और एंजाइटी स्क्रीनिंग, अल्कोहल हेल्थ स्क्रीनिंग, फाइब्रो स्कैन, विटामिन B12 टेस्टिंग और बहुत कुछ. पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर, हेल्थ केयर दैट नेवर टेक्स अ वेकेशन.
8: कॉल 214-666-6259 टू बुक योर अपॉइंटमेंट्स टुडे.
9: इस रक्षाबंधन चौकटा कैसीनो एंड रिसोर्ट ड्यूरैंड के साथ सेलिब्रेट कीजिए वो रिश्ता जिसमें नोकझोंक भी है, दोस्ती भी एंड ए लाइफ टाइम ऑफ अनफॉरगेटेबल मेमोरीज. अपने भाई या बहन के साथ जुड़ी सबसे यादगार मेमोरी हमें 1 मिनट वॉइस नोट में भेजिए एंड विन एक्साइटिंग डेली प्राइजेस इंक्लूडिंग डाइनिंग एक्सपीरियंसेस, एंटरटेनमेंट, रिजॉर्ट स्टेज एंड द ग्रैंड प्राइज एंड अनफॉरगेटेबल सिबलिंग रीयूनियन वीकेंड एट चौकटा कैसीनो एंड रिसोर्ट ड्यूरैंड. अपनी स्टोरी व्हाट्सएप कीजिए 214-837-7147 पर या कॉन्टेस्ट डिटेल्स के लिए विजिट कीजिए फन एशिया रेडियो के सोशल मीडिया पेजेस.
8: चौकटा कैसीनो एंड रिसोर्ट ड्यूरैंड, वेयर अनफॉरगेटेबल मेमोरीज आर मेड टुगेदर. मस्ट बी 21 और ओल्डर टू पार्टिसिपेट. टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई. प्लीज

0: At Tanishq, no two diamonds are exactly alike. They're beautifully rare, just like the woman who wears them. That's why this is the perfect time to find yours at the Tanishq Festival of Diamonds, with up to 25% off on diamond value and making charges, plus zero deduction on your old gold exchange above 18 carat. Visit Tanishq Dallas at 2809 Preston Road, number 1200, Frisco, 75034 today. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
1: Beta, 95% aaye?
2: Haan, mummy.
1: Good. Ab chaliye, papa. Aap apna report card dikhaiye.
3: Mera?
1: Haan. Profit margin, cash flow, tax planning, business goals. Sare accounts updated.
3: वो
4: स्कूल का रिपोर्ट कार्ड साल में एक बार आता है, बट बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड हर महीने. एजी फिनटेक्स हेल्प्स यू अंडरस्टैंड प्रॉफिटेबिलिटी, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस ग्रोथ थ्रू बुककीपिंग एंड सीएफओ सर्विसेज. विजिट agfintax.com. कॉल 972-618-8555. एजी फिनटेक्स लेड बाय फोर्ब्स फाइनेंस काउंसिल मेंबर अनिल गांधी. सर्विसेज आर सब्जेक्ट टू इंडिविजुअल एलिजिबिलिटी एंड एप्लीकेबल लॉस. टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई.
5: Party is on everyone's mind at the moment in Dallas, cause the hottest destination to party with your tribe is in town. Mirage Lounge, a premium lounge offering hookahs, bites, crafted cocktails and live music and DJ nights. And guess what? A happy hour from 11 a.m. to 5 p.m. Monday to Thursday with hookahs at $15.99 and shots at $4.99 each. Plus, ladies' night and college nights bhi.
4: Visit Mirage Lounge at McKinney Ranch Parkway, cause miracles happen in Mirage.
6: One mistake doesn't have to define your future. A DWI or DUI charge can bring serious consequences, including license suspension, fines, and even jail time. But you don't have to face it alone. At Mathur Law Offices PC, we provide experienced legal representation in criminal defense matters, including DWI cases.
7: We also assist with related legal issues, including immigration consequences that may arise from criminal charges. Every case is different. The right legal strategy depends on your specific facts and circumstances. Call 214-378-8880. Mathur Law Offices PC. Right advice, right defense.
8: Paid spokesperson, Principal Office, Dallas, Texas.
9: यार, मेरे फोन में हम दोनों के कितने सेल्फीज है यार.
10: तो चल उन सेल्फीज से पिज्जास खाते हैं.
9: What?
11: This friendship day, bring your friendship to Fun Pizza Kitchen. Post a selfie with your friends on Instagram, tag Fun Pizza Kitchen and enjoy 10% off your bill or a free garlic bread. Offer valid till August 3rd. Visit Fun Pizza kitchen.com for more details.
12: क्या आपको बिजनेस खरीदने के लिए लोन चाहिए?
13: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स.
12: क्या आप फ्रेंचाइज शुरू करना चाहते हैं?
13: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स.
12: क्या आपको अपने बिजनेस के लिए वर्किंग कैपिटल की जरूरत है?
13: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स.
12: कंस्ट्रक्शन हो या रेनोवेशन, बिजनेस खरीदना हो या रीफाइनेंस कराना हो, फॉर ऑल योर बिजनेस फाइनेंशियल नीड्स एट द बेस्ट इंटरेस्ट रेट एंड लोएस्ट डाउन पेमेंट, कॉल द SBA लोन एक्सपर्ट्स एट 817-786-3338. दैट्स 817-786-3338.
14: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
15: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
16: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
17: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
18: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com.
19: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे।
20: इंडिया में तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं वो कैसे अटेंड करेंगे?
19: पर यहाँ सारी अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा।
20: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
19: सच में सब संभाल लेंगे?
20: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट दे डिलीवर, वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह, सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
4: कॉल हरि बसेरा ऑन 4694428770. Vanessa Events, your celebration partner.

0: the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
3: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show sunata, and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land. Oh, harap, ye $1 million property bhi.
4: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
5: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com. Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, Division of Brazos National Bank.
6: Hire moti, main na chahun.
7: अच्छा मैनिफेस्ट करने से पहले थोड़ा दोबारा सोच लो क्योंकि अब डायमंड्स में मिल रहा है बाय टू गेट वन फ्री ऑफर तन्मय ज्वेलर्स इन अर्विंग डायमंड रिंग्स पेंडेंट्स इयररिंग्स और ब्राइडल ज्वेलरी पर बाय टू गेट वन फ्री और वो भी सब कुछ होलसेल प्राइस पर चाहे प्रपोजल हो वेडिंग हो या बस अपनी स्पार्कल अपग्रेड करनी हो अब शाइन डबल विद इन बजट लग्जरी ब्रिलियंस सेलिब्रेशन तन्मय ज्वेलर्स इन अर्विंग
8: देसी फ्लेवर्स भी और टेक्सास के फेवरेट्स भी अब सब कुछ मिलेगा एक ही जगह HEB में सोना मसूरी राइस नानक पनीर पाले जी बिस्किट्स और बहुत कुछ वही ऑथेंटिक स्वाद जिसके साथ आप बड़े हुए हैं और साथ ही HEB के एक्सक्लूसिव टेक्सन फेवरेट्स जो आपको यहाँ पसंद है अब एक ही शॉपिंग ट्रिप में ज्यादा काम निपटाइए और इस समर जरूर देखिए HEB के नए DFW स्टोर्स मिड सीरीज अर्विंग और मर्फी में खुल रहे हैं तो आज ही अपने नजदीकी HEB पर जाएं और खरीदिए अपने ट्रेडिशनल्स और टेक्सन फेवरेट्स HEB हियर एवरीथिंग इज बेटर
9: मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूंगी वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय कर दो
10: अरे मैडम करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या
11: अब करेगा बिकॉज इंडियन अटायर फ्रिस्को समर सेल इज ऑन स्टनिंग लहंगास एलिगेंट साड़ीज ब्राइडल ज्वेलरी मेंस एंड किड्स वेयर
12: इतना सब और प्राइस
11: अप टू 25% ऑफ ऑन लहंगास एंड ब्राइडल कलेक्शन समर सेल थ्रू द एंड ऑफ ऑगस्ट ओनली एट इंडियन अटायर फ्रिस्को ट्रेडिशनल हो या फ्यूजन अब हर आउटफिट बोलेगा
13: जिंदगी एक रंगमंच है
14: और घर ढूंढना सिर्फ इंटरवल असली क्लाइमेक्स तो तब है जब क्लोजिंग स्मूथ हो पेपर वर्क क्लियर हो और चाबी आपके हाथ में हो पर्दा गिरने से पहले फर्स्ट यूनाइटेड टेक्सास टाइटल हम पक्का करते हैं कि घर सच में आपका हो हर कदम आपके साथ
11: कॉल 972-897-1530 firstunitedtexastitle.com Hey Maps, take me to my Desi grocery store.
15: Calculating route, rerouting.
11: अरे ये क्या? मुझे मेरे वाले grocery store में जाना है.
15: Location upgraded. Now heading to India Bazaar, Fort Worth.
11: क्यों?
15: क्योंकि Fort Worth, Keller, Hazlitt और Hearst के smart लोग जानते हैं. Daily groceries हो या पूजा essentials, authentic Indian products और घर की हर जरूरत. Find everything Desi at India Bazaar in Fort Worth.
11: अच्छा. तो सीधा वही ले चलो
16: इंडिया बाजार एट 5152 क्वाड्रेंट वे फोर्ट वर्थ स्विच द रूट
15: योर न्यू डेस्टिनेशन हैज अराइव्ड
17: डॉक्यूमेंट्स या पार्सल भेजनी है
11: हाँ
17: घर रिलोकेट करनी है
11: हाँ
17: गाड़ी भी ट्रांसपोर्ट करना है
11: हाँ भाई हाँ
17: तो फिर टेंशन क्यों ले रहा है SFL Worldwide को कॉल कर
16: डॉक्यूमेंट्स शिपिंग बॉक्सेस शिपिंग कंप्लीट डोर टू डोर रिलोकेशन ऑटो ट्रांसपोर्ट सिर्फ इंडिया नहीं USA और दुनिया भर में ट्रस्टेड शिपिंग और मूविंग सर्विसेज SFL Worldwide हर मूव का परफेक्ट सॉल्यूशन विजिट sflworldwide.com और कॉल 1-800-691-2335
11: Are you seeking clarity in life? Wondering what destiny has in store for you?
18: हर समस्या का हल है एस्ट्रोलॉजर ईश्वर के पास 400 साल की फैमिली विजडम के साथ वर्ल्ड फेमस एस्ट्रोलॉजर अब डैलस में
11: दैट मैजिक रिमूवल हो लव एंड रिलेशनशिप इश्यूज हो गेट ट्रस्टेड सॉल्यूशंस विद 100% प्राइवेसी
18: थाउजेंड्स की लाइफ बदली उनकी डिवाइन गाइडेंस से नाउ इट्स योर टर्न समस्या का पक्का समाधान एस्ट्रोलॉजर ईश्वर कॉल नाउ 9455270897 और विजिट astrologerishwar.com
19: com If you or your family member is involved in a truck accident, here's what you must do. First, ensure everyone's safety. Next, gather as much information as possible. Make sure you take great photos, talk to any witnesses that may have seen the accident, and ensure that you document all of the information for the truck driver and company. Truck accidents often lead to serious injuries, so don't deal with it alone. Call Attorney Omar at 833-GET-OMAR or visit us online at attorneyomar.com. When it comes to representing your case, our goal is simple. We want you to receive the maximum amount of money you deserve.
20: If you are just joining us, please receive my very warm welcome to this hour of the show. I will get you caught up and get you completely informed as well as entertained as we round off this work week for you and also round off the month of July.

0: Lawson Travels Cruises. Honeymoons, custom family trips, stress-free travel every mile. Call 214-631-2458 today.
1: इस साल तो कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया।
2: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
1: नहीं।
2: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
1: नहीं।
2: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
1: वो भी नहीं।
2: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।
0: रेवेन्यू देखकर खुश मत होइए। बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रांग हो। फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट agfintax.com, कॉल 972-618-8555। AG Fintax, your growth, our strategy. AG Fintax, led by Forbes Finance Council member Anil Granthi. Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
3: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे?
4: इंडिया में? तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं, वो कैसे अटेंड करेंगे?
3: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा।
4: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
3: सच में सब संभालेंगे?
4: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर। वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह। सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
0: कॉल हरी बसेरा ऑन 469-442-8770. Vanessa Events, your celebration partner.

0: It is 9 o'clock.
1: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
2: Official tax and finance partner, AG FinTax.
1: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: In association with Passion Health Primary Care.
3: कहाँ गया, कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
4: कौन सा?
3: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है.
4: अरे सारे तो सेम है.
3: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये ये ये देखो, ये वाला.
4: ओ हाँ, ये तो अलग है.
5: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है. From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection, now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
6: क्या आपको बिजनेस खरीदने के लिए लोन चाहिए?
7: कॉल द SBA लोन एक्सपर्ट्स.
6: क्या आप फ्रेंचाइज शुरू करना चाहते हैं?
7: कॉल द SBA लोन एक्सपर्ट्स.
6: क्या आपको अपने बिजनेस के लिए वर्किंग कैपिटल की जरूरत है?
7: कॉल द SBA लोन एक्सपर्ट्स.
6: Construction ho ya renovation, business kharidna ho ya refinance karana ho, for all your business financial needs at the best interest rate and lowest down payment, call the SBA loan experts at 817-786-3338. That's 817-786-3338.
8: Zindagi ek safar hai suhana, yahan kal kya ho kisne jana.
1: Life ho ya health, kab kya ho jaye pata nahi. 13 saal tak Texas Primary Care Clinic ne jeeta aapka trust, aur ab wahi trusted care urgent care services ke saath naye Kaiserway location par. Lunoxy Medical, founded by Dr. Mandeep Acharya. Adults aur bachchon ke liye primary care, urgent care, x-ray, CT scan, heart testing aur med spa, sab kuch ek hi roof ke niche. Lunoxy Medical Urgent Care, open 7 days a week, 8 a.m. to 8 p.m. Walk in anytime. 9191 Kaiser Way, Suite 205, Frisco.
9: One mistake doesn't have to define your future. A DWI or DUI charge can bring serious consequences, including license suspension, fines, and even jail time. But you don't have to face it alone. At Mathur Law Offices PC, we provide experienced legal representation in criminal defense matters, including DWI cases.
5: We also assist with related legal issues, including immigration consequences that may arise from criminal charges. Every case is different. The right legal strategy depends on your specific facts and circumstances. Call 214-378-8880. Mathur Law Offices PC. Right advice, right defense.
10: Paid spokesperson, Principal Office, Dallas, Texas.
9: Coughing or sneezing at home? Your air ducts may be to blame. And clogged dry vents can even cause fires. Duct Time removes dust, pollen, allergens and lint, giving you cleaner air, better health, energy savings and peace of mind. Serving the DFW area and 15 plus years of experience with CSIA certified technicians and free estimates. Fun Asia listeners get $100 off duct cleaning plus free dryer vent cleaning and sanitizer with service. Call Jeetu Patel at 972-877-2500 or visit callducttime.com. Breathe easy, live safe with Duct Time.
11: जीत उनकी होती है जिनकी नजर सिर्फ टारगेट पर होती है, चाहे ओलंपिक स्टाइल आर्चरी हो या 10 मीटर्स इंडोर प्रिसिजन शूटिंग. फोकस, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी. फ्रिस्को प्रिसिजन स्पोर्ट्स एकेडमी, वन एंड ओनली इन नॉर्थ डैलस. फ्रॉम बिगिनर टू कंपेटिटिव एथलीट्स, स्ट्रक्चर्ड कोचिंग, एक्सपर्ट गाइडेंस एंड परफॉर्मेंस ड्रिवन ट्रेनिंग एजेस 8 एंड अबव.
12: फ्रिस्को प्रिसिजन स्पोर्ट्स एकेडमी पावर्ड बाय अर्जुन आर्चरी एकेडमी, कन्वीनिएंटली लोकेटेड ऑन क्वाइट रोड इन फ्रिस्को. विजिट friscoprecisionsports.com और कॉल 4693331099.
13: Mention Fun Asia and get 50% off on tryout session.
14: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
15: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
16: माँ, रील्स में सब लकी ही होते हैं। जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
17: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहां एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है. करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट.
16: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com.
0: This 15th of August, don't just celebrate Independence Day, celebrate it the Indian way. Join India Association of North Texas's Anand Bazaar 2026 at the Comerica Center in Frisco. Saturday from 2 p.m. onwards, experience a grand Independence Day parade, authentic Indian food, colorful cultural performances, live music, shopping, family fun, and an unforgettable celebration of India's independence. And the best part? It's completely indoors and free for everyone.
10: For sponsorship booth from $3,000 to $50,000 and vendor stalls at $750. Call 214-529-3257.
0: Celebrate India's 80th Independence Day with the entire community. IANT Anand Bazaar 2026 on Saturday, the 15th of August, 2 p.m. onwards at the Comerica Center in Frisco.
18: Let's get started with this hour of the program.

0: Alan Parker died on today's date in 2020, the British director, writer and producer who worked in a wide range of genres, and his notable films include Midnight Express and Fame. Ayman al-Zawahiri died on today's date in 2022 in Kabul, Afghanistan, the Egyptian physician and militant who became one of the major ideologues of Al-Qaeda. He led Al-Qaeda from 2011 until his death in 2022 on this last day of July.
1: At Tanishq, no two diamonds are exactly alike. They're beautifully rare, just like the woman who wears them. That's why this is the perfect time to find yours at the Tanishq Festival of Diamonds, with up to 25% off on diamond value and making charges, plus zero deduction on your old gold exchange above 18 carat. Visit Tanishq Dallas at 2809 Preston Road, number 1200, Frisco, 75034 today. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
2: In one moment, an accident can change everything. When it does, you don't need sympathy, you need strength. Attorney Omar Khawaja, the official injury partner of FunAsia Network, fights to get you every dollar you deserve. No upfront fees, no empty promises, just results. And if you don't win, hey, you don't pay. Call now for your free consultation at 833-GET-OMAR or visit attorneyomar.com. Omar Khawaja, your legal lifeline.
3: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट के बिना अधूरी लगती है तो ये खबर आपके लिए। This summer enjoy 20% off on all appetizers, tandoori items and mocktails only at Tandoori Flame. Chicken tandoori, malai chicken tikka, paneer tikka, momo ya soya champ. Ab har bite ke saath milegi extra savings. Dine in only at Tandoori Flame Garland, where every bite is a celebration.
4: It's true, हम अपनी सद्बुद्धि से बहुत सी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, but sometimes even the best need a little guidance. With over 400 years of family tradition, through his extensive knowledge of astrology and palm reading, Pandit Ishwar Ji can help you with any difficulty in your personal or professional life, from relationship issues to negative energy removal. Call the most trusted astrologer, Pandit Ishwar Ji, 945-527-0897, or visit astrologerishwar.com.
5: इस रक्षाबंधन चौकटॉक कैसीनो एंड रिसोर्ट ड्यूरांड के साथ सेलिब्रेट कीजिए वो रिश्ता जिसमें नोकझोंक भी है, दोस्ती भी एंड ए लाइफ टाइम ऑफ अनफॉरगेटेबल मेमोरीज. अपने भाई या बहन के साथ जुड़ी सबसे यादगार मेमोरी हमें 1 मिनट वॉइस नोट में भेजिए एंड विन एक्साइटिंग डेली प्राइजेस इंक्लूडिंग डाइनिंग एक्सपीरियंसेस, एंटरटेनमेंट, रिजॉर्ट स्टेज एंड द ग्रैंड प्राइज एंड अनफॉरगेटेबल सिबलिंग रीयूनियन वीकेंड एट चौकटॉक कैसीनो एंड रिसोर्ट ड्यूरांड. अपनी स्टोरी व्हाट्सएप कीजिए 214-837-7147 पर या कॉन्टेस्ट डिटेल्स के लिए विजिट कीजिए फनेशिया रेडियो के सोशल मीडिया पेजेस.
6: चौक टॉक कैसीनो एंड रिसॉर्ट डुरांट, वेयर अनफॉरगेटेबल मेमोरीज आर मेड टुगेदर. मस्ट बी 21 और ओल्डर टू पार्टिसिपेट. टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई. प्लीज प्ले रिस्पांसिबली.
7: रितेश, कभी सोचा है कल अगर तुम नहीं रहे तो मेरा क्या होगा?
8: अरे रिलैक्स, सब तुम्हारा ही तो है.
7: सच? या फिर कोर्ट डिसाइड करेगा?
8: वेट, व्हाट?
9: यस, अगर प्रॉपर एस्टेट प्लान नहीं है तो आपकी फैमिली के डिसीजंस कोर्ट लेता है.
10: हाय, दिस इज दीप्ति वर्मा विद NRI वेल्थ. मैं फैमिलीज को हेल्प करती हूँ उनकी मेहनत को प्रोटेक्ट करने में, द राइट वे विद एस्टेट प्लानिंग.
9: अगर आपके पास सिर्फ विल है या कुछ भी नहीं है तो ये कॉल डिले मत कीजिए. कॉल 669-243-5799, दैट्स 669-243-5799 फॉर अ फ्री 15-मिनट कंसल्टेशन.
11: यार, बॉस ने फिर से डांट दिया. ट्रैफिक अलग और ऊपर से स्ट्रेस.
12: अरे रिलैक्स, यू नीड अ कूल थेरेपी.
11: थेरेपी? वो तो बहुत महंगी है.
12: नहीं, कूल मतलब कूल चा थेरेपी.
11: ये क्या होता?
12: सिंपल, चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस इन एलन.
13: चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस, सर्विंग सम ऑफ द बेस्ट पंजाबी फूड इन डैलस, फ्रॉम बटरी करीज टू ऑथेंटिक पंजाबी स्ट्रीट फूड फेवरेट्स, स्ट्रेट फ्रॉम शेफ गगन पन्नूस किचन. सो नेक्स्ट टाइम लाइफ गेट्स स्ट्रेसफुल, जस्ट टेक अ डोज ऑफ कूल चा थेरेपी एट चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस.
14: एंड नाउ एट अ बिगर लोकेशन जस्ट 3 doors डाउन विद लिमिटेड रिजर्वेशन.
15: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे.
16: इंडिया में? तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं वो कैसे अटेंड करेंगे?
15: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा।
3: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
15: सच में सब संभालेंगे?
3: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर। वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह। सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
9: कॉल हरी बसेरा ऑन 4694428770। Vanessa Events, your celebration partner.
0: Music composer Jatin Pandit has voiced his disappointment over the recreated version of this track that I'm about to play for you. Not a dancing song, he said. It's like raising a child with love when someone else takes it and changes everything.
16: अरे सर, हर गाने का रीमिक्स ही कर देते हैं सर। सर, हमारी जनरेशन को ये सब समझ नहीं आता, नहीं आएगा कुछ बोलो यार, छोड़ो यार सर, मेरे को
17: गाने का इक्वल वैल्यू है।
16: अरे कोई कॉल नहीं करेगा भैया गाना,
18: अगर तू समझ नहीं रहा है ये हिट गाना है, तेरे को नहीं करना, तू मत कर, मैं जा रहा हूं।
0: Its faster arrangement, dance-oriented treatment and newly added opening verse takes away from the simplicity that made the original timeless, he said. The recreated version, produced by Lijo George, opens with a fresh verse sung by Dev Negi and Palak Muchal, before you will notice it'll transition into Kumar Sanu and Alka Yagnik's original vocals.

0: home goes up, they're getting wealthier. As someone who analyzes numbers every day, do you agree? This is not yours. I know, this is the one I have. Send it to me quickly on my number, on my cell phone. Can you do it? I'll give you the number quickly. 214-675-1754. 675-1754.
1: शादी कर सकते हैं
2: क्वीन विक्टोरिया
0: यू गॉट इट
1: क्वीन विक्टोरिया की तरह कैसे दिख सकती हैं आप तो वैसे ही लगेंगी मलिका तिल फरी
0: ओके आई एम पुटिंग दिस लाइन ऑन होल्ड ओके ओके स्टे ऑन होल्ड

0: It is 10 o'clock.
1: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
2: Official tax and finance partner, AG FinTax.
1: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: In association with Passion Health Primary Care.
3: जीनी
4: हुकम मेरे आका,
3: हम आज पार्टी के मूड में हैं। एक ऐसी जगह बताओ जहां मेरी एंट्री ही रॉयल हो।
4: मिराज लाउंज चलिए मेरे आका, लग्जरी लिमोजीन राइड्स आपके इंतजार में हैं।
3: मुझे ज्यादा क्राउड पसंद नहीं।
4: नो प्रॉब्लम आका, लग्जरी प्राइवेट स्पेस भी हाजिर है आपकी प्राइवेट पार्टी के लिए।
3: और एंटरटेनमेंट,
4: मूवी नाइट, बेली डांसिंग नाइट्स, प्रीमियम हुकर्स और अमेजिंग वाइब्स सब आपकी खिदमत में है।
3: वाह जीनी, ये जगह है या कोई जादू?
4: जादू नहीं, मिराज लाउंज एट मिकिनी रेंज पार्कवे। मिरेकल्स हैपन इन मिराज।
5: Immigration is a serious concern for our community. And when you are filing your case, you want a firm which is exclusively devoted to immigration law, like the law offices of Seema Mehta. From simple to highly complex cases, attorney Seema Mehta and her team are dedicated to managing them successfully. Whether it is for an immigrant visa or non-immigrant visa, family, employment or investment visa, perm labor certification or citizenships, they do it all. Call 214-432-2499 or email at info@seemamehtalawfirm.com.
6: सुनो, कल बहुत काम है। पहले ग्रोसरी, फिर पूजा का सामान, गिफ्ट्स भी खरीदने, और इन सब कुछ के बाद मैं कुकिंग नहीं करने वाली। कहीं अच्छा सा डिनर करके आएंगे।
7: और ये सब कुछ अगर एक ही जगह हो जाए तो
6: कहाँ?
8: फूडिस्तान इन ऑबरी, फ्रेश ग्रोसरी, हलाल मीट, पूजा एसेंशियल्स, लाइव पानी पूरी, केटरिंग सर्विसेज, प्लस लोएस्ट प्राइस मैच गारंटी। एंड इनसाइड फूडिस्तान, एंजॉय द प्रीमियम इंडियन कुजीन एट डीवाइव, एन अपस्केल रेस्टोरेंट फॉर द परफेक्ट फैमिली डिनर।
9: फूडिस्तान इन ऑबरी, मेंशन फन एशिया एंड एंजॉय 10% डिस्काउंट।

गुलाम फिल्म का ये गाना हमें वन ऑफ माय फेवरेट्स, मेरा पसंदीदा गाना है। और इस गाने को बजाने के पीछे एक कारण है कि आज सुबह से जुबान पे ये गाना चढ़ा हुआ था, तो सोचा क्यों नहीं आज अपने शो की शुरुआत इसी गाने से करते हैं। तो भाई आज गपशप गली पे बहुत सारी गपशप हम करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं उस सबसे ट्रेंडिंग न्यूज़ की जो कि अभी बॉलीवुड की सबसे बड़ी खबर बनी हुई है, जो कि है नितेश तिवारी की रामायण। रामायण का ट्रेलर रिलीज हुआ है परसों, जिसके बारे में मैंने कल भी बात की थी, बट अभी इंटरनेट के रिएक्शंस देख करके ना मेरा दिमाग घूम गया है। ऐसे ऐसे लोग सवाल पूछ रहे हैं इंटरनेट पे कि मत पूछिए, मतलब बता ही देती हूँ, पूछिए क्यों नहीं। पहले तो सबसे पहले रणबीर को देख करके लोग कंफ्यूज्ड हैं कि सीधे एनिमल के अवतार से भगवान श्री राम के अवतार पर उतर गए हैं रणबीर। उसके बाद साई पल्लवी की बात करें तो लोगों को बस एक ही प्रॉब्लम है कि भाई साई पल्लवी हिंदी कैसे बोल पाएंगी। मुझे लगता है कि वो अपने किरदार में बखूबी आएंगी और बहुत अच्छे से उसको पोर्ट्रे करेंगी। रणबीर भी मुझे लगता है अच्छा ही कर लेंगे। आप लोगों का क्या रिएक्शन है फिल्म रामायण के ट्रेलर के? अभी इस ट्रेलर को हम लोग सिर्फ AI वीडियोस में देख रहे थे, एक्चुअल ट्रेलर बहुत अमेजिंग है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है, आई थिंक यू शुड जस्ट गो एंड वॉच दिस ट्रेलर वंस। इट्स लुकिंग सो अमेजिंग। इसके बारे में और बात करेंगे, लेकिन फिलहाल आपको ये गाना सुनाते हैं।

0: An accident can happen in seconds, but recovering from it can take much longer. If you have been involved in a car crash, truck accident, or a slip and fall, let attorney Omar Khwaja handle the legal battle while you focus on healing. He'll fight for the compensation you are entitled to, and you pay nothing unless your case is won. Call 469-300-405046. I repeat, it's 469-300-5046. Or visit attorneyomar.com for your free consultation. And please mention this segment. This segment of the show is brought to you by Omar Khwaja. तो चलिए अपने शो को आगे बढ़ाते हैं और आपको बताते हैं हम रामायण के ट्रेलर के बारे में, उसके बारे में हम बात कर रहे थे. तो बेसिकली रामायण का ट्रेलर लॉन्च हो गया यूट्यूब पे. अगर आपने मुझे अभी सुनना शुरू किया तो जान लीजिए मिलियंस ऑफ व्यूज क्रॉस हो गए हैं. नितेश तिवारी की इस फिल्म का इंतजार बहुत समय से हो रहा था और फाइनली ट्रेलर आ गया है. फाइनली हमें सारे कैरेक्टर्स दिख गए हैं और मेरे हिसाब से ना, मेरा वो 90s इफेक्ट नहीं जा रहा है रामायण वाला. आज भी वो जो 19 इफेक्ट्स, जो रामानंद सागर की रामायण थी, जो उसका VFX या साउंड इफेक्ट्स था, वो आज भी ना कहीं हमारे मेमोरी में बैठा हुआ है. और रामायण आते ही सबसे पहले चेहरा आता है सामने अरुल गोविल का एज राम, एंड सीता माता का चेहरा आता है. लेकिन इस बार इस रामायण में अरुण गोविल साहब राम की जगह राम के पिता के अवतार में हैं. एक्चुअली होना ही चाहिए, उम्र उनकी उसी के करीब पहुंच गई है, तो वो दशरथ के अवतार में दिख रहे हैं. अब देखना ये है कि कैसा लगता है उनको सीधे राम से राम के पिता बनते हुए देखना. एक्चुअली इंटरेस्टिंग होगा, जिसको हम राम देखते आए उसको राम के पिता के अवतार में देखेंगे हम. सो ये एक बहुत बड़ा मेरे लिए, मतलब यू नो, आई वाज सरप्राइज टू सी दिस. आई डिड नॉट नो. राम का मुझे पता है कि रणबीर राम का किरदार निभा रहे हैं और साई पल्लवी सीता का किरदार निभा रही हैं, बट राम के पिता का अवतार मेरे लिए सरप्राइज था. अगर आपने ट्रेलर देखा है तो मुझे कॉल करिए और बताइए आपको सबसे अनोखी चीज़ क्या लगी इस रामायण के ट्रेलर में. और अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाइए देखिए और थोड़ा सोचिए इसके बारे में यार, बिकॉज अगर आप 80s 90s किड हैं तो रामायण इज़ अ बिग पार्ट ऑफ आवर टीवी जर्नी, आवर, क्योंकि हमने वही बिठा के दिखाया गया है. हमेशा रात का हमेशा वो टाइम पता है जब दूरदर्शन पे रामायण आने वाला होता था, तो हर घर में वही चल रहा होता था. So yes, you can call on the studio number, which is 972-235-5555, and tell me about your Ramayan memory and what do you think about this trailer, which has been now launched officially.
1: Queen Victoria ki tarah kaise dikh sakti hain aap? Aap to waise hi lagengi. Malika Talfariya.

मैं वापस आऊंगा। इस फिल्म के सारे गाने ना मतलब इतने मज़ेदार हैं, दिल को छूने वाले गाने हैं। मैं हमेशा 90s के गानों की बात करती हूँ, उनकी फ़ैन हूँ। और AR रहमान ने जो इस मूवी के गानों के साथ किया है ना, इट हैज़ मैच दैट लेवल। आजकल हमें पता है, हम सब जानते हैं, सिर्फ रीमिक्सेस बन रहे हैं, और लेकिन ये जो क्रिएशन है इस फिल्म में, जो गानों की जो म्यूज़िक है, इट्स जस्ट सो हार्ट टचिंग। ओके, तो चलिए वापस आते हैं जिस बारे में हम बात कर रहे हैं, उसके बारे में। हनुमान रामायण रामायण का ट्रेलर लॉन्च हुआ है और उस पर हम डिस्कस कर रहे हैं, बिकॉज यार रामायण इज़ अ नॉस्टैल्जिया फॉर अस। ये कैसा हमारे ज़िंदगी का पार्ट है, हमारे बचपन का पार्ट है एक्चुअली, जो कि कंटिन्यूड है आज तक हमारे साथ। एंड जब कोविड आया था, तो आई रिमेम्बर इंडिया में आई यूज़ टू गेट न्यूज़ फ्रॉम एवरीबडी दैट रामायण फिर से आ रही है, और लोग टीवी पे उसी तरीके से बैठ के देख रहे हैं। तो हम 90s 80s 90s की बात करें, तब भी और अभी भी लोग रामायण के साथ वैसे ही अपना कनेक्ट फील कर पा रहे हैं। लेकिन क्या ये जो नई रामायण आ रही है, जो ट्रेलर आई है, ट्रेलर बहुत ही ग्रैंड है, VFX बहुत अच्छे हैं, लेकिन जिस तरह से हमने रामायण को देखा है, उस तरह से क्या हम उसको देख पाएंगे, मतलब मूवी से, अपने बचपन से इस मूवी को रिलेट कर पाएंगे, ये मेरा सवाल है। और ये सवाल मेरे ऑडियंस से है। अगर आप लोगों ने ट्रेलर देखा है, तो आपका जो भी आपके मन में लेकर के थॉट्स हैं या फीडबैक है, वो प्लीज़ मेरे साथ शेयर करें। 972-235-5555 स्टूडियो का नंबर है, आप कॉल कर सकते हैं मुझे। फिलहाल एक मेरे कॉलर का अभी कॉल आया था, और उन्होंने मुझसे डिस्कस किया कि जो कुछ चीज़ें ना हम उससे बिल्कुल कनेक्ट नहीं कर पा रहे अभी, जैसे कि लक्ष्मण, लक्ष्मण का पार्ट हमेशा हमने देखा है, लक्ष्मण जी बहुत गुस्से वाले हैं। इफ यू ऑल नो, लक्ष्मण वॉज द अवतार ऑफ शेषनाग एंड इज ऑलवेज इन गुस्सा, तो ऐसा कहा जाता है कि वो गुस्से में रहते थे, और उनका वैसे ही कैरेक्टर भी दिखाया, बट हमने एक भी डायलॉग नहीं सुने। यस, हमें कुछ सुनना था लक्ष्मण के मुंह से, कुछ शब्द, कुछ डायलॉग्स। VFX बहुत अच्छा है, बड़े अच्छे से उन्होंने दिखाया है कि कैसे वो लक्ष्मण रेखा बना रहे हैं। इफ आई कंपेयर फ्रॉम द ओल्ड रामायण, उन्होंने बस तीर से एक लाइन ड्रॉ करी थी, एंड हियर ही उन्होंने बाण निकाला है और ज़मीन पे मारा है और लाइन बन रही है। दैट्स व्हेन यू सी इट, यू फील ओ वाओ, दैट्स सो ग्रेट। बट आर वी एबल टू कनेक्ट इट विद द ओल्ड रामायण, द एक्चुअल रामानंद सागर वाली रामायण? और भी बहुत कुछ है बातें इसके बारे में। सबसे बड़ी बात है कि यार हनुमान जी वॉज मिसिंग। आई रेड ऑन द इंटरनेट दैट द हनुमान का कैरेक्टर इज बींग प्लेड बाई सनी देओल, बट वी डिड नॉट सी हिम। कहाँ दिखे? दारा सिंह को हमने देखा है हनुमान के रूप में, हनुमान के कैरेक्टर में रामानंद सागर वाली रामायण में, बट यहाँ हमें नहीं दिखे। एंड आई कैन नॉट इमेजिन सनी देओल एज हनुमान जी, सो आई रियली वॉन्टेड टू सी हिम ऑन स्क्रीन इन दिस ट्रेलर। हनुमान जी उड़ रहे यार, पूरे समुद्र के ऊपर उड़ते हुए जा रहे हैं, फाइटिंग विद दोज राक्षस इन द रास्ता। सो ऑल दैट वॉज मिसिंग इन द ट्रेलर, एंड दैट वुड हैव क्रिएटेड कुछ ज़्यादा ही इफेक्ट मेरे लिए, मतलब मुझे ऐसा लगता है। अगर आपको भी ऐसा कुछ लगता है, आपने ट्रेलर देखा है, तो ज़रूर कॉल करिए मुझे 972-235-5555 पे, और अपने विचार व्यक्त करिए। तब तक के लिए ये गाना आप सब के लिए।

0: How much time does your doctor spend with you? 5 minutes? 10 minutes? At Passion Healthcare, every appointment is scheduled for 30 minutes because truly understanding your health takes time. Because at Passion Health, you're not just a patient, you're family. For you, for your family, and for the health of our community, Passion Health Primary Care. 30 minutes is all it takes to complete your annual physical, anxiety care, fibroscan, for alcohol-related liver concerns, vitamin B12 deficiency testing, and more. All are available at Passion Health. Schedule your appointment today. Call 214-666-6259 to book your appointment. Passion Health Primary Care. Your health is our passion. वेलकम बैक. हम सुन रहे हैं कुछ बहुत प्यारे गाने और बात कर रहे हैं आज एक बहुत ही अच्छे से पुराने से मतलब दिल के करीब वाले टॉपिक पे जो कि है रामायण. रामायण क्या है हमारे लिए? तो रामायण रामानंद सागर की रामायण है, पर नए ट्रेलर से क्या हमें देखने मिला और हमने क्या इमेजिन मतलब हमारे मन में क्या है इमेजिनेशन रामायण का, उसके बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं. और कॉल्स आ रही हैं, ढेरों कॉल्स आ रही हैं, लोगों ने ट्रेलर देखा है तभी तो इतने मिलियन व्यूज़ हैं और सब अपने अपने विचार शेयर कर रहे हैं. जैसे कुछ लोग कह रहे हैं कि रावण, जो रावण का कैरेक्टर है, इतना डैशिंग हैंडसम यंग रावण दिखाया है और राम भी वैसे ही लग रहे हैं, मतलब सिमिलर एज के लग रहे हैं. वेयर इन एक्चुअल रामायण राम वॉज अ बॉय एंड रावण उनसे उम्र में काफ़ी बड़े, काफ़ी एक्सपीरियंस्ड और काफ़ी ऐसा कैरेक्टर है जो कि बहुत ही ज़्यादा डायनामिक है, लेकिन वो अधेड़ उम्र का है. लाइक ही इज ओल्डर देन राम एंड दैट्स व्हाट इज कॉन्फ्लिक्टिंग हियर, दैट राम एंड रावण लुक द सेम एज एंड देन व्हेन दे कम टू कम यू नो व्हेन दे विल कम फेस टू फेस फॉर द फाइट कैसा लगेगा. ये एक लोगों ने अपना ओपिनियन दिया. दूसरा, हनुमान जी के बारे में सब लोग बोल रहे हैं, वेयर इज हनुमान, वी वांट टू सी हनुमान फ्लाइंग. एंड वन ऑफ द फीडबैक्स आई गॉट, देयर इज टू मच ऑफ ग्राफिक्स. मतलब आई थिंक वी आर ओल्ड स्कूल, हम पुराने जमाने के हैं, हमें वही ग्राफिक्स याद हैं जो हमने देखा है. इतना ग्राफिक्स जो है हमें हजम नहीं हो रहा है, हर चीज़ में जो इतना ज़्यादा यू नो इतना ग्रैंड है और इतने पैसे खर्च हुए ग्राफिक्स से पीछे. ऑब्वियसली आई रेड समवेयर दैट इट्स लाइक ऑलमोस्ट 1600 crores दैट हैज़ बीन स्पेंड ऑन दिस मूवी एंड उस पर ग्राफिक्स पे बहुत खर्चा हुआ होगा डेफिनेटली. हमें जिस तरह के हमने जब रामायण देखी थी बचपन में, तो आपको याद है कि कैसे सारे कैरेक्टर्स ना रिलेटेबल थे क्योंकि सब इंसान थे. ग्राफिक्स से बड़े बड़े जायंट्स नहीं दिख रहे थे, शायद हमें वो आदत नहीं है देखने की. अब देखना ये है कि थिएटर में जब ये मूवी आती है तो क्या रिएक्शन, मतलब हमारा खुद का क्या रिएक्शन होगा. अभी तो ट्रेलर देख के हम इतनी बातें कर रहे हैं, मूवी देख के तो क्या ही करेंगे पता नहीं. ये हम लगता है ना, हमें ये हम आदत है हमारी 90s वालों की हर चीज़ में नुक्स निकालने की, पर ये वाला नुक्स तो बनता है बिकॉज रामायण की बात है जो कि हमारे जहन में ऐसे बैठा हुआ है. चलिए आगे बढ़ाते हैं अपने शो को. अगर आपके पास और कोई बात है जो आप शेयर करना चाहें तो प्लीज़ कॉल करिए स्टूडियो के नंबर पे रामायण से रिलेटेड, क्योंकि ये सेगमेंट मेरे शो का सिर्फ और सिर्फ रामायण के ट्रेलर पे है. ट्रेलर ही इतना सुपर्ब लॉन्च हुआ है कि उस पर ही बात करे जा रहे हैं हम लोग. स्टूडियो का नंबर है 972-235-5555. यू आर लिसनिंग टू योर होस्ट आयुषी इन गपशप गली. गपशप गली में जनरली ना ये गली मीठू की है, पर इस गली में मैंने एंट्री मार ली है और आपको एंटरटेन करने वाली हूँ आज 12:30 बजे तक. वक्त हो रहा है एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक का. कुछ देर और रामायण पर चर्चा चलती रहेगी, तो अपने विचार व्यक्त जरूर करिए, कॉल करिए मुझे और बताइए. तब तक के लिए सुनते रहिए फनेशिया. आने वाला गाना ये है जो कि ब्रेक के बाद आपको सुनने मिलेगा.
1: कहाँ गया, कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
2: कौन सा?
1: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है.
2: अरे सारे तो सेम है.
1: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो ये वाला.
2: ओ हाँ, ये तो अलग है.
3: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है. From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection, now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
4: Experience peace, music and meditation with Archana Didi at a free 3-day retreat in DFW. Join us on August 7th at Bharatiya Nivas in Richardson, August 8th and 9th morning at Sri Raghunath Temple in Plano, and August 8th evening at DFW Hindu Temple, Ekta Mandir in Irvine. Enjoy meditation, soulful music and free vegetarian prasad.
3: Proudly supported by Roma Pithadia, Sri Vimal, Shankar Vilas, Payal Dance Class, Rajula's Kitchen, Fun Pizza Kitchen, Raghunath Temple, DFW Temple and Fun Asia.
4: Register free now at meditation.funasia.net.
5: मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूंगी, वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय कर दो।
6: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
3: अब करेगा, बिकॉज़ इंडियन अटायर फ्रिस्को समर सेल इज ऑन। स्टनिंग लहंगास, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी, मेंस एंड किड्स वेयर।
6: वेट, इतना सब और प्राइस?
3: अप टू 25% ऑफ ऑन लहंगास एंड ब्राइडल कलेक्शन समर सेल थ्रू द एंड ऑफ ऑगस्ट, ओनली एट इंडियन अटायर फ्रिस्को। ट्रेडिशनल हो या फ्यूजन, अब हर आउटफिट बोलेगा
7: मैं ही तो।
8: फिल्मों का मजा एक्शन, ड्रामा और रोमांस में है, और खाने का मजा हर फ्लेवर के जबरदस्त परफॉर्मेंस में।
9: कभी चटपटा सा ट्विस्ट, कभी तीखा सा किक, कभी मीठा सा सुकून,
8: जहां हर फ्लेवर करे फुल ऑन एंटरटेन। द फ्लेवर लाउंज,
9: पापड़ी चाट से मालपुआ रबड़ी तक, हर डिश में मिले जिंदगी के फ्लेवर्स का असली स्वाद। विजिट देयर न्यू वेबसाइट और डाउनलोड द फ्लेवर लाउंज ऐप फॉर एक्सक्लूसिव डील्स। द फ्लेवर लाउंज, हर बाई सुपरहिट।
10: Hello? Accident claim? Okay. Name of the lawyer? Umar Khwaja.
11: जब इंश्योरेंस वाले सुनते हैं उमर ख्वाजा का नाम, तो वो खुद आ जाते हैं टेंशन में, क्योंकि वो जानते हैं अगर लॉयर उमर है तो नेगोशिएशन का मतलब है कॉम्पनसेशन फुल एंड फाइनल। कॉल अटर्नी उमर ख्वाजा नाउ फॉर अ फ्री कंसल्टेशन एट 833-GET-UMAR और विजिट attorneyumar.com।
12: भूख लगी
13: है या बस कुछ एक्सेप्शनल खाना है?
14: स्ट्रीट स्टाइल चाट्स, रिच अवधी फ्लेवर्स एंड दैट क्लासिक बटर चिकन यू कीप गोइंग बैक टू, ऑल अंडर वन रूफ एट पेज 3 ईटरी। ऑनेस्टली, ये सिर्फ खाना नहीं है, इट्स व्हाट योर मूड इज एक्चुअली क्रेविंग।
15: अ क्विक बाइट, अ परफेक्ट लंच एम्बियंस एंड एन इवनिंग दैट जस्ट फ्लोज इनटू द नाइट। यू डोंट गो जस्ट एनीवेयर, यू गो टू पेज 3, हब 121 मैकिनी।
16: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे।
17: इंडिया में तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं वो कैसे अटेंड करेंगे?
16: पर यहाँ सारी अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा।
17: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
16: सच में सब संभाल लेंगे?
17: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट दे डिलीवर। वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह। सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
3: कॉल हरि बसेरा ऑन 4694428770. Vanessa Events, your celebration partner.

Your dream home may be closer than you think with Dream Home Mortgage. Since 1998, Dream Home Mortgage has helped families across the country turn home ownership into reality with personalized mortgage solutions and a smooth, stress-free process. Licensed in all 50 states, with experienced team, their experienced team is committed to finding the right loan options tailored to your needs, whether you are buying your first home, upgrading, or refinancing. Start your home ownership journey with confidence today. Call 972-245-5626. I repeat, it's 972-245-5626. Or visit dreamhomemortgage.com for more details. Dream Home Mortgage, making dream homes happen. Okay, so welcome back. बहुत ही प्यारा सा गाना था फिल्म कभी अलविदा ना कहना से शाहरुख खान और रानी मुखर्जी का. फिलहाल हम चर्चा कर रहे हैं रामायण के ट्रेलर की. चर्चा खत्म ही नहीं हो रही है बिकॉज आपकी कॉल्स खत्म नहीं हो रहे हैं एंड बहुत सारे लोगों ने ये ट्रेलर देखा है और सबके ऑलमोस्ट सिमिलर फीडबैक्स हैं. और अभी एक फीडबैक था कि ग्राफिक्स बहुत ज़्यादा हैं इसमें, ऐसे 2-3 लोगों ने मुझे बोला, बिकॉज हम इन ग्राफिक्स से रिलेट नहीं कर पा रहे हैं. हम उस जमाने के हैं जहाँ पर हमने कैरेक्टर्स को, लोगों को कैरेक्टर्स को निभाते हुए देखा है, राइट? जैसे अगर हमको याद हो जब राम वनवास पे जाते हैं तो जामवन जो बन रहे हैं उन्होंने पूरा का पूरा एक भालू का सूट पहना हुआ है. एंड नाउ यू नो वी हैव सीन हिम इन दैट सूट. नाउ आई एम इमेजिनिंग हाउ वुड जामवन लुक व्हेन दिस एआई और ग्राफिक्स वाले जामवन होंगे. और जटायु फॉर दैट मैटर, व्हेन जटायु इज फाइटिंग विद रावण व्हेन ही इज टेकिंग सीता अवे, तो उस समय जटायु उड़ रहे हैं एंड ही इज वेयरिंग दैट जटायु का कॉस्ट्यूम, दैट वल्चर का कॉस्ट्यूम, राइट? तो इन सब चीज़ों से हम लोग किस तरह से कोप अप कर पाएंगे, मैं तो ये कहूँगी, बिकॉज बिल्कुल ग्राफिक्स में असली चिड़ियाँ उड़ रही है और वो जाके लड़ रही है रावण से. पुष्पक विमान कितना सिंपल हुआ करता था. एक पुष्पक विमान है, मतलब एक विमान है जो उड़ रहा है और वो चिड़िया के शेप में है. नाउ वी कैन सी दैट सर्कुलर पूरा, जैसे स्पेसशिप आता है, एलियन का स्पेसशिप होता है गोल वाला, उसको मॉडिफाई करके बनाया हुआ है. तो बड़े छोटे हम तो हर डिटेल्स पकड़ेंगे इस मूवी में, इस ट्रेलर में. जब हम मूवी देखेंगे ना तो या तो हंसेंगे या तो दुख मनाएंगे या तो बैठ के कंपेयर करेंगे रामायण से कि कितनी सिंप्लिसिटी के साथ. और सोचिए 80s में जब रामायण बनी होगी, इट वॉज आई थिंक 84-86 व्हेन रामायण केम ऑन द टीवी जब था, तो कैसा रहा होगा ना, किस तरह से रामानंद सागर ने उस समय का सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज़ किया होगा इन सारे ग्राफिक्स को दिखाने के लिए. बिकॉज इंडियन स्क्रीन पर

किसी ने नहीं देखा था, किसी ने इंडियन स्क्रीन पर इस तरह से रामायण को, मतलब इस तरह के ग्राफिक्स नहीं देखे थे। और जब रामायण के रूप में आया, जब लोगों ने जो कहानियाँ किताबों में पढ़ी थी, जब उनको सामने देखा, सामने से अपने आँखों से देखा, तो वही रामायण हमारे जहन में बैठ गया है। एंड दैट इज़ हाउ वी रिलेट टू रामायण। सो इफ़ यू हैव फाउंड एनी थिंग यू नो वेरी मे बी डिस्टर्बिंग, या फिर बहुत ज़्यादा जो आपको अजीब लग रहा है इस रामायण के ट्रेलर में, तो प्लीज़ कॉल करिए और बताइए स्टूडियो के नंबर पर। मैं यहाँ पर हूँ आपके साथ, आपकी होस्ट आयुषी, गपशप गली में। और इस गली में मेरा मैंने बना ली अपनी जगह, क्योंकि मीठू रोज़ यहाँ पर शो करती हैं और उनकी जगह पे मैं आपसे बातें कर रही हूँ। फिलहाल अगले हफ्ते भी मैं आपके साथ रहूँगी। कॉल करिए 972-235-5555 पे और बताइए कैसा लगा आपको रामायण का ये ट्रेलर। फिलहाल ये गाना आप सबके लिए।

0: the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: At Tanishq, no two diamonds are exactly alike. They're beautifully red, just like the woman who wears them. That's why this is the perfect time to find yours at the Tanishq Festival of Diamonds, with up to 25% off on diamond value and making charges, plus zero deduction on your old gold exchange above 18 carat. Visit Tanishq Dallas at 2809 Preston Road, number 1200, Frisco, 75034 today. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
3: Shaadi byah ka koi mauka ho ya koi tyohar, khoobsurat libas khushiyon ko dugna kar deta hai.
4: Har khushi mein aapke saath Manyavar Mohe, traditional celebration wear for men, women and children, crafted with exquisite blended fabrics. Manyavar Mohe, located on Regent Boulevard off 635 East in Irving.
5: 2026 mein aapki rashi ke liye dhan aur safalta ke yog hain.
6: Are sun, ye astrologer bol raha hai 2026 teri rashi walon ke liye bahut lucky hai.
7: Ma, reels pe sab lucky hi hote hain. Generic predictions sabko thodi help karti hain. To phir अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो.
8: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहां एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है. करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट.
7: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com.
9: ये तारा वो तारा हर तारा.
10: अरे अरे अरे, डैलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं. बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है, तारा कमर्शियल एनर्जी. 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर. होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस. तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर टू डेकेड्स. कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे. तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे.
11: Are you looking for a smarter approach to reducing taxes while building and preserving wealth? My Time Equity, a registered investment advisory firm led by CPA Sudhir Pai, offers active portfolio management, structured notes, tax and financial planning, real estate strategies, AI and late-stage pre-IPO opportunities, and other alternative investments. Learn how a personalized strategy can help you pursue your financial goals. Visit mytimeequity.com or call 972-330-2771.
12: My Time Equity is a fee-based registered investment advisory firm. This advertisement is for informational purposes only and does not constitute investment, legal or tax advice. Investing involves risk, including the possible loss of principal.
13: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा.
14: बैठ जाऊं? पक्का? कल ही तो तेरी गाड़ी ने सिग्नल पे दम तोड़ दिया था.
15: वो थोड़ा ओवरहीटिंग था.
14: थोड़ा? तेरी गाड़ी डेट पे कम, वर्कशॉप के मूड में ज्यादा लग रही है.
16: अगर आपकी गाड़ी भी रोज नए नखरे दिखा रही है, टेक इट टू ऑनेस्टी ऑटोमोटिव
17: इन प्लेनो.
16: एक्सपर्ट डायग्नोस्टिक्स, मेंटेनेंस, रिपेयर्स, ऑनेस्ट प्राइसिंग और हाँ, कंपटीटर कोर्ट मैच भी. कॉल 469-298-3870. पहले गाड़ी ठीक कराओ, फिर कॉन्फिडेंटली बोलो
13: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा.
18: वीकेंड का प्लान अभी तक नहीं बना? बस 90 मिनट्स नॉर्थ ऑफ डैलस, चॉप टावर कैसीनो एंड रिसॉर्ट ड्यूरेंट में हर विजिट बन जाता है एक विनिंग एक्सपीरियंस. पोकर हो या ब्लैक जैक, एक्साइटिंग स्लॉट्स हो या फिर 20 अमेजिंग रेस्टोरेंट्स में जबरदस्त डाइनिंग, और अगर ब्रेक चाहिए तो लग्जूरियस स्काई टावर और रिलैक्सिंग स्पा आपका इंतजार कर रहे हैं. तो सिर्फ लकी फील मत कीजिए, लकी बन जाइए. चॉप टावर कैसीनो एंड रिसॉर्ट ड्यूरेंट, एंटरटेनमेंट, लग्जरी और एक्साइटमेंट सब एक ही डेस्टिनेशन में. Please play responsibly. Must be 21 years or older to game.
19: Alexa?
20: The Dill of Dallas. Heart to Heart. Fun Asia.
17: Looking to add a little sparkle to your special moments? Head to Malabar Gold and Diamonds on Preston Road in Frisco, your destination for stunning diamond jewelry that's elegant, timeless, and crafted to shine. From beautiful rings and earrings to dazzling necklace and contemporary diamond styles, find the perfect piece for engagement, anniversary celebrations, or simply treating yourself. Experience unmatched craftsmanship and brilliance at Malabar Gold and Diamonds in Frisco. And don't forget, download the Malabar Gold and Diamonds mobile app for the latest collection updates and more details. So welcome back after this very short commercial break. Aap sun rahe the apni host Ayushi ko Gapshap Gali mein. वैसे तो ये गली है मीठू की, पर इस गली में मैंने बना ली है अपनी जगह और आपको एंटरटेन कर रही हूँ आपके साथ. 12:30 बजे तक बनी रहूंगी और चर्चा चल रही है रामायण की ट्रेलर पे. तो भाई जिस तरह से इंटरनेट डिवाइड हो जाता है, आज हमारा फोन कॉल भी डिवाइड हो गया है. फनीशा के स्टूडियो में जो चर्चा चल रही है उस पर जेंजी और मिलेनियल्स के टेक अलग अलग हैं. भाई अभी एक मुझे जेंजी का फोन आया था हमारी, और शिवानी ने मुझे कहा कि यू नो श्वेता ने मुझसे ये कहा कि आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि रामायण आपके लिए वो अरुण गोविल की, वो डिस्कशन कर रही थी मॉम के साथ. सो यू नो शी सेड दैट आपके लिए वो अरुण गोविल वाली रामायण है, रामानंद सागर की रामायण है, बट वी जेंजीज हैव नॉट सीन एनी रामायण, सो दिस इज गोइंग टू बी आर रामायण. हम रणबीर कपूर को इस रामायण में देखना चाहते हैं, हम देखना चाहते हैं कि वो कैसे लगेंगे. सो फॉर अस ही इज गोइंग टू बी मे बी the Ram, you know, the real Ram for them. And हम वो ऐसे graphics देखना चाहते हैं, वो ऐसे energy वाली चीज़ें देखना चाहते हैं, तो उनके लिए यही रामायण होने वाली है. So yeah, now the Phoenicia studio has been divided into Gen Z and Millennials. Wow, it was lovely talking to you, Shweta, that you called and gave your feedback. बड़ा मज़ा आ रहा है इस चर्चा में, बहुत ही ज़्यादा अच्छे calls आ रहे हैं, तरह तरह के विचार आ रहे हैं, विच इज मेकिंग इट मोर एंटरटेनिंग. और कैसे बात करते करते इतना समय बीत गया ना इसे एक टॉपिक पे, क्योंकि एक टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही लंबा है. बात करेंगे इसके बारे में, और स्टूडियो का नंबर है 9722355555. कॉल करिए और बताइए कैसा लगा रामायण का ट्रेलर. क्या आप भी इसको 90s वाले रामायण से रिलेट कर पा रहे हैं? क्या आप भी मेरी तरह मिलेनियल हैं, या फिर आप जेंजी हैं जो इस रामायण को देखने के लिए बेकरार हैं? जस्ट कॉल मी एंड या गिव मी योर ओपिनियन. दिस इज योर होस्ट आयुषी एंड यू आर लिसनिंग टू फनीशिया 104.9 FM.

if you are on H-1B, L-1, F-1, or any other non-immigrant visa and planning your path to U.S. permanent residency, the law offices of Seema Mehta can help. Attorney Seema Mehta and her experienced team specialize exclusively in immigration law, including EB-5, investor visa, family and employment visa, perm labor certification, and U.S. citizenship. For more information on the EB-5 investor visa program, email info@SeemaMehtaLawFirm. That's info@SeemaMehtaLawFirm.com. The law offices of Seema Mehta. And welcome back after this beautiful song. हम बात कर रहे हैं रामायण और इसकी चर्चा खत्म ही नहीं हो पा रही है कि हम दूसरी चर्चा की तरफ बढ़ें. लेकिन हाँ, बहुत ही अच्छे और बहुत ही प्यारे मैसेजेस आ रहे हैं, बहुत ही थॉटफुल बातें हो रही है इसके बारे में. सो नाउ आई जस्ट हैड अ कॉलर मिस्टर कालिदास जी, ही वाज टेलिंग कि यू नो देयर हैज बीन अ लॉट ऑफ डिजास्टर्स इन द पास्ट विद दीज काइंड ऑफ माइथोलॉजिकल स्टोरीज, जहाँ पर माइथोलॉजिकल नहीं कहूँगी, जहाँ पर रिलीज स्टोरीज जो आती हैं, रामायण महाभारत, ओरिजिनल रामायण महाभारत की बात नहीं हो रही है, रामायण और महाभारत जो कि 90s में हमने टीवी पर देखा है, दैट वॉज डन राइट. बट ये जो अभी रामायण आ रही है, दैट शुड नॉट डिविएट फ्रॉम द एक्चुअल स्टोरी, विच वॉज वेरी ट्रू. ही वॉज एब्सोल्यूटली राइट कि जो कहानी सच्ची है, जो वाल्मीकि की रामायण लिखी हुई है, उस रामायण की ही स्टोरी को दिखाना चाहिए और उसको मैसअप नहीं करना चाहिए. बिकॉज जैसा हम बोल रहे थे कि जेंजीज भी हैं जो इसको देखेंगे, हमारे बच्चे हैं, एंड दे शुड गेट द एक्चुअल स्टोरी. दे डोंट हैव द पेशेंस टू वॉच द ओल्डर वर्जन बिकॉज इट्स यू नो इट्स अ वेरी आई वुड से लॉन्ग, बिकॉज इट वॉज एज अ टी वी शो वेरी डिटेल्ड, एक एक चीज़ें दिखाई गई हैं. लेकिन अगर वो मूवी में देख रहे हैं तो उसकी कहानी नहीं बदलनी चाहिए, which he was absolutely right about. And yes, we're talking about Ramayan. The trailer has released, it has millions of views, and the internet is now divided in two, and we are here in our radio station. We have different views coming in from all our listeners, a view which is from the current generation who is very eager to see with all the graphics, and my generation, the millennial generation, jo ki thode purane log ho chuke hain ab, wo log ka vichar abhi bhi रामानंद सागर वाली रामायण से जुड़ा हुआ है. तो यस, लेट्स सी किसका क्या ओपिनियन है. स्टूडियो का नंबर है 9722355555. कॉल करिए और अपनी राय दीजिए. रामायण के ट्रेलर की चर्चा हो रही है यहाँ पर.

जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, ब्यूटिफुल सॉन्ग फ्रॉम दिस मूवी। और अब वक्त हो रहा है हमारे टॉपिक को चेंज करने का। टॉपिक चेंज करें नहीं करें, इतने कॉल्स आए हैं आप सबके, मैंने बहुत सारे थॉट्स सुने और बहुत अच्छा लगा हमने इतनी चर्चा की। अगर आपने अभी तक रामायण का ट्रेलर नहीं देखा है देन गो अहेड एंड डू दैट। एंड यस, देखते हैं कैसा रहेगा इस फिल्म का रिव्यू, उसके बाद फिर इसके ऊपर चर्चा करेंगे। अब अपने शो को आगे बढ़ाते हैं। गपशप गली में आप सुन रहे हैं आयुषी को, मीठू की गली में मैंने अपनी जगह बना ली है। और यस, वी आर आई एम हियर टिल 12:30। ढेरों बातें करेंगे और बहुत सारी चीज़ें आपको बताएंगे। अभी फिलहाल आपको एक जानकारी दे देते हैं, क्योंकि दिस पार्ट ऑफ आर शो इज प्राउडली ब्रॉट टू यू बाय एजी फिनटेक्स, वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग टैक्स एंड अकाउंटिंग फर्म्स इन द यूनाइटेड स्टेट्स। वेदर यू आर एन इंडिविजुअल, स्टार्टअप, स्टैब्लिश कंपनी, कुछ भी हो, एजी फिनटेक्स इज ऑफर्स इनोवेटिव फाइनेंशियल सोल्यूशन टेलर टू योर नीड्स। बुक कीपिंग, पेरोल अकाउंटिंग एंड बैंक एंड क्रेडिट कार्ड रिकन्सिलिएशन टू प्रो एक्टिव टैक्स प्लानिंग, टैक्स कंप्लायंस, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड बिजनेस एडवाइजरी सर्विसेज। तो इनका काम है आपके फाइनेंसिस को ऑर्गेनाइज रखना, कंप्लेन्स हो या फिर कुछ भी हो, सब कुछ फ्यूचर रेडी रहता है। ट्रस्टेड, एफिशिएंट एंड कमिटेड टू योर सक्सेस, एजी फिनटेक्स इज योर पार्टनर इन बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्गर फाइनेंशियल फ्यूचर। कॉल 4699429888 और विजिट agfintechs.com। चलिए वक्त हो रहा है हमारे गिव अवे का, तो अब कुछ सवाल आएंगे, हम आपको अपना फ़ोन तैयार रखिए, स्टूडियो का नंबर याद रखिए 9722355555। हम आपको सुनाएंगे, पूछेंगे एक सवाल और उस सवाल का देना है आपको जवाब। तो सुनते रहिए फनेशा 104.9 FM अपनी होस्ट आयुषी के साथ। गिव अवे सेगमेंट जल्दी ही आने वाला है।

वो लम्हे का ये गाना के की आवाज में, ब्यूटीफुल सॉन्ग. एंड वेलकम बैक टू माय शो, दिस इज आयुषी एंड यू लिसनिंग टू गपशप गली, फन एशिया 104.9 एफएम पे. स्टूडियो का नंबर 9722355555. अगर कोई गाने की फरमाइश है तो आप जरूर कॉल करें और मुझे दें. फिलहाल हम आपको ये बता दें कि मातंगी एंटरटेनमेंट ग्रुप प्राउडली ब्रिंग्स इंडियाज माइकल जैक्सन. कौन है इंडियाज माइकल जैक्सन? प्रभु देवा लाइव टू DFW. तो भाई सारे प्रभु देवा फैंस रेडी हो जाओ. ज्वाइनिंग हिम आर लॉरेन, सोनल, अलेक्जेंडर, हरिनी, नताशा एंड सानवे for the ultimate pan india dance concert. Oh my god, this is going to be fantabulous. So saturday august 1st kal hi hai bhai, at the texas trust cu theater in grand prairie. Book your tickets now. Aap call kar sakte hain 248-233-3828. Media partner fun asia. To bhai jaldi jaiye, ticket book kariye. Fun asia network ki jitne bhi social media pages hain un pe aap tickets book kar sakte hain. Jaldi se jaiye aur book kariye. Prabhu Deva fans, dance ke fans, aapko ye mauka dobara nahi milega. तो चलिए, बहुत सारी बातें हमने आज करी और बातें करेंगे. मैं आपके साथ 12:30 बजे से हूँ. और यार, अगर आप मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो करना चाहते हैं तो मेरा हैंडल है बिहारी मॉम इन अमेरिका एंड माय फेसबुक हैंडल इज़ आयुषी भूषण. सो डेफिनेटली गो एंड फॉलो मी देयर इज वेल. हमारी डेली ब्लॉगिंग और डेली बक बक वहाँ भी चलती रहती है मेरी बेटी के साथ, जिसको मैं प्यार से बोलती हूँ चुटंकी रानी. यस, सो टेकिंग यू टूवर्ड्स द नेक्स्ट सॉन्ग. बड़ा ही प्यारा सा गाना लेकर के आ रही हूँ फिल्म रॉक स्टार से. अगर आपको कोई और गाना सुनना है तो स्टूडियो के नंबर पे कॉल करिए. 9 है 9722355555. आपकी पसंद के गानों का सिलसिला गपशप गली में चलता रहेगा.

0: डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है।
1: लेकिन आपके डॉक्टर का अपॉइंटमेंट मिलना उससे भी मुश्किल है। एक हफ्ता, 10 दिन, अगले ट्यूसडे,
2: तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख।
3: पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर गिव्स यू डॉक अपॉइंटमेंट्स ऑन द सेम डे विजिट। आज बुखार, आज डॉक्टर, आज इन्फेक्शन, आज डॉक्टर, आज एनुअल चेकअप, आज डॉक्टर, प्लस 30 मिनट्स ऑफ डेडिकेटेड अपॉइंटमेंट टाइम। पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर इन इरविंग, प्लेनो, फ्रिस्को, मकिनी, ऑबरी।
1: विजिट passionhealthphysicians.com और कॉल 214-666-6259।
4: रितेश, कभी सोचा है कल अगर तुम नहीं रहे तो मेरा क्या होगा?
5: अरे रिलैक्स, सब तुम्हारा ही तो है।
4: सच? या फिर कोर्ट डिसाइड करेगा?
5: वेट, व्हाट?
3: यस, अगर प्रॉपर एस्टेट प्लान नहीं है तो आपकी फैमिली के डिसीजंस कोर्ट लेता है।
6: हाय, दिस इज दीप्ति वर्मा विद NRI वेल्थ। मैं फैमिलीज को हेल्प करती हूँ उनकी मेहनत को प्रोटेक्ट करने में, द राइट वे विद एस्टेट प्लानिंग।
3: अगर आपके पास सिर्फ विल है या कुछ भी नहीं है तो ये कॉल डिले मत कीजिए। कॉल 669-243-5799, दैट्स 669-243-5799 फॉर अ फ्री 15-मिनट कंसल्टेशन। Are you seeking clarity in life? Wondering what destiny has in store for you?
6: हर समस्या का हल है एस्ट्रोलॉजर ईश्वर के पास। 400 साल की फैमिली विजडम के साथ वर्ल्ड फेमस एस्ट्रोलॉजर अब डैलस में।
3: That magic removal हो, love and relationship issues हो, get trusted solutions with 100% privacy.
6: Thousands की लाइफ बदली उनकी डिवाइन गाइडेंस से। Now it's your turn. समस्या का पक्का समाधान, एस्ट्रोलॉजर ईश्वर। Call now 9455270897 और विजिट astrologereeshwar.com.
7: जीत उनकी होती है जिनकी नजर सिर्फ टारगेट पर होती है, चाहे ओलंपिक स्टाइल आर्चरी हो या 10 मीटर्स इंडोर प्रिसिजन शूटिंग। फोकस, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी। फ्रिस्को प्रिसिजन स्पोर्ट्स एकेडमी, वन एंड ओनली इन नॉर्थ डैलस। फ्रॉम बिगिनर टू कंपेटिटिव एथलीट्स, स्ट्रक्चर्ड कोचिंग, एक्सपर्ट गाइडेंस एंड परफॉर्मेंस ड्रिवन ट्रेनिंग एजेस 8 एंड अबव।
8: फ्रिस्को प्रिसिजन स्पोर्ट्स एकेडमी पावर्ड बाय अर्जुन आर्चरी एकेडमी, कन्वीनिएंटली लोकेटेड ऑन क्वाइट रोड इन फ्रिस्को। विजिट friscoprecisionsports.com और कॉल 469-333-1099.
9: Mention Fun Asia and get 50% off on tryout session.
10: Hey, तुमने कभी इंश्योरेंस लिया?
11: लिया।
10: कभी पॉलिसी समझ भी आया?
11: नहीं आया।
10: मुझे भी नहीं आया। आएगा भी कैसे, इंश्योरेंस चीज ही ऐसी है। इसलिए स्मार्ट लोग चूज करते हैं सिनाडा इंक एंड हुमेरा जुमानी इंश्योरेंस। वेदर इट्स होम, ऑटो, हेल्थ और बिजनेस, एवरी पॉलिसी इज कस्टमाइज्ड अराउंड यू। होटल्स, मोटेल्स, गैस स्टेशंस एंड स्मॉल बिजनेसेस, दे हेल्प प्रोटेक्ट व्हाट यू वर्कड हार्ड फॉर। नो कंफ्यूजन, नो अननेसेसरी एक्स्ट्रास। कॉल हुमेरा जुमानी एट सिनाडा इंक 972-863-7772. That's 972-863-7772.
12: Visit www.senadainc.com today.
13: This 15th of August, don't just celebrate Independence Day, celebrate it the Indian way. Join India Association of North Texas's Anand Bazaar 2026 at the Comerica Center in Frisco. Saturday from 2 p.m. onwards, experience a grand Independence Day parade, authentic Indian food, colorful cultural performances, live music, shopping, family fun, and an unforgettable celebration of India's independence. And the best part? It's completely indoors and free for everyone.
3: Sponsorship booth from $3,000 to $50,000 and vendor stalls at $750. Call 214-529-3257.
13: Celebrate India's 80th Independence Day with the entire community. IANT Anand Bazaar 2026 on Saturday the 15th of August, 2 p.m. onwards at the Comerica Center in Frisco.
14: Kaira, Phanisha Radio ke sang.
15: वेलकम बैक आफ्टर दिस वेरी शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक और आप सुन रहे हैं अपनी होस्ट आयुषी को गपशप गली में फन एशिया 104.9 FM। मैं आपके साथ हूँ आज दोपहर 12:30 तक और आपकी फरमाइशें ले रही हूँ, आपको बहुत ही प्यारे और खूबसूरत गाने सुना रही हूँ और हम बहुत सारी बातें कर रहे हैं, बहुत सारी चर्चा कर रहे हैं। फिलहाल मैंने आपको ये बताया कि चर्चा जो है वो इंटरनेट पे चल रही है कि मतलब किस तरह से आजकल हमारा ना फोन डिवाइडेड है, हमारा इंटरनेट डिवाइडेड है, एक्चुअली हमारी रील्स डिवाइडेड है। अभी पिछले कुछ दिनों से, पिछले कुछ महीनों से मैं कुछ ज़्यादा ही इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे एक्टिव हूँ बिकॉज ऑफ माय व्लॉगिंग एंड मैंने ये देखा है उस इतने एक्टिव रहने के कारण कि किस तरह से ना हमारा फीड जो है वो हमारे हिसाब से, हमारे थॉट्स के हिसाब से चेंज हो रहा है। तो मैं भी यही बात कर रही थी अपने घर पे अपने घर वालों से कि जो रील्स आपको दिखती हैं वो मुझे नहीं दिखती हैं। वो इसलिए नहीं दिखती हैं क्योंकि हम दो उम्र के लोग हैं और उन दोनों के मे बी यू नो पॉलिटिकल व्यूज़ या फिर उनका कोई भी व्यू जो है वो डिफर करता है। और इंटरनेट इस तरह से हमारे माइंड्स पे, हमारे फ़ोन्स पे कैप्चर कर चुका है कि हम जो देखना चाहते हैं उसको ही हमारी सोच बना रहा है, एंड दैट्स सो वियर्ड, राइट? या फिर हम जो देख रहे हैं वैसी हमारी सोच होती जा रही है। अगर आप किसी एक टॉपिक पर रील देखो तो बस वो रील उसी से रिलेटेड आते रहेगी। एंड आई रेड समवेयर दैट यू नो द कमेंट्स दैट यू रीड, द कमेंट्स दैट यू व्हेन यू ओपन अ रील और अ पोस्ट और आप उस पर कमेंट देखते हैं, तो वो कमेंट भी ऐसा आता है ना जो आपके फीड के सर्च के हिसाब से या आपका जो थॉट प्रोसेस बन गया है उसके हिसाब से सबसे ऊपर वो कमेंट आएगा। यू विल नॉट रीड द मोस्ट रीसेंट कमेंट और द कमेंट दैट इज लाइक्ड बाय समबडी मोर, बट इट विल शो यू द कमेंट as per your liking, the kind of comments you want to read. This is so weird, and I have been reading about it more and more, and I am getting more tensed now. कि चलो हमारी ज़िंदगी तो है ही सोशल मीडिया पे अब, क्योंकि हम बहुत सारे व्लॉग्स देख रहे हैं, एवरीबडी स्टार्टेड व्लॉगिंग, इवन आई हैव स्टार्टेड व्लॉगिंग नाउ, एंड दैट इज़ फाइन, यू आर शोइंग दैट पार्ट ऑफ योर लाइफ विच यू वॉन्ट टू शो, बट इंटरनेट इज शोइंग समथिंग जिससे जो आपको इन्फ्लुएंस कर रहा है इतना ज़्यादा। ऐसा आपका इस पर क्या सोच है, क्या कहना है, ज़रूर बताइए मुझे स्टूडियो के नंबर पर कॉल करके। 972-235-5555 है स्टूडियो का नंबर, और ये रहा अगला गाना आप लोगों के लिए।

So this was a beautiful song from Bang Bang, Katrina Kaif and Hrithik Roshan. और चलिए आपको थोड़ी सी और जानकारी दे दें, because हीरा है सदा के लिए, diamonds are forever. They are even more irresistible during Tanishq's festival of diamonds. Enjoy up to 25% off on diamond value. अरे वाह, and making charges plus 0% deduction on exchange of gold and above 18 carat. तो भाई celebrate the season with timeless sparkle at Tanishq. Terms and conditions applied, but Tanishq जाइए और ज़रूर करिए शॉपिंग. चलिए आपको और अच्छे गानों की तरफ लेकर के चलेंगे. हम बात कर रहे थे इंटरनेट की, तो पिछले इंटरनेट की, मोस्टली सोशल मीडिया की, पिछले कुछ महीने पहले तक मुझे लगता था कि सिर्फ इंटरनेट हमारी बात सुन रहा है, राइट. अगर हम कुछ बात करते हैं, पता नहीं आप लोगों को ये बात फील हुई है या नहीं, बट मुझे बहुत बार फील हुई है कि अगर हम किसी टॉपिक पे बात करें, मान लो कहीं वेकेशन जाने की बात कर रहे हैं, और उसको चार पांच बार किया, तो सडनली हमें वो नहीं सर्च नहीं किया है, बट सडनली हमें वो उसके ही सजेशंस देने लगेगा, राइट. इफ़ वी सर्च ऑन गूगल तो डेफिनेटली वो तो एड्स ले ही लेता है, बट हमें लगता था कि सुन रहा है, बट अभी ऐसा लग रहा है कि इंटरनेट हमारी सोच के अंदर घुस गया है. वो कैसे? बिकॉज हमने इंटरनेट पे सर्च नहीं करा, हमने उसके बारे में बात नहीं करा. मतलब आई हैव बीन थिंकिंग टू बाय समथिंग ऑन द फॉर माई न्यू हाउस, एंड नाउ सडनली आई सी दैट इन माई फीड, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे उसके एड्स आ रहे हैं. ऐसा आपके साथ भी हुआ है क्या कि आप सिर्फ सोच रहे हो, अभी तक आपने सर्च नहीं किया, उसके बारे में बात नहीं की है, बट स्टिल आपको वो चीज़ आपके फीड में दिख रही है? अगर ये हुआ है आपके साथ भी तो कॉल करिए और बताइए. स्टूडियो का नंबर है 972-235-5555.

चेन्नई एक्सप्रेस का ये गाना था आप लोगों के लिए, और बड़ा ही मज़ा आ रहा है स्टूडियो में आप लोगों के साथ, बिकॉज़ आपके कॉल्स आ रहे हैं और थैंक यू सो मच, ताकि आपके कॉल्स हमें हमेशा बताते हैं कि हम कैसा कर रहे हैं, और मुझे लग रहा है कि मैं ठीक ही ठाक कर रही हूँ. बहुत सारे कॉल्स आए अभी, जैसे मैंने पूछा ना, इंटरनेट हमारी ज़िंदगी को जी रहा है या हम इंटरनेट की ज़िंदगी को जी रहे हैं इसका पता नहीं. इसके बारे में और चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले यार वक्त हो रहा है लंच का, मुझे लगी हुई है बहुत तगड़ी भूख, पर मैं स्टूडियो छोड़ के नहीं जा सकती हूँ. लेकिन अगर आप गार्लैंड में हैं तो आप जा सकते हैं तंदूरी फ्लेम, जो कि गार्लैंड में ही है, एंड इट्स द न्यू फ्लेवर डेस्टिनेशन फॉर ऑल स्पाइस लवर्स. दे सर्व सिजलिंग तंदूरी प्लेटर्स, रिच करीज एंड ऑल योर नॉर्थ इंडियन फेवरेट्स. जी हाँ, और इनके खाने में ना वो होम स्टाइल पंच भी है, तो स्मोकी तंदूरी कबाब हो या फिर वेलवेटी करीज, गर्मा गर्म नान हो, सब कुछ मिलेगा इनके यहाँ. एवरी प्लेट फील्स लाइक अ सेलिब्रेशन. तो आज ही जाइए, स्टेप इन टुडे एंड लेट तंदूरी फ्लेम सर्व यू द काइंड ऑफ मील्स दैट टर्न्स एन ऑर्डिनरी डे इनटू अ फीस्ट. तंदूरी फ्लेम जो कि गार्डन में है, प्लीज जाइए, मुझे भूख लग रही है, पढ़ के और भूख लगने लगी है, पर कर क्या सकते हैं, अभी तो शो करना है, उसके बाद हम भी कुछ खाएंगे पिएंगे. तो यस, हम चर्चा कर रहे थे इंटरनेट पे कि किस तरह से हमारी जिंदगी को ये इंटरनेट जी रहा है. हमारे बातों को सुन करके आज तक हमें एड्स आते थे, अब तो हमारी सोच को भी समझ के इंटरनेट हम तक एड्स पहुंचा दे रहा है. दिस इज व्हाट इज हैपनिंग, एंड वन ऑफ माय कॉलर्स जस्ट अग्रीड टू इट कि यार उनको, मतलब उनको लगता था कि यही हो रहा है उनके साथ ही ऐसा हो रहा है, बट नहीं, ऐसा उनके साथ नहीं हो रहा है. कई बार ऐसा हमें लगता है कि हम कुछ सोच रहे हैं, अभी उसके बारे में सर्च करने वाले हैं, और उसके पहले ही इंटरनेट वो चीज़ हमें दिखा देता है.

उनको लगता था कि यही हो रहा है उनके साथ ही ऐसा हो रहा है, बट नहीं, ऐसा उनके साथ नहीं हो रहा है. कई बार ऐसा हमें लगता है कि हम कुछ सोच रहे हैं, अभी उसके बारे में सर्च करने वाले हैं, और उसके पहले ही इंटरनेट वो चीज़ हमें दिखा देता है. एंड यस, द इंटरनेट इज़ ऑल्सो डिवाइडेड. बहुत सारे लोग जो हैं उनके फीड में अलग अलग चीज़ें आती हैं उनके पसंद के हिसाब से, विच इज़ समटाइम्स राइट बट समटाइम्स वेरी डिस्टर्बिंग. इसके बारे में और चर्चा करेंगे, फिलहाल ये गाना सुनिए.

0: बैंग बैंग ऋतिक रोशन और कैटरीना कैफ की मूवी, मजा आ गया गाना सुनकर के और मुझे मन कर रहा है ना कि बैंग बैंग करना शुरू कर दूं। भूख के मारे हो रहा है, हालत खराब, टाइम हो रहा है लंच का। आपको कुछ अच्छे अच्छे खाने की जगह के बारे में बता रही हूँ मैं अभी, लेकिन उसके साथ साथ गिव अवे टाइम भी हो रहा है, तो पहले आप जान लीजिए इसके बारे में। अगर आपको इंडियन ग्रोसरीज चाहिए, हलाल मीट चाहिए, फ्रेश प्रोड्यूस चाहिए, बेकरी आइटम्स चाहिए, लाइव पानी पूरी चाहिए, फ्रेश गेम गन्ने का जूस चाहिए भाई, और केटरिंग सर्विसेज चाहिए, एंड इफ़ यू वांट एन अपस्केल डाइनिंग एक्सपीरियंस, तो आपको एक ही जगह जाना है, वो है फूडिस्तान ओबरे में। सब कुछ मिलेगा यहाँ पे, एंड फूडिस्तान इज ऑल्सो ब्रिंगिंग everything desi deal, जहाँ पे all in सब कुछ एक जगह पे मिलेगा, plus they have the lowest price match guarantee on groceries and free delivery on orders just over $30 within 5 miles. wow, ये मतलब तो मतलब इंडिया वाली बात हो गई, blinkit type का है ना। free delivery on all orders just over 30 within 5 miles, and अगर आप Phanisha का नाम लेते तो आपको 10% discount मिलेगा, और साथ ही हम आपके लिए गिव अवे भी लेके आ रहे हैं जिसमें एक लकी विनर को मिलेगा एक फ्री आइटम फ्रॉम द वाइब रेस्टोरेंट, जो कि फूडिस्तान के अंदर ही लोकेटेड है। इट्स अप स्केल इंडियन रेस्टोरेंट, तो भाई तैयार हो जाइए, इनका एक गिव अवे है, एक सवाल पूछूंगी, एक गाना सुनाऊंगी और उस गाने के साथ एक सवाल पूछूंगी, सवाल का जवाब अगर आप देंगे तो आपको गिव अवे मिलेगा। लेकिन मैं सोच रही हूँ कि आज मैं अपने, कल मैंने ऐसे किया था कि मैंने तीसरे कॉलर को दिया था, अब मैं सोच रही हूँ कि आज जिसका कॉल दूसरे नंबर पे आया और उसने सही जवाब दिया उसको मिलेगा आज का गिव अवे। तो फ़ोन उठाइए, कॉल करिए, और ये रहा गाना, सवाल सिंपल सा है यार, कौन सी फिल्म का गाना है ये बताइए मुझे।
1: नींद हूँ मैं, दोनों मिले,
2: और ये तुम्हारा अपना

0: the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
3: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show suna tha, and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land, or up ye $1 million property bhi.
4: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
5: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com. Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, Division of Brazos National Bank.
6: Zindagi ek safar hai suhana, yahan kal kya ho, kisne jana.
0: Life ho ya health, kab kya ho jaye, pata nahi. 13 saal tak Texas Primary Care Clinic ne jeeta aapka trust aur ab wahi Trusted Care, Urgent Care Services के साथ नए Kaiserway location पर Lunoxy Medical, founded by Dr. Mandeep Acharya. Adults और बच्चों के लिए Primary Care, Urgent Care, X-ray, CT Scan, Heart Testing और Med Spa. सब कुछ एक ही रूफ के नीचे. Lunoxy Medical Urgent Care. Open 7 days a week, 8 a.m. to 8 p.m. Walk-in anytime. 9191 Kaiserway, Suite 205, Frisco.
7: Hello? Accident claim? Okay. Name of the lawyer? उमर ख्वाजा.
8: जब इंश्योरेंस वाले सुनते हैं उमर ख्वाजा का नाम तो वो खुद आ जाते हैं टेंशन में, क्योंकि वो जानते हैं अगर लॉयर उमर है तो नेगोशिएशन का मतलब है कॉम्पनसेशन फुल एंड फाइनल. कॉल अटर्नी उमर ख्वाजा नाउ फॉर अ फ्री कंसल्टेशन एट 833-GET-UMAR और विजिट attorneyumar.com.
9: यार मेरे फोन में हम दोनों के कितने सेल्फीज है यार.
8: तो चल उन सेल्फीज से पिज़्ज़ास खाते हैं.
9: व्हाट?
10: दिस फ्रेंडशिप डे ब्रिंग योर फ्रेंडशिप टू फन पिज़्ज़ा किचन. पोस्ट अ सेल्फी विद योर फ्रेंड्स ऑन इंस्टाग्राम, टैग फन पिज़्ज़ा किचन एंड एंजॉय 10% ऑफ योर बिल और अ फ्री गार्लिक ब्रेड. ऑफर वैलिड टिल August 3rd. विजिट funpizzakitchen.com फॉर मोर डिटेल्स.
11: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
12: Kuch bhi nahi. Ura Debt Relief will do it for us.
11: Kya matlab?
12: Ura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
11: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
12: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
11: Ab to karna hi padega, madam.
13: Don't let debt ruin your life. Visit ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
14: Documents ya parcel bhejni hai?
15: हाँ.
14: घर रिलोकेट करनी है?
15: हाँ.
14: गाड़ी भी ट्रांसपोर्ट करना है?
15: हाँ भाई हाँ.
14: तो फिर टेंशन क्यों ले रहा है? SFL Worldwide को कॉल कर.
16: डॉक्यूमेंट्स शिपिंग, बॉक्सेस शिपिंग, कंप्लीट डोर टू डोर रिलोकेशन, ऑटो ट्रांसपोर्ट, सिर्फ इंडिया नहीं USA और दुनिया भर में ट्रस्टेड शिपिंग और मूविंग सर्विसेज. SFL Worldwide, हर मूव का परफेक्ट सोल्यूशन. विजिट SFLWorldwide.com और कॉल 1-800-691-2335.
17: ब्रेकिंग न्यूज. होम लोन या रीफाइनेंस अब और भी आसान. myfamilyhomeloan.com देता है ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग, नो हिडन फीस, नो सरप्राइजेस. और हाँ, सबसे बड़ी खबर, उनका AI पावर्ड प्लेटफॉर्म रियल टाइम रेट्स कंपेयर करता है ताकि आपको मिले बेटर डील्स एंड फास्टर अप्रूवल्स. 15,000 प्लस गूगल रिव्यूज, हजारों फैमिलीज का भरोसा. विजिट myfamilyhomeloan.com और कॉल 469-734-3338. 469-734-3338. myfamilyhomeloan.com is powered by Loan Factory. NMLS 2025289. Licensed mortgage broker in Texas. All loans subject to credit approval. Equal housing lender.
18: Hi, this is Saif Ali Khan. You are listening to Fun Asia Radio.
19: वेलकम बैक. आफ्टर द शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक आप सुन रहे हैं अपनी होस्ट आयुषी को गपशप गली में. और मीठू की इस गली पे आयुषी का हो गया है कब्जा. ब्रेक पे जाने के पहले हमने पूछा था एक सवाल और गिव अवे था, और इस गिव अवे के हकदार हैं इस बार श्रीकांत. थैंक यू श्रीकांत, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया था. जोरदार तालियां श्रीकांत के लिए. yeah! ओके तो चलिए अपने शो को आगे बढ़ाते हैं, आधे घंटे और हूँ मैं आपके साथ, एंटरटेन करूंगी आपको बिल्कुल अच्छे से और आपको बहुत ही प्यारा और खूबसूरत एक गाना सुना रही हूँ। एंजॉय करिए इस गाने को और बने रहिए अपनी होस्ट आयुषी के साथ।

शुद्ध देसी रोमांस का ये गाना आप सबके लिए था आयुषी की तरफ से। और घड़ी में बज रहे हैं 12:09, 20 मिनट है मेरे पास। और इस 20 मिनट में मैंने जो बातें करी हैं आपसे, आपसे पूछूंगी क्या क्या बातें करी हैं मैंने। कॉल करी और बताई है मुझे कि अभी हम थोड़ी देर पहले किस टॉपिक पे बात कर रहे थे, कौन सी विषय पे चर्चा हो रही थी। आप कॉल करके मुझे बताएंगे या मैं ही बता दूं, मैं सोच रही हूँ मैं ही बता देती हूँ। यार हम इंटरनेट की बात कर रहे थे जो कि आजकल हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बन गया है। सोते जागते उठते सबसे पहले हम रील्स स्क्रॉल कर रहे होते हैं, और मैं भी उस इंटरनेट के रील्स को ना बढ़ावा दे रही हूँ। मैं भी व्लॉगिंग कर रही हूँ, व्लॉग बना रही हूँ। फॉलो करना है मुझे तो बिहारी मोमिन अमेरिका को कर लो जाके इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे आयुषी भूषण को फॉलो कर लो। मतलब आप रेडियो के बाहर भी मुझसे कनेक्टेड रह सकते हो। और वैसे तो इंटरनेट की हम ये बात कर रहे थे कि इंटरनेट किस तरह से हमारी लाइफ को इफेक्ट करता है। और अभी पिछले दिनों ना इंडिया में एक प्रोटेस्ट हो रहा था, बहुत लोगों को पता है इसके बारे में, कॉकरोच जनता पार्टी उसने प्रोटेस्ट किया था इंडिया में। मैं प्रोटेस्ट के बारे में बात नहीं करूँगी, मैं ये बात करूँगी किस तरह से ना इंस्टाग्राम ने हम लोगों को डिवाइड करके रखा हुआ था। तो मैं इस प्रोटेस्ट को देख रही थी बहुत ध्यान से, मतलब मेरा बिल्कुल उस पर ही फोकस था। और जब मैं इसको देख रही थी तो यू नो व्हाट, मैंने मेरे और मेरे हस्बैंड के फीड्स दोनों ना बिल्कुल अलग चल रहे थे, बिकॉज व्हाट एवर रील्स आई वाज गेटिंग, आई वाज द इट वाज प्रो दिस प्रोटेस्ट। सारे अच्छे रील्स आ रहे थे जहाँ पर यू नो बच्चे फूल लेकर के उस प्रोटेस्ट में हैं, दे आर नॉट बीइंग वायलेंट, दे क्लीनिंग अप द स्पेस, सारी अच्छी अच्छी बातें हैं। जब मैंने दूसरा फ़ोन उठाया और वहाँ पर देखा तो वहाँ पर इस प्रोटेस्ट के सिर्फ यू नो द बैड साइड ऑफ इट वॉज बींग शोन, वेयर इन मार पिटाई हो रही है, पत्थर चल रहे हैं और लोग पिट रहे हैं, पुलिस पिट रही है। सो यू नो द इंटरनेट वॉज सो डिवाइडेड, एंड आई फील कि किस तरह से ये डिविजन हमारे रील्स और हमारे फीड में भी हो रहा है। तो मैं क्योंकि एक रील को कंटिन्यूसली देख रही थी तो मेरा जैसे ही मैंने उसको आगे बढ़ाया दूसरा भी उसके सपोर्ट में आ रहा है, और मेरे हस्बैंड के फोन में वो चीज़ अगेंस्ट में आ रही है। सो इंटरनेट इज़ सो डिवाइडेड एज पर योर थॉट्स एंड व्हाट यू आर सीइंग, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि आप क्या देख रहे हैं। और ये जानना बहुत ज़रूरी है कि एल्गोरिथम कैसे हमें डिवाइड करता है। मुझे तो इतना जोर का स्ट्रेस हुआ ना ये देख करके कि मतलब मैं तो अच्छी चीज़ें देख रही हूँ, मैं अपने इंस्टाग्राम पे सब कुछ अच्छा अच्छा इसके बारे में पोस्ट कर रही हूँ, यू नो प्रो दिस प्रोटेस्ट, प्रो जेन ज़ी की, मतलब जेंजीज आर बींग सो नाइस एंड एवरीबडी वॉज टेलिंग कि जेंजी ऐसे होते हैं वैसे होते हैं, बट ये कितना अच्छा कर रहे हैं। वहाँ पे अगर ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो गिवन एरिया में कर रहे हैं, शांति से कर रहे हैं, मतलब दे आर नॉट क्रिएटिंग एनी न्यूसेंस। बट ऑन द अदर साइड पीपल वर सीइंग द अदर साइड ऑफ इट वेयर इन वो बिल्कुल भी न्यूसेंस था। So yes, we have to be careful with what we see and we have to understand and then analyze and then talk about it. ये एक lesson मुझे मिला, बहुत ही stress हुआ था मुझसे, लेकिन अब क्या करें, हर छोटी बात में आजकल हम लोग को stress हो जाता है। लेकिन अगर आपको किसी भी प्रकार के stress से छुट्टी चाहिए तो आपको इस ओशो के मेडिटेशन रिट्रीट में जाना चाहिए। येस, दिस कुड बी एग्जैक्टली वॉट यू हैव बीन लुकिंग फॉर। तो जॉइन द ओशो मेडिटेशन रिट्रीट जो कि आज ही हो रहा है 31st को, और इट विल 31st से स्टार्ट हो रहा है एंड इट विल बी टिल ऑगस्ट 2nd एट ओशो कैवेलियम धाम इन डेंशन टेक्सस। यहाँ पर आप पावरफुल मेडिटेशन एक्सपीरियंस करेंगे, मेडिटेशन टेक्निक सिखाए जाएंगे, म्यूजिक होगा, सेलिब्रेशन होगा, डीप साइलेंस होगा एंड इनर ट्रांसफॉर्मेशन अंडर द गाइडेंस ऑफ स्वामी प्रेम मैत्रेया। वेदर यूर अ बिगनर और एन एक्सपीरियंसड मेडिटेटर, एवरी वन इज वेलकम्ड। सीट्स लिमिटेड है तो प्लीज़ अगर आपने अभी तक रजिस्टर नहीं किया तो डेफिनेटली करिए। यू कैन कॉल और व्हाट्सएप ऑन 214-395-6757, दैट इज 214-395-6757। योर जर्नी टू इनर पीस बिगिंस हियर। और भाई स्क्रीन टाइम को कम भी करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है उससे बहुत स्ट्रेस बढ़ जाता है। हम खुद ही कोशिश कर रहे हैं, बहुत मुश्किल है मेरे लिए, आई एम सो एडिक्टेड टू इट। मैं अपने पतिदेव से हमेशा डांट खाती रहती हूँ, फ़ोन रखो, जब टीवी देख रही हो तो भी फ़ोन लेके बैठी हुई हो, हाउ कैन यू डू दिस, इट्स अफेक्टिंग यू। सो येस, इट इज़ सम हाउ अफेक्टिंग ऑल ऑफ अस हु आर सो इंक्लाइंड टूवर्ड्स दीज रील्स। एनीवेज, चलिए अगले गाने की तरफ लेकर के चल रही हूँ। इस गाने के ठीक बाद अगला गिव अवे आने वाला है, तो बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए फनी श्रेया 104.9 FM पर।

walls break down. So here was this beautiful song from the movie Anjana Anjani. आप सुन रहे हैं अपनी होस्ट आयुषी को गपशप गली में. ये गली है मीटू की, लेकिन इसमें बना ली है मैंने अपनी जगह. और अगले पूरे हफ्ते आप मुझे सुनने वाले हैं 10 से लेकर 12:30 बजे तक का. बहुत मजा आ रहा है मुझे शो करने में. उम्मीद करती हूँ आपको भी मेरा शो पसंद आ रहा हो. अब वक्त है हमारे आखिरी गिव अवे का. यस, आज का दूसरा गिव अवे जो कि है रेड हॉट चिली पेपर की तरफ से. फोन उठाइए, फोन तैयार रखिए, गाना प्ले करूंगी और पूछूंगी कि कौन है इस गाने का. क्या पूछूं मैं, बताओ. मैं पूछती हूँ, चलो मूवी का नाम पूछ लेती हूँ, सिंपल रखते हैं यार. देखते हैं कौन है वो लकी कॉलर. अगला गाना आपके लिए आएगा. पहले ये बता दूँ क्या क्या मिलेगा आपको इस गिव अवे में, क्या क्या मिल सकता है. अगर आप जीतते हैं तो आपको ड्राई चिली चिकन मिल सकता है, आपको चिली बेबी कॉर्न मिल सकता है, या फिर डैलस का बेस्ट बटर चिकन मिल सकता है, रेड हॉट चिली पेपर का चिकन मक्खन वाला. तो ये आप जाकर के किसी भी लोकेशन से उठा सकते हैं सिवाय फ्रिस्को के. सो यू हैव टू आइदर गो टू रिचर्डसन मैकिनी और एलन टू पिक अप दिस गिव अवे एंड मेक श्योर कि आप सही जवाब दें. जल्दी से कॉल करें. अगला गाना ये आ रहा है, फोन उठाइए, नंबर डायल करिए भाई साहब, क्योंकि गाना ये रहा और सवाल सिंपल सा है, मूवी का नाम क्या है बताइए मुझे.

0: 조야. 조야. 아니, 왜 또 보나? 조야. 조야.
1: 아, 또 एकदम करेक्ट बोला. 조야. 조야.

मैं भी परेशान परेशान परेशान भाई, इतने कॉल आए, थैंक यू कॉल्स आए, बहुत सारे कॉल्स आए और सबने सही जवाब दिया सिवाय एक के। लेकिन ना, हमारे पास ऑलरेडी हमारा विनर है एंड द विनर फॉर दिस गिव अवे श्रेया, जोरदार तालियां। एंड थैंक यू टू ऑल माई लिसनर्स कि आप बने रहे मेरे साथ और सुनते रहे मुझे फन एशिया 104.9 FM पे। मैं आपकी होस्ट आयुषी, वक्त हो रहा है आपसे विदा लेने का। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं, मेरी और बकबक सुनना चाहते हैं, तो प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए, बिहारी मॉम इन अमेरिका से मेरा हैंडल है, और फेसबुक पे आयुषी भूषण, सो प्लीज़ गो अहेड एंड फॉलो मी देयर, वहाँ पे भी हम कनेक्टेड रह सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद इस मज़ेदार सेगमेंट के लिए, क्योंकि मज़ेदार इसलिए क्योंकि आपने मेरा साथ दिया पूरे 2.5 घंटे और मुझे सुनते रहे, मेरी बातें सुनते रहे, गाने सुनते रहे। हम फिर मिलेंगे और हम मिलेंगे अब मंडे को सुबह 10 बजे। हैप्पी वीकेंड, एन्जॉय योर वीकेंड, धूम धड़ाके से वीकेंड एन्जॉय करिए, मज़े करिए, और जिनको गिव अवे नहीं मिला वो मंडे को फ़ोन कर सकते हैं, हम आपको फिर से देंगे गिव अवे मंडे को। आज बहुत सारे विषयों पे चर्चा हुई है और बहुत मज़ा आया, बहुत बहुत बहुत मज़ा आया। तो चलिए ये गाना आप सब के लिए, मिलते हैं मंडे को, तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए, आपकी होस्ट आयुषी इज साइनिंग ऑफ फॉर द डे, बाय बाय एंड हैव अ गुड वीकेंड।

0: कहाँ गया, कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
1: कौन सा?
0: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है।
1: अरे सारे तो सेम है।
0: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो ये वाला।
1: ओ हाँ, ये तो अलग है।
2: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है। From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection, now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
3: इस रक्षाबंधन चौकटॉक कैसीनो एंड रिसोर्ट ड्यूरांड के साथ सेलिब्रेट कीजिए वो रिश्ता जिसमें नोकझोंक भी है, दोस्ती भी, एंड ए लाइफ टाइम ऑफ अनफॉरगेटेबल मेमोरीज। अपने भाई या बहन के साथ जुड़ी सबसे यादगार मेमोरी हमें 1 मिनट वॉइस नोट में भेजिए एंड विन एक्साइटिंग डेली प्राइजेस इंक्लूडिंग डाइनिंग एक्सपीरियंसेस, एंटरटेनमेंट, रिजॉर्ट स्टेज एंड द ग्रैंड प्राइज एंड अनफॉरगेटेबल सिबलिंग रीयूनियन वीकेंड एट चौकटॉक कैसीनो एंड रिसोर्ट ड्यूरांड। अपनी स्टोरी व्हाट्सएप कीजिए 214-837-7147 पर या कॉन्टेस्ट डिटेल्स के लिए विजिट कीजिए फनीशा रेडियो के सोशल मीडिया पेजेस।
2: चौक टॉक कैसीनो एंड रिसॉर्ट डुरांट, वेयर अनफॉरगेटेबल मेमोरीज आर मेड टुगेदर। मस्ट बी 21 और ओल्डर टू पार्टिसिपेट, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली।
4: One mistake doesn't have to define your future. A DWI or DUI charge can bring serious consequences, including license suspension, fines, and even jail time. But you don't have to face it alone. At Mathur Law Offices PC, we provide experienced legal representation in criminal defense matters, including DWI cases.
2: We also assist with related legal issues, including immigration consequences that may arise from criminal charges. Every case is different. The right legal strategy depends on your specific facts and circumstances. Call 214-378-8880. Mathur Law Offices PC. Right advice, right defense. Paid spokesperson, Principal Office, Dallas, Texas.
1: Yaar, boss ne fir se daat diya. Traffic alag. और ऊपर से ये स्ट्रेस।
0: अरे रिलैक्स, यू नीड अ कूल थेरेपी।
1: थेरेपी? वो तो बहुत महंगी है।
0: नहीं, कूल मतलब कूल चा थेरेपी।
1: ये क्या होता?
0: सिंपल, चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस इन एलन।
4: चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस सर्विंग सम ऑफ द बेस्ट पंजाबी फूड इन डैलस, फ्रॉम बटरी करीज टू ऑथेंटिक पंजाबी स्ट्रीट फूड फेवरेट्स, स्ट्रेट फ्रॉम शेफ गगन पन्नूस किचन। सो नेक्स्ट टाइम लाइफ गेट्स स्ट्रेसफुल, जस्ट टेक अ डोज ऑफ कुलचा थेरेपी एट चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस।
2: एंड नाउ एट अ बिगर लोकेशन जस्ट 3 डोर्स डाउन विद लिमिटेड रिजर्वेशन।
5: अजी सुनते हो?
6: अजी नहीं, एजी सुनते हैं।
4: The OG of tax planning, AG Fintax. सुनेंगे आपके financial concerns, देंगे smart solutions. Every Friday 9:45 AM, only on Funasia Radio.
7: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट्स के बिना अधूरी लगती है, तो ये खबर आपके लिए। दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स, तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम। चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स। डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्डन, वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन।
8: Are you looking for a smarter approach to reducing taxes while building and preserving wealth? My Time Equity, a registered investment advisory firm led by CPA Sudhir Pai, offers active portfolio management, structured notes, tax and financial planning, real estate strategies, AI and late stage pre-IPO opportunities, and other alternative investments. Learn how a personalized strategy can help you pursue your financial goals. Visit mytimeequity.com or call 972-330-2771.
2: My Time Equity is a fee-based registered investment advisory firm. This advertisement is for informational purposes only and does not constitute investment, legal or tax advice. Investing involves risk, including the possible loss of principal.
9: For decades, one man has made the world dance.
2: Now, Mathangi Entertainment Group proudly brings India's Michael Jackson, Prabhu Deva, live to DFW. Joining him are Lauren Gottlieb, Sonal Bhadoria, Alexander Noel, Harini Nilakantan, Natasha Sherpa and Sanve Meghna for the ultimate pan-Indian dance concert. Saturday, August 1st at the Texas Trust CU Theatre, Grand Prairie. Book your tickets now. Call 248-233-3828. Media partner, Fun Asia Network.

Hello, hello, hello, DFW. Happy Friday. Lunch break शुरू हो चुका है. Emails थोड़ी देर आपकी रुक सकती है. Meetings थोड़ी देर wait कर सकती है. लेकिन लेकिन लेकिन Bollywood कभी वेट नहीं करता है. दिस इज योर होस्ट फॉर दिस शो, दिस इज रुमिता. और अगले दो घंटे हम सेलिब्रेट करेंगे मूवीज, म्यूजिक, नॉस्टैल्जिया और वो सब कुछ जो फ्राइडे को फ्राइडे बनाता है. बिकॉज दिस इज अ फिल्मी फ्राइडे ऑन 104.9 FM फन एशिया रेडियो, जहां हर गाने ना एक सीन है, एक सीन एक याद है और हर लिसनर एक हीरो है. तो सीट बेल्ट फिल्मी है फ्राइडे है ना, ऐसे बोलते हैं, तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि आपका फ्राइडे फिल्मी बनने वाला है. पिक्चर जस्ट शुरू होने वाला है.

12:45 PM by the studio clock on a Friday, 31st July hai aaj ki tarikh, and you're listening to 104.9 FM Phanisha Radio, jahan pe abhi I played this song from the movie, actually the reprised version of the song from the movie Bhai Tera Star Hai, which happens to be released, it has already released worldwide, aur फ्राइडे का इस हफ्ते का ये है एक लौता रिलीज जिसके बारे में मैं अभी आपसे बात करने वाली हूँ. तो पिक्चर रिलीज हो चुकी है एंड इट हैज़ रिसीव्ड टुवर्ड्स द नेगेटिव रिव्यूज, मतलब लाइन इसके डायरेक्शंस रिव्यूज के नेगेटिवली जा रहे हैं, बिकॉज वी ऑल नो हाउ पॉपुलर राघव जुआल इज. आई मीन उनके रियलिटी शोज, उनकी डांस स्किल्स हो, उनकी रियलिटी शो होस्टिंग स्किल्स हो, या फिर उनकी एक्टिंग स्किल्स जो हमें दिखने को मिले पिछले साल इन द बैराज ऑफ बॉलीवुड सीरीज ऑन अ पॉपुलर ओटीटी चैनल. बट इस पिक्चर में भाई अपना हीरो तो है बट स्टार नहीं बन पाया. इनफैक्ट भाई तेरा स्टार है में द कॉमेडी ना जो वो जनरली हम यूज टू है उनको देखने में, द कॉमेडी एक्चुअली फॉल्स फ्लैट. आई मीन डायरेक्टर को तो पता है कि फिल्म में करना क्या है, बट यू नो एक खिचड़ी पकी है. और ऐसा नहीं है कि डिजिटली, हमेशा जो आजकल का ट्रेंड है कि डिजिटली जो पॉपुलर है उनको अगर स्टार कास्ट में ले लेंगे पिक्चर में तो पिक्चर आपकी हिट हो जाएगी. भाई पिक्चर का बज क्रिएट तो हो जाएगा, बट पिक्चर में अगर मेन जो चीज़ है स्टोरी नहीं है तो आपकी पिक्चर ऑडियंसिस को पसंद नहीं आएगी. एंड दैट इज द एग्जैक्ट प्रॉब्लम विद भाई तेरा स्टार है, विच स्टार्स राघव जुआल, निहारिका एनएम हु इज अ पॉपुलर इन्फ्लुएंसर, एंड ऑल्सो इट हैज संजय कपूर इन द पिवोटल रोल्स. बट आई मीन बहुत ही मिक्स्ड रिव्यूज के साथ साथ, जैसे कि मैंने कहा, नेगेटिव रिव्यूज ज्यादा है. तो आप अगर इसको आज प्लान कर रहे थे कि थिएटर में देखूं कि ना देखूं, एक बार दोबारा सोच लेना. आई डोंट वांट टू

बट आई मीन बहुत ही मिक्स्ड रिव्यूज के साथ साथ, जैसे कि मैंने कहा नेगेटिव रिव्यूज ज्यादा है. तो आप अगर इसको आज प्लान कर रहे थे कि थिएटर में देखूं कि ना देखूं, एक बार दोबारा सोच लेना. आई डोंट वांट टू लाइक डीमोटिवेट यू फॉर योर मूवी डेट टुडे और दिस वीकेंड, बट आई थिंक आप थोड़ा बहुत वेट कर सकते हो. नहीं सोच लो. मैं आती हूँ दो जबरदस्त गाने लेकर बैक टू बैक ओनली ऑन फनीशा रेडियो 104.9 FM. दिस इज रुमिता ऑन फिल्मी फ्राइडे.

एग्जैक्टली अगर इंस्टाग्राम में मैं कोई डिजर्ट वीडियोस देख लेती हूँ ना स्क्रॉल करते करते, तो मुझे यही लाइन आता है, तुम मेरे हुए ना सही. यू आर लिसनिंग टू 104.9 एफएम फनीशा रेडियो एंड दिस सॉन्ग वाज टेकन फ्रॉम द मूवी थामा एंड विच वाज अगेन आई डोंट नो आयुष्मान खुराना को हो क्या गया है, उनकी पिक्चर चल क्यों नहीं रही है. आई मीन सच अ टैलेंटेड एक्टर एंड बैक टू बैक उनकी पिक्चर धराधर. आई मीन इट्स गोइंग बिलो द ग्राफ अभी. एंड आई टेल यू आई डोंट नो कितनों को आपको ये वीडियो याद है इस गाने का. द इवन हैड द ऑडेसिटी टू कॉपी माइकल जैक्सन स्टेप्स फ्रॉम द फेमस म्यूजिक वीडियो थ्रिलर. आई मीन क्यों भाई क्यों, खैर छोड़िए. इट्स ऑलमोस्ट 1 o'clock ऑन अ फ्राइडे आफ्टरनून और अगर अभी भी लंच नहीं किया है और सोच रहे हो कि करनी है तो यार फ्रिस्को में चले जाओ द फ्लेवर लाउंज सिंपली फॉर गुड फूड एंड ग्रेट ड्रिंक्स. और पता है एवरी वीकडे फ्रॉम 5 to 7 PM दे हैव 20% ऑफ ऑन एपेटाइजर्स मॉकटेल्स एंड कॉकटेल्स. आई नो फ्राइडे आपको फीलिंग आपकी देती है वो वीकेंड वाली वाइब चली आती है ऑलरेडी बट इट्स ऑल्सो technically and officially a weekday. So go to Flavor Lounge for that happy hour along with the good food and the good memories, which is located in Frisco at the Malabar Golds and Diamonds complex. And if you want to party bigger, then they also have this catering services which you can avail for birthdays, weddings, corporate events, private celebrations, kuch bhi ho, shaadi mein koi bhi occasion ho. Go to Flavor Lounge, talk to them. They have the best food or kathal cutlets. Ay, kya hi batao. Check it out and keep listening to 104.9 FM, Funisha Radio.

0: The Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: At Tanishq, no two diamonds are exactly alike. They're beautifully rare, just like the woman who wears them. That's why this is the perfect time to find yours at the Tanishq Festival of Diamonds, with up to 25% off on diamond value and making charges, plus zero deduction on your old gold exchange above 18 carat. Visit Tanishq Dallas at 2809 Preston Road, number 1200, Frisco, 75034 today. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
3: इस साल तो कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया।
4: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
3: नहीं।
4: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
3: नहीं।
4: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
3: वो भी नहीं।
4: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।
5: रेवेन्यू देखकर खुश मत होइए। बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रॉन्ग हो। फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट agfintax.com, कॉल 972-618-8555. AG FinTax, your growth, our strategy. AG FinTax, led by Forbes Finance Council member Anil Granthi.
6: Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
7: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
8: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
9: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
10: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहां एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
9: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com.
11: ड्यूड, लाइफ में कुछ ऐसा करना है जिसमें मैं फ्रंट पेज पे रहूं।
12: फ्रंट पेज का तो पता नहीं, पर तेरा पेज 3 में होना मेरी गारंटी है।
11: कैसे?
12: पेज 3 ईटरी?
11: नो, नॉट अनदर रेस्टोरेंट अगेन।
12: ड्यूड, इट्स पेज 3। स्टार्ट विद द बार, सिग्नेचर कॉकटेल्स, क्लासिक पोर्स एंड द फूड क्राफ्टेड टू सूट एवरी क्रेविंग, एवरी एपेटाइट।
11: मतलब ग्रेट फूड, ग्रेट ड्रिंक्स एंड ग्रेट कंपनी, यानी कि मैं।
13: पेज 3 ईटरी, ईट, सिप, गॉसिप, रिपीट।
14: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
15: Kuch bhi nahi. Ura Debt Relief will do it for us.
14: Kya matlab?
15: Ura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
14: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
15: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
14: Ab to karna hi padega, madam.
16: Don't let debt ruin your life. Visit ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
17: Craving delicious Indo-Chinese and North Indian food? Red Hot Chili Pepper is the place to go. With locations in Frisco, McKinney, Richardson and now our newest location in Allen at Waters and 121. Whether you're dining in, taking out or catering, Red Hot Chili Pepper is Dallas's number one choice for Indo-Chinese and North Indian cuisine.
18: Aji sunte ho, soch rahi thi bete ki shaadi इंडिया में करे?
19: इंडिया में तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं वो कैसे अटेंड करेंगे?
18: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा।
19: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
18: सच में? सब संभालेंगे?
19: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर। वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह। सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनोन्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
5: कॉल हरी बसेरा ऑन 469-442-8770. Vanessa Events, your celebration partner.

You're listening to 104.9 FM Funny Share Radio. मैं हूँ रुमिता with my show Filmy Friday, जहाँ पे वक्त हो चुका है एक giveaway का. And the giveaway का तरीका ना इस थोड़ा सा इस शो में थोड़ा सा हटके, क्योंकि यार दिस इज फिल्मी एंड दिस इज फ्राइडे. तो मैं आपको मौका दे रही हूँ फन पिज्जा किचन से एक $10 गिफ्ट कार्ड जीतने का. सिर्फ और सिर्फ आप ये $10 अभी जीत भी नहीं सकते. आई मीन दैट इज नॉट ऑल व्हाट आई मेंट, इज दैट इज नॉट व्हाट यू आर गोइंग टू डू इट राइट नाउ और विन इट राइट नाउ. यू कैन ऑल्सो सेलिब्रेट फ्रेंडशिप डे एट फन पिज्जा किचन विथ ऑब्वियसली ग्रेट पिज्जाज एंड इवन बेटर ऑफर. क्या करना है आपको, सिर्फ एक पिक्चर लेनी है आपके बेस्ट फ्रेंड के साथ और उसको इंस्टाग्राम में डालना है टैगिंग फन पिज्जा किचन या फिर फनीशर रेडियो. और अगर वो पिक्चर लेके आप जाएंगे फन पिज्जा किचन टिल 3rd of August, यू गेट एन एडिशनल 10% ऑफ ऑन योर बिल या फिर एक फ्री गार्लिक ब्रेड. तो चलो यार गिव अवे इसको साइड में रखते हैं, वो तो आप जीत ही रहे हो और $10 ऑफ. फिर उसके साथ साथ आप ये भी जीत सकते हो कि आप अपने फ्रेंड के साथ एक पिक्चर ले लो. और ये ऑफर इज वैलिड टिल 3rd of August. सो फन पिज्जा किचन का जो पिज्जा है दैट इज व्हाट यू आर गोइंग टू सेलिब्रेट विथ योर बेस्ट फ्रेंड. तो करना क्या है, फिल्मी फ्राइडे में आई एम गोइंग टू गिव यू अ plot of a movie and you just have to guess the movie and give me the correct answer. Studio number is 972-235-5555. Toh chalo shuru karte hai ye sawal to give this giveaway from Fun Pizza Kitchen. Toh the clue is two men, handsome hunks, pretend to be gay and end up falling for their landlord. Simple hai yaar. Do extremely handsome actors ya fir characters, they are on screen. And to be noted, my lord, this movie is entirely shot in Miami. So isse zyada main aur clue nahi de sakti. Two men pretend to be gay and end up falling for their landlord. Phone lines already busy ho chuki hamari. Main jhat se answer le leti hu, winner ka naam note karti hu. आप ये अगला गाना सुनिए एंड सुनते रहिए फनी शेयर रेडियो 104.9 FM.

Shukriya, Mehrbani, Karam. Thank you for all the compliments. You're listening to 104.9 FM Phanisha Radio. This is Filmy Friday with Ramita. And I know I intentionally am rolling this R, but kya kare? Favorite letter hai, naam isi se shuru hota hai. Filmy Friday mein ye jo giveaway sawal tha, उसका आंसर भी मुझे मिल गया है. तो सवाल ये था कि गेस द मूवी विद दिस हिंट, एंड हिंट ये है कि टू मेन प्रिटेंड टू बी गे एंड एंड अप फॉलिंग फॉर देयर लैंड लॉर्ड. और ऑल माय बॉलीवुड बफ्स ऑफ DFW, उन्होंने कॉल किया है बैक टू बैक हमारे फोन लाइंस बजे, बट सैडली आई हैड टू पिक अप वन एंड द करेक्ट आंसर वाज गिवन बाय सिद्धार्थ श्रीवास्तव. कंग्रेचुलेशन सिद्धार्थ, यू विन दिस फन पिज्जा किचन $10 ऑफ एंड यू कैन अवेल इट विद पिज्जाज, कंबाइन इट विद चिकन विंग्स, और भी बहुत कुछ है. प्लीज गो टू funpizzakitchen.com एंड एंजॉय दिस देसी स्टाइल पिज्जाज. बाकी भाई लोग डोंट वरी, हमारे पूरे दिन मल्टीपल शोज में मल्टीपल गिव अवेज होते हैं. आई नो आप लोग सुनते रहते, कॉल करते रहते, जीतते रहते, बट बोलना मेरा काम है, करना आपका. सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप लिसनिंग टू 104.9 FM Phanisha Radio. नच दे फिर.

0: You're listening to 104.9 FM Funisha Radio, and this is Filmy Friday with me, Rumita. And let me tell you, agar abhi bhi aap fase ho ke ye decision nahi le pa rahe ho ki ghar kharidna hai ya nahi kharidna hai, apartments mein hi rahe ya na kuch koi aur decision leke hum finally yahan pe thoda sa idhar udhar karke paise jama juma ke loans leke ghar apna basa le, then dream home mortgage is definitely gonna help you in this regard, because you know, since 1998, they have been helping families to achieve home ownership. Sirf call kijiye 972-245-5626 and connect with Mr. Hussain Panjwani, or dreamhomemortgage.com is the website to get you more details about it. Sunte rahiye 104.9 FM Funisha Radio.
1: Zindagi ek safar hai suhana, yahan kal kya ho kisne jana.
2: Life ho ya health, kab kya ho jaye pata nahi. 13 saal tak Texas Primary Care Clinic ne jeeta aapka trust, aur ab wahi trusted care urgent care services ke saath नए काइजरवे लोकेशन पर. लुनॉक्सी मेडिकल, फाउंडेड बाय डॉक्टर मनदीप आचार्य. एडल्ट्स और बच्चों के लिए प्राइमरी केयर, अर्जेंट केयर, एक्सरे, सीटी स्कैन, हार्ट टेस्टिंग और मेड स्पा, सब कुछ एक ही रूफ के नीचे. लुनॉक्सी मेडिकल अर्जेंट केयर, ओपन 7 डेज अ वीक, 8 AM टू 8 PM, वॉक इन एनी टाइम. 9191 काइजरवे, स्वीट 205, फ्रिस्को.
3: एक्सपीरियंस पीस, म्यूजिक एंड मेडिटेशन विद अर्चना दीदी एट अ फ्री 3-day रिट्रीट इन DFW. जॉइन अस ऑन August 7th एट भारतीय निवास इन Richardson, August 8th and 9th morning at Sri Raghunath Temple in Plano, and August 8th evening at DFW Hindu Temple, Ekta Mandir in Irving. Enjoy meditation, soulful music and free vegetarian prasad.
2: Proudly supported by Roma Pithadia, Sri Vimal, Shankar Vilas, Payal Dance Class, Rajula's Kitchen, Fun Pizza Kitchen, Raghunath Temple, DFW Temple and Fun Asia.
3: Register free now at meditation.funasia.net.
4: मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूंगी, वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय कर दूं।
5: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
2: अब करेगा, बिकॉज इंडियन अटायर फ्रिस्को समर सेल इज ऑन. स्टनिंग लहंगास, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी, मेंस एंड किड्स वेयर.
5: वेट, इतना सब और प्राइस?
2: अप टू 25% ऑफ ऑन लहंगास एंड ब्राइडल कलेक्शन समर सेल थ्रू द एंड ऑफ ऑगस्ट, ओनली एट इंडियन अटायर फ्रिस्को. ट्रेडिशनल हो या फ्यूजन, अब हर आउटफिट बोलेगा
6: मैं हीरो.
7: रितेश, कभी सोचा है कल अगर तुम नहीं रहे तो मेरा क्या होगा?
8: अरे रिलैक्स, सब तुम्हारा ही तो है.
7: सच? या फिर कोर्ट डिसाइड करेगा?
8: वेट, व्हाट?
2: यस, अगर प्रॉपर एस्टेट प्लान नहीं है तो आपकी फैमिली के डिसीजंस कोर्ट लेता है.
9: हाय, दिस इज दीप्ति वर्मा विद NRI वेल्थ. मैं फैमिलीज को हेल्प करती हूँ उनकी मेहनत को प्रोटेक्ट करने में, द राइट वे विद एस्टेट प्लानिंग.
2: अगर आपके पास सिर्फ विल है या कुछ भी नहीं है तो ये कॉल डिले मत कीजिए. कॉल 669-243-5799, दैट्स 669-243-5799 फॉर अ फ्री 15-minute कंसल्टेशन.
10: इट्स ट्रू, हम अपनी सद्बुद्धि से बहुत सी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, बट समटाइम्स इवन द बेस्ट नीड अ लिटिल गाइडेंस. With over 400 years of family tradition, through his extensive knowledge of astrology and palm reading, Pandit Ishwar ji can help you with any difficulty in your personal or professional life, from relationship issues to negative energy removal. Call the most trusted astrologer, Pandit Ishwar ji, 945-527-0897, or visit astrologerishwar.com.
11: Are you looking for a smarter approach to reducing taxes while building and preserving wealth? My Time Equity, a registered investment advisory firm led by CPA Sudhir Pai, offers active portfolio management, structured notes, tax and financial planning, real estate strategies, AI and late stage pre-IPO opportunities, and other alternative investments. Learn how a personalized strategy can help you pursue your financial goals. Visit mytimeequity.com or call 972-330-2771.
2: My Time Equity is a fee-based registered investment advisory firm. This advertisement is for informational purposes only and does not constitute investment, legal or tax advice. Investing involves risk, including the possible loss of principal.
12: Filmon ka maza action, drama aur romance mein hai, aur khane ka maza har flavor ke zabardast performance mein.
13: Kabhi chatpata sa twist, kabhi teekha sa kick, kabhi meetha sa sukoon.
12: Jahan har flavor kare full on entertain. The Flavor Lounge.
13: Papri chaat चाट से मालपुआ रबड़ी तक हर डिश में मिले जिंदगी के फ्लेवर्स का असली स्वाद. विजिट देयर न्यू वेबसाइट और डाउनलोड द फ्लेवर लाउंज ऐप फॉर एक्सक्लूसिव डील्स. द फ्लेवर लाउंज, हर बाई सुपरहिट.
6: This 15th of August, don't just celebrate Independence Day, celebrate it the Indian way. Join India Association of North Texas's Anand Bazaar 2026 at the Comerica Center in Frisco. Saturday from 2 p.m. onwards, experience a grand Independence Day parade, authentic Indian food, colorful cultural performances, live music, shopping, family fun, and an unforgettable celebration of India's independence. And the best part? It's completely indoors and free for everyone.
14: Sponsorship booth from $3,000 to $50,000 and vendor stalls at $750. Call 214-529-3257.
6: Celebrate India's 80th Independence Day with the entire community. IANT Anand Bazaar 2026 on Saturday the 15th of August, 2 p.m. onwards at the Comerica Center in Frisco. Pump it up.

सुन रहे थे आप बैक टू बैक प्रभु देवा के गाने और शंकर महादेवन और चित्रा की आवाज में. दिस ब्यूटीफुल ट्रैक वाज वेरी पॉपुलर इन द लेट 90s. और लेट मी सी हाउ मेनी ऑफ यू नो विच फिल्म दिस सॉन्ग बिलोंग्स टू. आई मीन इफ यू आर रियली अ बॉलीवुड बफ लाइक आई एम, I mean, just if you, listening to me and can tell me which song this movie is from, toh hum studio mein thoda gappe lada lenge. Filhal, let me tell you, this show that is Filmy Friday right now is brought to you by AG Fintax, which is one of the most fastest growing tax and accounting firms in the United States. Chahe aap individual ho, aapka startup ho, ya fir ek established business, AG Fintax ऑफर करता है इनोवेटिव फाइनेंशियल सॉल्यूशन व्हिच इज टेलर्ड फॉर योर नीड्स. कॉल 469-942-9888 और विजिट agfintax.com टुडे. वैसे फोन लाइंस आर ब्लिंकिंग राइट नाउ. मुझे लगता है किसी ना किसी को तो पता ही है और किसी ने ठान ली है कि ये जो गाना मैंने प्ले किया था हू ला ला ला वॉज फ्रॉम विच मूवी. चलिए मैं उनसे गप्पे लड़ा लेती हूँ. फिलहाल आप सुनते रहिए दिस धमाकेदार ट्रैक फ्रॉम द मूवी गुरु. स्टे ट्यून्ड एंड कीप लिसनिंग टू 104.9 FM फनीशा रेडियो. दिस इज रमिता ऑन फिल्मी फ्राइडे.

0: The Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: कहाँ गया, कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
3: कौन सा?
2: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है.
3: अरे सारे तो सेम है.
2: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये ये ये देखो, ये वाला.
3: ओ हाँ, ये तो अलग है.
4: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है. From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection, now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
5: Documents ya parcel bhejni hai?
3: हाँ.
5: घर रिलोकेट करनी है?
3: हाँ.
5: गाड़ी भी ट्रांसपोर्ट करना है?
3: हाँ भाई हाँ.
5: तो फिर टेंशन क्यों ले रहा है? SFL Worldwide को कॉल कर.
6: Documents shipping, boxes shipping, complete door-to-door relocation, auto transport. सिर्फ इंडिया नहीं, USA और दुनिया भर में trusted shipping और moving services. SFL Worldwide, हर move का perfect solution. Visit sflworldwide.com or call 1-800-691-2335.
7: डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन.
8: लेकिन आपके डॉक्टर का अपॉइंटमेंट मिलना उससे भी मुश्किल है. एक हफ्ता, दस दिन, अगले ट्यूसडे.
9: तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख.
4: पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर गिव्स यू डॉक अपॉइंटमेंट्स ऑन द सेम डे विजिट. आज बुखार, आज डॉक्टर. आज इन्फेक्शन, आज डॉक्टर. आज एनुअल चेकअप, आज डॉक्टर. प्लस 30 मिनट्स ऑफ डेडिकेटेड अपॉइंटमेंट टाइम. पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर इन इरविंग, प्लेनो, फ्रिस्को, मकिनी, ऑब्री.
8: विजिट passionhealthphysicians.com और कॉल 214-666-6259.
10: यार मेरे फोन में हम दोनों के कितने सेल्फीज है यार.
11: तो चल उन सेल्फीज से पिज्जास खाते हैं.
10: व्हाट?
12: दिस फ्रेंडशिप डे ब्रिंग योर फ्रेंडशिप टू फन पिज्जा किचन. पोस्ट अ सेल्फी विद योर फ्रेंड्स ऑन इंस्टाग्राम, टैग फन पिज्जा किचन एंड एंजॉय 10% ऑफ योर बिल और अ फ्री गार्लिक ब्रेड. ऑफर वैलिड टिल ऑगस्ट 3rd. विजिट funpizzakitchen.com फॉर मोर डिटेल्स.
13: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है.
14: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स. मान्यवर मोहे, लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग.
15: हे, तुमने कभी इंश्योरेंस लिया?
16: लिया.
15: कभी पॉलिसी समझ भी आया?
16: नहीं आया.
15: मुझे भी नहीं आया. आएगा भी कैसे, इंश्योरेंस चीज ही ऐसी है. इसलिए स्मार्ट लोग चूज करते हैं सिनारा इंक एंड हुमैरा जुमानी इंश्योरेंस. वेदर इट्स होम, ऑटो, हेल्थ और बिजनेस, एवरी पॉलिसी इज कस्टमाइज्ड अराउंड यू. होटल्स, मोटेल्स, गैस स्टेशंस एंड स्मॉल बिजनेसेस, दे हेल्प प्रोटेक्ट व्हाट यू वर्कड हार्ड फॉर. नो कंफ्यूजन, नो अननेसेसरी एक्स्ट्रास. कॉल हुमैरा जुमानी एट सिनारा इंक 972-863-772. That's 972-863-772.
17: Visit www.sanadainc.com today.
18: Give your children the gift of spiritual grounding and cultural identity through Chinmaya Mission's Balavihar program. Families can choose from three convenient locations. Chinmaya Mission also offers a variety of enriching programs, including Gita chanting, Shlokathon, satsangs for adults, festival celebrations, cultural activities, and language classes. Registration of Balavihar is now open. Visit cmdfw.org for complete details. Hari Om.

You're listening to 104.9 FM Funisha Radio. This is Filmy Friday with me, Ramita. और वक्त है कि आपको मैं थोड़ा सा इन्फॉर्म कर दूं कि इस वीक OTT में क्या-क्या रिलीजेस है. मेरी मानो तो अगर आपने कुछ महीने पहले एक मूवी आई थी जो कि मुझे उसमें कुछ भी ओरिजिनल नहीं दिखा क्योंकि स्टोरी से लेके गाने से लेके टाइटल तक सारे उधार के थे. क्या ही करे यार, डेविड धवन हमारे इतने चहीते डायरेक्टर थे इन द 90s. इनफैक्ट स्टिल है. आई मीन वी द मिलेनियल्स लाफ्ड आउट लाउड ऑन हिज मूवीज, चाहे वो दुल्हे राजा हो, राजा बाबू हो, चाहे वो आई मीन टेक एनी गोविंदा मूवीज, कूली नंबर वन, हसीना मान जाएगी. ओ माई गॉड, द लिस्ट विल कंटिन्यू. बट ही मेड अ कमबैक दिस ईयर विथ है जवानी तो इश्क होना है विथ हिज बिलवड सुपुत्र वरुण धवन, स्टारिंग मृणाल ठाकुर एंड पूजा हेगड़े विथ हिम अलॉन्ग साइड. स्टोरी तो मुझे आई मीन ओके फाइन, मिक्सड रिव्यूज हो सकते हैं, रिएक्शंस हो सकते हैं, कमेंट्स हो सकते हैं, पर यार कॉमेडी हर किसी की बात नहीं है. गोविंदा तो भाई गोविंदा ही थे और वरुण धवन भी हमारे वरुण धवन है. तो ये मूवी अगर आपने थिएटर में मिस कर दिया, देन यू हैव अ चांस टू हेड टू दिस OTT चैनल विच इज अ वेरी पॉपुलर बाय द वे, आई एम नॉट गोना नेम इट, बट यू कैन स्टिल वॉच इट. अलॉन्ग विद दैट द लेजेंड ऑफ कर्ण, द एनिमेटेड अडेप्टेशन ऑफ द महाभारत फोकसिंग ऑन कर्ण's पर्सपेक्टिव. भाई उनकी भी आई मीन out of all the characters in Mahabharat, Karna holds a special space in my heart. I don't know about you. Yaar, bahut hi underestimate the, but he was as strong, as talented, as brave as any other Mahabharat characters or the Pandavas. But unki kahani animated adaptation of the Mahabharat is releasing this weekend. So, agar aap apne bachcho ko thore se enlighten karna chahte with an animated adaptation of Mahabharat, then The Legend of Karna can be a good watch for you and your kids. Alongside Rao Bahadur is also releasing on OTT, which is a psychological dark comedy starring Satya Dev. It is made available in multiple languages, including Hindi, on another very नेट वाली OTT चैनल. सो इफ यू हैव योर प्लान्स रेडी, मेरी बात मान के तो कर दिया मैंने वीकेंड का प्लान, अभी जाओ घर जाओ, प्लान बनाओ कि घर जाके आज कौन सी मूवी OTT में देखनी है और फिर मुझे अगले फ्राइडे बोलना कि कैसी लगी ये मूवीज. फिलहाल एंजॉय टू बैक सॉन्ग्स ओनली ऑन फनीशिया रेडियो 104.9 FM. दिस इज रोमिता ऑन फिल्मी फ्राइडे.

You're listening to 104.9 FM, Funisha Radio. जी कंगना जी ने मेरी दिल की बात कह दी, यानी कि मुंह से छीन के कह दी कि ये जवानी है दीवानी अगर वापस से थिएटर में रिलीज होने वाली है तो शी इज गोना बाय द टिकट्स एंड गो विथ हर बेस्ट फ्रेंड्स ऑल ओवर अगेन. आई नो आई मिस माई फ्रेंड्स टू एंड आई होप ये फिल्म वापस से थिएटर में रिलीज हो और हम सब मिलके देखने जाए. फिलहाल इट्स ऑलमोस्ट 2:30 PM बाय द स्टूडियो क्लॉक. आई एम गोना से टाटा बाय बाय टू यू, बट जाने से पहले आई एम गोना फिल इन द नॉस्टैल्जिया अगेन, क्योंकि बहुत ही स्पेशल रिक्वेस्ट आई है बाय अ वेरी स्पेशल पर्सन. आई डोंट नो, ही कॉल्स हिमसेल्फ एज भारत पारेख डैलस वाले. अब डैलस वाले हैं तो उनकी रिक्वेस्ट तो माननी ही पड़ेगी. गोविंदा के बारे में आई वॉज टॉकिंग और उन्होंने कर दी गोविंदा के गाने की रिक्वेस्ट. सो हियर इट गोज, भारत पारेख डालस वाले, दिस सॉन्ग इज फॉर यू. बाकी सब ठीक, हम चलते हैं, मिलेंगे अगले फ्राइडे.

0: Moments don't fade. They echo like a melody that never leaves you. And in those moments, what you wear becomes a part of that melody. One of the most trusted jewelers with over 40 stores in India is now in Dallas. PMJ Jewels. Timeless craftsmanship, unmatched elegance, and stunning bridal collections. Now in Main Street, Frisco. PMJ Jewels. India's finest, Dallas's newest.
1: Call 857-891-8942 today.
2: Aji, sunte ho?
3: Aji, nahi. Aji, sunte.
4: The OG of tax planning, AG Fintax. Sunenge aapke financial concerns, denge smart solutions. Every Friday, 9:45 a.m. only on Funasia Radio.
5: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
6: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
7: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
8: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
7: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
9: हेलो, एक्सीडेंट क्लेम? ओके, नेम ऑफ द लॉयर?
10: उमर ख्वाजा।
11: जब इंश्योरेंस वाले सुनते हैं उमर ख्वाजा का नाम तो वो खुद आ जाते हैं टेंशन में, क्योंकि वो जानते हैं अगर लॉयर उमर है तो नेगोशिएशन का मतलब है कॉम्पनसेशन फुल एंड फाइनल। कॉल अटर्नी उमर ख्वाजा नाउ फॉर अ फ्री कंसल्टेशन एट 833-GET-UMAR और विजिट attorneyumar.com।
12: At Tanishq, no two diamonds are exactly alike. They're beautifully rare, just like the woman who wears them. That's why this is the perfect time to find yours at the Tanishq Festival of Diamonds, with up to 25% off on diamond value and making charges, plus zero deduction on your old gold exchange above 18 carat. Visit Tanishq Dallas at 2809 Preston Road, number 1200, Frisco, 75034 today. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
13: This 15th of August, don't just celebrate Independence Day, celebrate it the Indian way. Join India Association of North Texas's Anand Bazaar 2026 at the Comerica Center in Frisco. Saturday from 2 p.m. onwards, experience a grand Independence Day parade, authentic Indian food, colorful cultural performances, live music, shopping, family fun, and an unforgettable celebration of India's independence. And the best part? It's completely indoors and free for everyone.
1: For sponsorship booth from $3,000 to $50,000 and vendor stalls at $750. Call 214-529-3257.
13: Celebrate India's 80th Independence Day with the entire community. IANT Anand Bazaar 2026 on Saturday the 15th of August, 2 p.m. onwards at the Comerica Center in Frisco.
14: Hi, I'm Rajkumar Rao and you're listening to the most popular FM station in the U.S. 104.9 FM. Funasia Radio.

A very good afternoon to the listeners of 104.9 FM Fun Asia Radio. Sun rahe hain aap. Main hoon Kiran aapke saath. Thank you so much for connecting with us this afternoon. Every Monday through Friday, 2:30 baje se 5 baje tak, main aapke saath rehti hoon. 972-235-5555 ke through. You stay with me as well. Number to the studios is 972-235-5555. Agar ab tak aapne isko apne fast dial mein save nahi kiya, to jaldi se kar lijiye. Hamari social media apps ko follow kar lijiye. Sab kuch jo लेटेस्ट होता है फन एशिया के स्टूडियो में वो आप तक झट पट पहुंच जाएगा. अच्छा जी, आज है जुम्मा. थैंक गॉड इट इज फ्राइडे. फ्राइडे को बहुत सारी, एक तो फ्राइडे वैसे ही मेरा फेवरेट डे ऑफ द वीक है, और दूसरा ये कि फ्राइडे को 3 बजे से 4:30 तक आता है किड्स जंक्शन. बच्चा पार्टी रेडी हो जाइए. आई एम गोइंग टू टेक योर कॉल्स लाइव, टेक योर रिक्वेस्ट लाइव, एंड विल हैव अ लॉट ऑफ फन विद यू. और ये जो 2:30 से 3 का समा है, यानी कि ये जो 25 मिनट अब है हमारे पास, आधा घंटा 25 मिनट, इसमें होता है मिक्स स्पॉट. कुछ नए गाने और कुछ पुराने गाने मिलाकर आपके लिए प्ले करती हूँ और बनाती हूँ एक प्यारा सा नया और पुराने गानों का गुलदस्ता. सो लेट्स बिगिन. दिस इज मिक्स स्पॉट राइट here on your afternoon drive time with Suneri Kiran.

taken from the movie लूट मार. देवानंद टीना मुनीम हमें इस मूवी में नजर आई जी. और मिक्स पॉट में कुछ नए कुछ पुराने गाने आपके पेश खिदमत होते हैं. और इस जब छाए तेरा जादू से मुझे जो गाना एकदम से जहन में आया आजकल का, वो है श्रिया घोषाल की आवाज का जादू है नशा है. तो उसी को अगला आपके लिए प्ले करूंगी. लेकिन उससे पहले आपको बताती चलूं कि माई टाइम इक्विटी, जिसे सीपीए सुधीर पाई लीड करते हैं, इज अ प्लेस जो इंडिविजुअल्स और फैमिलीज को हेल्प करती है टू बिल्ड स्मार्टर फाइनेंशियल स्ट्रेटजीज थ्रू पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, रियल एस्टेट अपॉर्चुनिटीज या फिर ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स. तो अगर आप लॉन्ग टर्म वेल्थ प्लान कर रहे हैं, या आप रिटायरमेंट प्लानिंग कर रहे हैं, या यू आर इंटरेस्टेड इन ग्रोइंग योर इन्वेस्टमेंट, तो माई टाइम इक्विटी विल यू नो गाइड यू एंड पर्सनलाइज सोल्यूशन आपके लिए क्रिएट करेगी जो आपके गोल्स और आपके कंसर्न के इर्द गिर्द डिजाइन किए जाएंगे. सो गिव देम अ कॉल इफ यू हैव अ क्वेश्चन. देर इज नो हार्म इन गिविंग देम अ कॉल एंड डिस्कसिंग व्हाट यू आर थिंकिंग. दैट नंबर इज 4697021272 इज द नंबर. या फिर आप उनकी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, विच इज माई टाइम इक्विटी .com. दिस इज मिक्सपॉट.

और अगर आप अनफॉर्चुनेटली किसी कार या ट्रक एक्सीडेंट में इन्वॉल्व हैं या फिर देर इज़ अ स्लिप और अ फॉल इंसिडेंट, तो ये सिचुएशन काफ़ी स्ट्रेसफुल हो सकती है जी. यू रियली डोंट वॉन्ट टू डील विद एवरी थिंग योर सेल्फ, जैसे कि पेपर वर्क, लीगैलिटीज, निटिग्रिटीज ऑफ द सिचुएशन. तो हमें मोस्ट ऑफ द टाइम पता ही नहीं होती कि बैकग्राउंड में क्या चल रहा है, और इंश्योरेंस कंपनीज के साथ डील करना और साथ ही साथ अपनी सेहत का ख्याल, अपनी वेलबींग का ख्याल रखना भी आपके लिए ज़रूरी है. तो लेट टेक केयर ऑफ योर self and let attorney Omar Khwaja and his team do the rest for you. Jessica, they will fight your case for you. They will help you get the best compensation that you deserve. Aur jo best part hai sare scenario mein wo ye hai ki aapko kuch pay nahi karna jab tak ki aap is case ko jeet nahi jate. So you don't have to pay anything until you win the case, and that is the best situation here. To agar aap ya anyone you know of is going through something like that, give attorney Omar Khwaja a call for a free consultation. That number is 469-300-5046. उनका नंबर, या फिर आप उनकी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं. दैट इज अटर्नी ओमार, OMAR, attorneyomar.com. तो ये हुआ आपके लिए ये अपडेट, और वापस आते हैं मिक्स पॉट की तरफ. कुछ नए और कुछ गाने, मतलब एक नया गाना प्ले, पुराना गाना प्ले करती हूँ आपके लिए, और फिर उसी से कुछ कोई वर्ड या कुछ लिंक जोड़ के कुछ नया गाना सा प्ले किया जाता है. तो अभी जो गाना मैं आपके लिए प्ले करने लगी हूँ, दैट इज़ वन ऑफ, आई थिंक वन ऑफ ऑल ऑफ आवर्स फेवरेट. दिस इज़ सो ब्यूटिफुल.

पिछले 13 साल से टेक्सास प्राइमरी केयर क्लिनिक प्राउडली केयर कर रहे हैं कम्युनिटी की, और अब दे आर एक्सपैंडिंग, ग्रोइंग विद अ ब्रांड न्यू नेम एंड अ सेकंड फिस्को लोकेशन. इंट्रोड्यूसिंग लिनॉक्सी मेडिकल, LUNOXY. लिनॉक्सी मेडिकल फाउंडेड बाय डॉक्टर संदीप डॉक्टर

केयर कर रहे हैं कम्युनिटी की और अब दे आर एक्सपैंडिंग ग्रोइंग विद अ ब्रांड न्यू नेम एंड अ सेकंड फिस्को लोकेशन इंट्रोड्यूसिंग लोनॉक्सी मेडिकल LUNOXY लोनॉक्सी मेडिकल फाउंडेड बाय डॉक्टर मनदीप आचार्य और आपको यहां पे क्या मिलेगा जी प्राइमरी केयर अर्जेंट केयर इन हाउस लैब टेस्टिंग एक्सरेज सीटी स्कैन्स कार्डियक डायग्नोस्टिक और इस सब के साथ हिमालयन मेड स्पा सर्विसेज भी आपको लोनॉक्सी मेडिकल पे मिलेंगी सो व्हाट यू कैन से एवरीथिंग अंडर वन रूफ सातों के सात दिन हफ्ते के खुले हैं ये ओपन 7 days अ वीक 8 बजे सुबह से शाम 8 बजे तक 8 AM to 8 PM और वॉक इन एनी टाइम यू वॉन्ट देर इज नो अपॉइंटमेंट रिक्वायर्ड तो अपनी सेहत का ख्याल रखिए एंड व्हेन यू आर टेकिंग केयर ऑफ योर हेल्थ लेट लोनॉक्सी मेडिकल डू दैट फॉर यू

0: अच्छा, मैनिफेस्ट करने से पहले थोड़ा दोबारा सोच लो, क्योंकि अब डायमंड्स में मिल रहा है बाय टू गेट वन फ्री ऑफर। तन्मय ज्वेलर्स इन अर्विंग, डायमंड रिंग्स, पेंडेंट्स, इयररिंग्स और ब्राइडल ज्वेलरी पर बाय टू गेट वन फ्री, और वो भी सब कुछ होलसेल प्राइस पर। चाहे प्रपोजल हो, वेडिंग हो या बस अपनी स्पार्कल अपग्रेड करनी हो, अब शाइन डबल विद इन बजट। लग्जरी ब्रिलियंस सेलिब्रेशन, तन्मय ज्वेलर्स इन अर्विंग।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: लाइफ हो या हेल्थ, कब क्या हो जाए पता नहीं। 13 साल तक टेक्सस प्राइमरी केयर क्लिनिक ने जीता आपका ट्रस्ट, और अब वही ट्रस्टेड केयर अर्जेंट केयर सर्विसेज के साथ नए काइज़रवे लोकेशन पर। लुनॉक्सी मेडिकल, फाउंडेड बाय डॉक्टर मनदीप आचार्य, एडल्ट और बच्चों के लिए प्राइमरी केयर, अर्जेंट केयर, एक्सरे, सीटी स्कैन, हार्ट टेस्टिंग और मेड स्पा, सब कुछ एक ही रूफ के नीचे। लुनॉक्सी मेडिकल अर्जेंट केयर, ओपन 7 days a week, 8 AM to 8 PM, walk in anytime, 9191 Kaiser Way, Suite 205, Frisco.
3: Breaking news! Home loan ya refinance ab aur bhi aasan. MyFamilyHomeLoan.com deta hai transparent pricing, no hidden fees, no surprises. Aur haan, sabse badi khabar, unka AI powered platform real time rates compare karta hai taki aapko mile better deals and faster approvals. 15,000 plus Google reviews, hazaron families ka bharosa. Visit MyFamilyHomeLoan.com or call 469-734-3338. 469-734-3338. MyFamilyHomeLoan.com is powered by Loan Factory. NMLS 2025289. Licensed mortgage broker in Texas. All loans subject to credit approval. Equal housing lender.
0: सुनो, कल बहुत काम है। पहले ग्रोसरी, फिर पूजा का सामान, गिफ्ट्स भी खरीदने, और इन सब कुछ के बाद मैं कुकिंग नहीं करने वाली। कहीं अच्छा सा डिनर करके आएंगे।
2: और ये सब कुछ अगर एक ही जगह हो जाए तो?
4: कहाँ? फूडिस्तान इन ऑबरी। फ्रेश ग्रोसरी, हलाल मीट, पूजा एसेंशियल्स, लाइव पानीपुरी, केटरिंग सर्विसेज, प्लस लोएस्ट प्राइस मैच गारंटी। And inside Foodistan, enjoy the premium Indian cuisine at D-Vibe, an upscale restaurant for the perfect family dinner.
5: Foodistan in Aubrey. Mention Fun Asia and enjoy 10% discount.
6: Immigration is a serious concern for our community, and when you are filing your case, you want a firm which is exclusively devoted to immigration law, like the law offices of Seema Mehta. From simple to highly complex cases, attorney Seema Mehta and her team are dedicated to managing them successfully. Whether it is for an immigrant visa or non-immigrant visa, family, employment or investment visa, perm labor certification or citizenships, they do it all. Call 214-432-2499 or email at info@seemamehtalawfirm.com.
7: Hey Maps, take me to my Desi grocery store.
8: Calculating route, rerouting.
7: अरे ये क्या, मुझे मेरे वाले ग्रोसरी स्टोर में जाना है।
8: Location upgraded. Now heading to India Bazaar, Fort Worth.
7: क्यों?
8: क्योंकि Fort Worth, Keller, Hazlitt और Hearst के स्मार्ट लोग जानते हैं। डेली ग्रोसरीज हो या पूजा essentials, authentic Indian products और घर की हर जरूरत। Find everything Desi at India Bazaar in Fort Worth.
7: अच्छा, तो सीधा वही ले चलो।
9: इंडिया बाजार एट 5152 क्वाड्रेंट वे, फोर्ट वर्थ। स्विच द रूट,
8: योर न्यू डेस्टिनेशन हैज अराइव्ड।
10: आई एम सो स्ट्रेस्ड, क्रेडिट कार्ड बिल्स, अनसिक्योर्ड डेट्स, व्हाट आर वी गोइंग टू डू?
11: कुछ भी नहीं, उरा डेट रिलीफ विल डू इट फॉर अस।
10: क्या मतलब?
11: उरा कैन हेल्प अस सेव अप टू 50% ऑन आवर टोटल डेट, एंड द रेस्ट वी पे इन इजी मंथली इंस्टॉलमेंट्स।
10: बट व्हाट इफ इट डजंट वर्क? We cannot afford to lose more money. हम खुद ही मैनेज कर लेंगे।
11: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
10: अब तो करना ही पड़ेगा मैडम।
12: Don't let debt ruin your life. Visit ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
13: Weekend ka plan abhi tak nahi bana? Bas 90 minutes north of Dallas, Choctaw Casino and Resort, Durant mein har visit ban jata hai ek winning experience. Poker ho ya blackjack, exciting slots ho ya phir 20 amazing restaurants mein zabardast dining. Aur agar break chahiye to luxurious sky tower aur relaxing spa aapka intezar kar rahe hain. To sirf lucky feel mat kijiye, lucky ban jaiye. Choctaw Casino and Resort, Durant, entertainment, luxury or excitement, sab ek hi destination mein. Please play responsibly. Must be 21 years or older to game.
14: Jud jao apni dharti se, desiyon ka sachcha radio channel, Fun Asia 104.9 FM.

0: जी हाँ जी, डायमंड्स जो हैं वो कहते हैं ना, दे आर फॉर एवर, बट दे आर नॉट जस्ट फॉर एवर, दे आर इवन मोर इरेजिस्टिबल जब वो आप खरीदते हैं तनिष्क के फेस्टिवल ऑफ डायमंड्स से. जी हाँ, एंजॉय अप टू 25% ऑफ ऑन डायमंड वैल्यू एंड मेकिंग चार्जेस, प्लस 0% डिडक्शन होगा ऑन द एक्सचेंज ऑफ ओल्ड गोल्ड अबव 18 कैरेट. सो ब्रिलियंट डील लगी हुई है जी तनिष्क फेस्टिवल ऑफ डायमंड्स में. आप इस डील को जरूर अवेल कीजिए. वंस अगेन, 25% ऑफ ऑन डायमंड वैल्यू एंड मेकिंग चार्जेस एंड 0% डिडक्शन ऑन द एक्सचेंज ऑफ ओल्ड गोल्ड अबव 18 कैरेट. सेलिब्रेट कीजिए इस सीजन को विद टाइमलेस स्पार्कल एट तनिष्क ज्वेलर्स. टर्म्स एंड कंडीशंस डू अप्लाई. सो जाइए, जरूर पता कीजिए. तनिष्क ज्वेलर्स जो हैं वो लोकेटेड हैं जी फ्रिस्को में. सो विजिट तनिष्क एंड चेक आउट व्हाट दे हैव टू ऑफर. अच्छा, इसी के साथ हम बढ़ रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ. ब्रेक से वापस आकर आई विल स्टिल बी टेकिंग योर रिक्वेस्ट. यू कैन गिव मी अ कॉल एंड रिक्वेस्ट एनी सॉन्ग दैट यूड लाइक. इट हैज़ टू बी अ हिंदी और अ बॉलीवुड सॉन्ग. दैट इज माई ओनली रिक्वेस्ट. एंड फ्रॉम 4 PM टिल 4:30 वी विल हैव आवर समर RJ in the studio with me. Stay tuned.
1: One mistake doesn't have to define your future. A DWI or DUI charge can bring serious consequences, including license suspension, fines, and even jail time. But you don't have to face it alone. At Mathur Law Offices PC, we provide experienced legal representation in criminal defense matters, including DWI cases.
2: We also assist with related legal issues, including immigration consequences that may arise from criminal charges. Every case is different. The right legal strategy depends on your specific facts and circumstances. Call 214-378-8880. Mathur Law Offices PC. Right advice, right defense.
3: Paid spokesperson. Principal Office, Dallas, Texas.
4: भूख लगी है या बस कुछ एक्सेप्शनल खाना है?
5: स्ट्रीट स्टाइल चाट्स, रिच अवधि फ्लेवर्स एंड दैट क्लासिक बटर चिकन यू कीप गोइंग बैक टू. ऑल अंडर वन रूफ एट Page 3 Eatery. ऑनेस्टली, ये सिर्फ खाना नहीं है, इट्स व्हाट योर मूड इज एक्चुअली क्रेविंग.
6: A quick bite, a perfect lunch ambience, and an evening that just flows into the night. You don't go just anywhere. You go to Page 3, Hub 121 McKinney.
7: Are you seeking clarity in life? Wondering what destiny has in store for you?
8: हर समस्या का हल है एस्ट्रोलॉजर ईश्वर के पास. 400 साल की फैमिली विजडम के साथ वर्ल्ड फेमस एस्ट्रोलॉजर अब डैलस में.
7: दैट मैजिक रिमूवल हो, लव एंड रिलेशनशिप इश्यूज हो, गेट ट्रस्टेड सॉल्यूशंस विद 100% प्राइवेसी.
8: थाउजेंड्स की लाइफ बदली उनकी डिवाइन गाइडेंस से. नाउ इट्स योर टर्न. समस्या का पक्का समाधान, एस्ट्रोलॉजर ईश्वर. कॉल नाउ 9455270897 और विजिट astrologerishwar.com.
9: Party is on everyone's mind at the moment in Dallas, cause the hottest destination to party with your tribe is in town. Mirage Lounge, a premium lounge offering hookahs, bites, crafted cocktails and live music and DJ nights. And guess what? A happy hour from 11 AM to 5 PM Monday to Thursday with hookahs at $15.99 and shots at $4.99 each. Plus, ladies' night and college nights bhi.
10: Visit Mirage Lounge at McKinney Ranch Parkway, cause miracles happen in Mirage.
11: जीत उनकी होती है जिनकी नजर सिर्फ टारगेट पर होती है. चाहे ओलंपिक स्टाइल आर्चरी हो या 10 मीटर्स इंडोर प्रिसिजन शूटिंग, फोकस, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी. फ्रिस्को प्रिसिजन स्पोर्ट्स एकेडमी, वन एंड ओनली इन नॉर्थ डैलस. फ्रॉम बिगिनर टू कंपेटिटिव एथलीट्स, स्ट्रक्चर्ड कोचिंग, एक्सपर्ट गाइडेंस एंड परफॉर्मेंस ड्रिवन ट्रेनिंग एजेस 8 एंड अबव.
12: फ्रिस्को प्रिसिजन स्पोर्ट्स एकेडमी पावर्ड बाय अर्जुन आर्चरी एकेडमी, कन्वीनिएंटली लोकेटेड ऑन क्वाइट रोड इन फ्रिस्को. विजिट friscoprecisionsports.com और कॉल 469-333-1099.
13: Mention Fun Asia and get 50% off on tryout session.
14: Ocho.
15: Hoko.
14: Ocho.
15: Hoko.
14: Ocho.
15: It's Hoko.
16: अरे बस भी करो यार.
15: अरे नया रेस्टोरेंट है पर नाम समझ ही नहीं आ रहा है.
16: नाम होको हो या होचो क्या फर्क पड़ता है? एक बार वहाँ के लेजेंडरी चना पूरी, आइकॉनिक सैंडविचेस, डिलीशियस करीज, चाट्स और फेमस कोल्ड कोको टेस्ट करोगे ना, फिर नाम नहीं सिर्फ टेस्ट याद रहेगा.
17: इंडिया के सबसे लव्ड फूड ब्रांड्स में से एक होको अब फ्रिस्को में. वही आइकॉनिक फ्लेवर्स, वही अनफॉरगेटेबल टेस्ट एंड वेरिएड केटरिंग ऑप्शंस. टेस्ट इंडिया, रीलिव मेमोरीज.

This part of our show is proudly brought to you by AG FinTechs, one of the fastest growing tax firms and accounting firms in the USG. And aapko bataye, chahe aap individual hain ya aapka apna startup hai ya phir aap ek established business chalate hain, AG FinTechs offer karta hai aapko innovative financial solutions jo ki aapki requirements aur needs ke ird gird tailor kiya jata hai. Bookkeeping ho, payroll accounting ho, bank and credit card reconciliations ho, ya phir tax planning, tax compliance, financial reporting, या फिर बिजनेस एडवाइजरी सर्विसेज, हर चीज आपको एजी फिनटेक्स पे मिलेगी. दे हेल्प यू कीप ऑर्गेनाइज्ड योर फाइनेंसेस ऑर्गेनाइज्ड कंप्लायंट एज वेल एज फ्यूचर रेडी. तो जरूर आप एजी फिनटेक्स से कांटेक्ट कीजिए. मेक देम योर पार्टनर इन बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्गर फाइनेंशियल फ्यूचर. गिव देम अ कॉल 4699429888 या फिर आप उनकी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं विच इज agfintechs.com. You're tuned into Kids Junction right here on your afternoon drive time.

Drop it. और अगर आप भी कोई ऐसा ही स्वैग ढूंढ रहे हैं वेयर ज्वेलरी इज कंसर्न, तो फिर मालाबार गोल्ड एंड डायमंड से बेहतर जगह नहीं हो सकती. तो ब्रिंग दैट स्वैग इन योर लाइफ. दे आर लोकेटेड ऑन प्रेस्टन रोड इन फ्रिस्को. दिस इज अ प्लेस फॉर स्टनिंग डायमंड ज्वेलरी जो कि एलिगेंट है, टाइमलेस है. दे आर क्राफ्टेड टू शाइन एंड दे हैव अनमैच्ड क्राफ्ट्समैनशिप एंड ब्रिलियंस. मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स. रिंग्स आपको चाहिए, एयर रिंग्स टू डार्जलिंग नेकलेसेस, कंटेम्प्रेरी डायमंड स्टाइल्स आप ढूंढ रहे हैं, कोई भी आपका इवेंट है, दे हैव अ परफेक्ट मैच और अ परफेक्ट पीस फॉर योर इवेंट. वेदर इट्स एंगेजमेंट, एनिवर्सरी, सेलिब्रेशन, या यू जस्ट वांट टू ट्रीट योर सेल्फ और ट्रीट योर लव्ड वन. सो डोंट फॉरगेट, गो टू मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स लोकेटेड इन फ्रिस्को. एंड इफ यू हैवंट डन सो येट, गो टू योर एप स्टोर एंड डाउनलोड द मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की मोबाइल ऐप, बिकॉज दिस इज अ प्लेस वेयर यू विल फाइंड the latest collections, updates and so much more that happens at Malabar Gold and Diamonds. Isi ke saath agla gana, usse pehle aapko phir batati chalun, 4 PM till 4:30 PM I will be having our next summer RJ in the studio. And jis tarah ki demand aa rahi hai, I'm thinking of extending this to our regular chiller party every day, every Friday that we will have in our studio, depending upon if you guys are interested. So aaj jab hamari video post hogi social media pe chiller party ki, to zarur mujhe usme niche comments karke batayega ki do you want to extend it to after summer program as well, and we can just call it chill party and somebody can come in the studio every Friday from 4 till 4:30 PM and co-host that segment with Suneri Kiran.

0: The Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
3: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show sunata, and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land. Oh, harap, ye $1 million property bhi.
4: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
5: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com.
6: Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, Division of Brazos National Bank.
7: Coughing or sneezing at home? Your air ducts may be to blame. And clogged dry vents can even cause fires. Duct Time removes dust, pollen, allergens and lint, giving you cleaner air, better health, energy savings and peace of mind. Serving the DFW area and 15 plus years of experience with CSIA certified technicians and free estimates. Fun Asia listeners get $100 off duct cleaning plus free dryer vent cleaning and sanitizer with service. Call Jeetu Patel at 972-877-2500 or visit callducttime.com. Breathe easy, live safe with Duct Time.
8: Craving delicious Indo-Chinese and North Indian food? Red Hot Chili Pepper is the place to go. With locations in Frisco, McKinney, Richardson and now our newest location in Allen at Waters and 121. Whether you're dining in, taking out or catering, Red Hot Chili Pepper is Dallas's number one choice for Indo-Chinese and North Indian cuisine.
9: जिंदगी एक रंगमंच है
10: और घर ढूंढना सिर्फ इंटरवल. असली क्लाइमेक्स तो तब है जब क्लोजिंग स्मूथ हो, पेपर वर्क क्लियर हो और चाबी आपके हाथ में हो. पर्दा गिरने से पहले फर्स्ट यूनाइटेड टेक्सास टाइटल. हम पक्का करते हैं कि घर सच में आपका हो, हर कदम आपके साथ.
11: कॉल 972-897-1530 firstunitedtexastitle.com.
12: यार बॉस ने फिर से डांट दिया. ट्रैफिक अलग और ऊपर से स्ट्रेस.
13: अरे रिलैक्स, यू नीड अ कूल थेरेपी.
12: थेरेपी? वो तो बहुत महंगी है.
13: नहीं, कूल मतलब कूल चा थेरेपी.
12: ये क्या होता?
13: सिंपल, चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस इन एलन.
14: चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस सर्विंग सम ऑफ द बेस्ट पंजाबी फूड इन डैलस. फ्रॉम बटरी करीज टू ऑथेंटिक पंजाबी स्ट्रीट फूड फेवरेट्स स्ट्रेट फ्रॉम शेफ गगन पन्नू'स किचन. सो नेक्स्ट टाइम लाइफ गेट्स स्ट्रेसफुल, जस्ट टेक अ डोज ऑफ कूल चा थेरेपी एट चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस.
15: एंड नाउ एट अ बिगर लोकेशन जस्ट 3 डोर्स डाउन विद लिमिटेड रिजर्वेशन.
16: इस रक्षाबंधन चौकटा कैसीनो एंड रिसोर्ट ड्यूरांड के साथ सेलिब्रेट कीजिए वो रिश्ता जिसमें नोकझोंक भी है, दोस्ती भी एंड ए लाइफटाइम ऑफ अनफॉरगेटेबल मेमोरीज. अपने भाई या बहन के साथ जुड़ी सबसे यादगार मेमोरी हमें 1 मिनट वॉइस नोट में भेजिए एंड विन एक्साइटिंग डेली प्राइजेस इंक्लूडिंग डाइनिंग एक्सपीरियंसेस, एंटरटेनमेंट, रिसोर्ट स्टेज एंड द ग्रैंड प्राइज एंड अनफॉरगेटेबल सिबलिंग रीयूनियन वीकेंड एट चौकटा कैसीनो एंड रिसोर्ट ड्यूरांड. अपनी स्टोरी व्हाट्सएप कीजिए 2148377147 पर या कॉन्टेस्ट डिटेल्स के लिए विजिट कीजिए फन एशिया रेडियो के सोशल मीडिया पेजेस.
15: चौकटा कैसीनो एंड रिसोर्ट डुरांट, वेयर अनफॉरगेटेबल मेमोरीज आर मेड टुगेदर. मस्ट बी 21 और ओल्डर टू पार्टिसिपेट. टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई. प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली.
17: इन वन मोमेंट एन एक्सीडेंट कैन चेंज everything. When it does, you don't need sympathy, you need strength. Attorney Omar Khwaja, the official injury partner of Fun Asia Network, fights to get you every dollar you deserve. No upfront fees, no empty promises, just results. And if you don't win, hey, you don't pay. Call now for your free consultation at 833-GET-OMAR or visit attorneyomar.com. Omar Khwaja, your legal lifeline.
18: Please don't say your usual place again. I'm tired of the same food.
19: Excuse me. It's called being loyal.
18: It's called being predictable.
19: Okay then. Let me surprise you. Let's go to Neon Cactus in Fairview.
18: And what's so special at Neon Cactus?
19: Went there with my office team last week. Mexican cuisine with global influences. Everything fresh, wonderful flavors, Zabia Halal options, and plenty of great vegetarian choices too.
18: Not bad.
19: Happy hours Monday to Friday and amazing food and drink deals every day.
18: Okay, this I didn't expect from you.
19: Wait till you experience Neon Cactus. Neon Cactus, Fairview. Mexican cuisine with global influences.
11: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
20: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
21: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
22: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
21: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
23: This 15th of August, don't just celebrate Independence Day, celebrate it the Indian way. Join India Association of North Texas's Anand Bazaar 2026 at the Comerica Center in Frisco. Saturday from 2 p.m. onwards, experience a grand Independence Day parade, authentic Indian food, colorful cultural performances, live music, shopping, family fun, and an unforgettable celebration of India's independence. And the best part? It's completely indoors and free for everyone.
24: Sponsorship booth from $3,000 to $50,000 and vendor stalls at $750. Call 214-529-3257.
23: Celebrate India's 80th Independence Day with the entire community. IANT Anand Bazaar 2026 on Saturday the 15th of August.
25: The Dill of Dallas. Heart to Heart. Fun.

0: At Tanishq, no two diamonds are exactly alike. They're beautifully rare, just like the woman who wears them. That's why this is the perfect time to find yours at the Tanishq Festival of Diamonds, with up to 25% off on diamond value and making charges, plus zero deduction on your old gold exchange above 18 carat. Visit Tanishq Dallas at 2809 Preston Road, number 1200, Frisco, 75034 today. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
1: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
2: Kuch bhi nahi. Oora Debt Relief will do it for us.
1: Kya matlab?
2: Oora can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
1: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
2: Oora Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
1: Ab to karna hi padega, madam.
3: Don't let debt ruin your life. Visit Oora.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
4: Hey Maps, take me to my Desi grocery store.
5: Calculating route. Rerouting.
4: अरे ये क्या, मुझे मेरे वाले ग्रोसरी स्टोर में जाना है.
5: लोकेशन अपग्रेडेड, नाउ हेडिंग टू इंडिया बाजार फोर्ट वर्थ.
4: क्यों?
5: क्योंकि फोर्ट वर्थ केलर हैसलेट और हर्स्ट के स्मार्ट लोग जानते हैं. डेली ग्रोसरीज हो या पूजा एसेंशियल्स, ऑथेंटिक इंडियन प्रोडक्ट्स और घर की हर जरूरत. फाइंड एवरीथिंग देसी एट इंडिया बाजार इन फोर्ट वर्थ.
4: अच्छा तो सीधा वही ले चलो.
6: इंडिया बाजार एट 5152 क्वाड्रेंट वे फोर्ट वर्थ. स्विच द रूट.
5: योर न्यू डेस्टिनेशन हैज अराइव्ड.
7: फिल्मों का मजा एक्शन ड्रामा और रोमांस में है, और खाने का मजा हर फ्लेवर के जबरदस्त परफॉर्मेंस में.
8: कभी चटपटा सा ट्विस्ट, कभी तीखा सा किक, कभी मीठा सा सुकून.
7: जहां हर फ्लेवर करे फुल ऑन एंटरटेन. द फ्लेवर लाउंज.
8: पापड़ी चाट से मालपुआ रबड़ी तक, हर डिश में मिले जिंदगी के फ्लेवर्स का असली स्वाद. विजिट देयर न्यू वेबसाइट or download the Flavor Lounge app for exclusive deals. The Flavor Lounge, har bhai super hit.
9: Restaurant choose karna ho? Google Reviews. Hotel book karna ho? Google Reviews. Lekin bachcho ke doctor ki jab baat aaye to ek hi review sabse important hota hai. Maa ka review.
10: Isliye Dr. Farhad has been recognized as a DFW Child Mom Approved Pediatrician for 4 consecutive years, 2023 through 2026. Meet Dr. Nishat Farhad at Passion Health Pediatrics, serving families at Frisco and Aubrey, starting at the end of August. Passion Health Primary Care, because every healthy smile begins with trusted care. Call 214-666-6259 and schedule your appointments today.
11: जीनी, हुकम मेरे आका, हम आज पार्टी के मूड में हैं. एक ऐसी जगह बताओ जहां मेरी एंट्री ही रॉयल हो.
12: मिराज लाउंज चलिए मेरे आका. लग्जरी लिमोजीन राइड्स आपके इंतजार में हैं.
13: मुझे ज्यादा क्राउड पसंद नहीं.
12: नो प्रॉब्लम आका, लग्जरी प्राइवेट स्पेस भी हाजिर है आपकी प्राइवेट पार्टी के लिए.
13: और एंटरटेनमेंट,
12: मूवी नाइट, बेली डांसिंग नाइट्स, प्रीमियम हुकर्स और अमेजिंग वाइब्स सब आपकी खिदमत में.
13: वाह जीनी, ये जगह है या कोई जादू?
12: जादू नहीं, मिराज लाउंज एट मिकिनी रेंज पार्कवे. मिरेकल्स हैपन इन मिराज.
14: उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा, ये बॉक्सेस उठा ले रे.
15: अरे बॉक्सेस उठाने के लिए बाबा को नहीं, स्मार्ट लोग SFL वर्ल्ड वाइड को बुलाते हैं.
14: अच्छा, सिर्फ डॉक्यूमेंट्स भेजने हो तो?
15: डॉक्यूमेंट्स, बॉक्सेस, पूरा घर रिलोकेशन, इवन कार ट्रांसपोर्ट.
14: इंडिया तक?
15: सिर्फ इंडिया नहीं, विद इन USA और वर्ल्ड वाइड. कम्प्लीट डोर टू डोर शिपिंग एंड मूविंग सर्विसेज.
10: SFL वर्ल्ड वाइड, घर हो, गाड़ी हो या जिंदगी का नेक्स्ट मूव, सब सेफली पहुँचता है. विजिट SFLWorldwide.com और कॉल 1-800-691-2335.
16: मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूंगी, वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय कर दो.
17: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
10: अब करेगा, बिकॉज इंडियन अटायर फ्रिस्को समर सेल इज ऑन. स्टनिंग लहंगास, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी, मेंस एंड किड्स वेयर.
18: वेट, इतना सब और प्राइस?
10: अप टू 25% ऑफ ऑन लहंगास एंड ब्राइडल कलेक्शन समर सेल थ्रू द एंड ऑफ ऑगस्ट, ओनली एट इंडियन अटायर फ्रिस्को. ट्रेडिशनल हो या फ्यूजन, अब हर आउटफिट बोलेगा
19: मैं ही.
20: Give your children the gift of spiritual grounding and cultural identity through Chinmaya Mission's Balavihar program. Families can choose from 3 convenient locations. Chinmaya Mission also offers a variety of enriching programs, including Gita chanting, shlokathon, satsangs for adults, festival celebrations, cultural activities, and language classes. Registration for Balavihar is now open. Visit cmdfw.org for complete details. Hari Om.
19: कितने आदमी थे?
21: सर का पूरा डेलिस फनीशिया सुनता है।

जी हाँ, और आपको बताऊं जी, रक्षाबंधन आ रहा है, एंड इफ योर दिल गोज टू योर ब्रदर और सिस्टर, तो फन एशिया रेडियो एंड चौकटाव कैसीनो एंड रिजॉर्ट ड्यूरेंट वांट्स टू हेयर दैट स्टोरी, द मोस्ट अनफॉरगेटेबल मेमोरी विद योर ब्रदर और सिस्टर. एंड क्या होगा इससे, यू विल बी एबल टू विन एक्साइटिंग डेली प्राइजेस विच इंक्लूड्स डाइनिंग एक्सपीरियंसेस, एंटरटेनमेंट, रिजॉर्ट स्टेज, एंड दे विल ऑल्सो बी अ ग्रैंड प्राइज विच विल बी एन unforgettable sibling reunion weekend at Choctaw Casino and Resort in Durant. तो आपको करना क्या है, ये जो स्टोरी है आपकी, अनफॉरगेटेबल मेमोरी है आपकी विद योर ब्रदर और सिस्टर, यू हैव टू रिकॉर्ड अ 1 मिनट वॉइस नोट एंड व्हाट्सएप इट एट दिस नंबर. नंबर नोट कीजिए 214-837-7147. 214-837-7147 पे व्हाट्सएप कीजिए 1 मिनट का वॉइस नोट अबाउट योर मोस्ट अनफॉरगेटेबल मेमोरी विद योर ब्रदर और सिस्टर, एंड यू कैन विन एक्साइटिंग डेली प्राइजेस एज वेल एज द ग्रैंड प्राइज. कंप्लीट कॉन्टेस्ट डिटेल्स के लिए फन एशिया रेडियो के सोशल मीडिया पेजेस को फॉलो कीजिए और चेकआउट कीजिए कि व्हाट इन्फॉर्मेशन इज लाइंड अप फॉर यू. बताती चलूं आपको, चौकटाव कैसीनो एंड रिजॉर्ट लोकेटेड इन ड्यूरेंट, दिस इज द प्लेस वेयर यू मेक अनफॉरगेटेबल मेमोरीज, एंड यू मस्ट बी 21 ईयर्स और ओल्ड to participate in this contest. Terms and conditions apply. Please play responsibly.

और इसी के साथ आपको करेंसी अपडेट देते चलें जी. आज जुलाई द 31st, इस वक्त यूएस डॉलर कहां स्टैंड कर रहा है अकॉर्डिंग टू xrates.com. यूरो ट्रेड कर रहा है 0.86 पे. ब्रिटिश पाउंड इज ट्रेडिंग एट 0.74. इंडियन रुपी 95.40 पे स्टैंड कर रहा है. पाकिस्तानी रुपी 277.20 पे ट्रेड कर रहा है, जबकि नेपाली रुपी 152.72 पे स्टैंड कर रहा है. कनेडियन डॉलर 1.40, जबकि बांग्लादेशी टका 123.31 बांग्लादेशी टका इज ट्रेडिंग फॉर 1 US डॉलर.

और इसी के साथ आपको गोल्ड प्राइस अपडेट भी देते चले जी. अकॉर्डिंग टू गोल्ड प्राइस डॉट ऑर्ग राइट नाउ दैट इज 4:48 PM गोल्ड प्राइस पर आउंस इज $4,043.36 जबकि एक ग्राम सोने की कीमत इस वक्त है $130. कल की निस्बत एक ग्राम सोने की कीमत में $1.85 की कमी हुई जबकि एक आउंस सोने की कीमत में $57.75 की कमी देखने में मिली. But that is pretty much all that I have for you where your finance matters right here on Sunehri Kiran. After we come back from this song, I will share with you the traffic update.

जी हाँ, कुछ ऐसे चार कदम ही आपको चलने हैं। कहाँ तक जाना है वो मैं आपको बता देती हूँ। जाना है आपको टेक्सास ट्रस्ट सीयू थिएटर, जो कि ग्रैंड प्रेरी में, थोड़े चार कदम से ज़्यादा। लेकिन क्यों जाना है? क्योंकि प्रभु देवा द माइकल जैक्सन ऑफ इंडिया आ रहे हैं आपके लिए लाइव। मथांगी एंटरटेनमेंट ग्रुप इज प्राउडली ब्रिंगिंग हिम एज वेल एज लॉरेन गॉटलिप, सोनल बहादुरिया, एलेक्जेंडर नोयल, हारिनी, नताशा शर्पा एज वेल एज सानवी मेघना। बहुत ही ब्रिलियंट, इतने सारे बेहतरीन डांसर्स जब एक जगह जमा होंगे तो क्या बनेगा? अल्टीमेट पैन इंडियन डांस कॉन्सर्ट। और क्या होगा समा, ये देखने के लिए आपको इस इवेंट में जरूर जाना होगा। अगस्त 1 यानी कि कल है जी, सैटरडे अगस्त 1 को एट टेक्सास ट्रस्ट यूथ थिएटर इन ग्रैंड प्रेरी। अगर आपने अब तक अपने टिकट्स बुक नहीं किए तो नो प्रॉब्लम एट ऑल, ये नंबर लीजिए और इस नंबर पर कॉल करके अपने टिकट्स बुक कराइए। दैट नंबर इज 248-233-3828, 248-233-3828 इज द नंबर। फन एशिया इज द प्राउड मीडिया पार्टनर। हमारे फन एशिया के जो नेटवर्क के सोशल मीडिया पेजेस हैं उन पे जाइए, हमने पिन की हुई है पोस्ट, हाउ टू मेक इट इजी फॉर यू टू बाय द टिकट्स फॉर दिस इवेंट। सो डोंट मिस इट, इट इज हैपनिंग फॉर यू टुमारो सैटरडे अगस्त 1 एट टेक्सास ट्रस्ट सीयू थिएटर ग्रैंड प्रेरी। सो वी विल सी यू देयर, एंजॉय द डांस शो। एंड इट इज टाइम फॉर मी टू टेक अ रैप फ्रॉम हियर, राइट हियर इन द स्टूडियोज ऑफ फन एशिया। और कल मिलूंगी आपसे अब मंडे को 2:30 से 5 बजे तक एक बार फिर। और तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। हैव अ लवली लवली रेस्ट ऑफ योर वीकेंड।

0: मिल जाए कोई चोरी काली हो जाए गोरी.
1: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
2: Official tax and finance partner, AG FinTax.
1: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: In association with Passion Health Primary Care.
3: Fun Asia 104.9 FM. Turn up the volume.
4: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
5: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show suna tha, and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land, or up ye $1 million property bhi.
6: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
7: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com.
8: Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, Division of Brazos National Bank.
9: Moments don't fade. They echo like a melody that never leaves you. And in those moments, what you wear becomes a part of that melody. One of the most trusted jewelers with over 40 stores in India is now in Dallas. PMJ Jewels. Timeless craftsmanship, unmatched elegance, and stunning bridal collections. Now in Main Street, Frisco. PMJ Jewels. India's finest, Dallas's newest.
10: Call 857-891-8942 today.
11: इस रक्षाबंधन चौकटा कैसीनो एंड रिसोर्ट ड्यूरांड के साथ सेलिब्रेट कीजिए वो रिश्ता जिसमें नोकझोंक भी है, दोस्ती भी एंड ए लाइफ टाइम ऑफ अनफॉरगेटेबल मेमोरीज. अपने भाई या बहन के साथ जुड़ी सबसे यादगार मेमोरी हमें 1 मिनट वॉइस नोट में भेजिए एंड विन एक्साइटिंग डेली प्राइजेस इंक्लूडिंग डाइनिंग एक्सपीरियंसेस, एंटरटेनमेंट, रिजॉर्ट स्टेज एंड द ग्रैंड प्राइज एंड अनफॉरगेटेबल सिबलिंग रीयूनियन वीकेंड एट चौकटा कैसीनो एंड रिसोर्ट ड्यूरांड. अपनी स्टोरी व्हाट्सएप कीजिए 214-837-7147 पर या कॉन्टेस्ट डिटेल्स के लिए विजिट कीजिए फाइनेंशियल रेडियो के सोशल मीडिया पेजेस.
10: चौक टॉक कैसीनो एंड रिसॉर्ट डुरांट, वेयर अनफॉरगेटेबल मेमोरीज आर मेड टुगेदर. मस्ट बी 21 और ओल्डर टू पार्टिसिपेट. टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई. प्लीज प्ले रिस्पांसिबली.
12: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है.
13: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स. मान्यवर मोहे लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग.
14: अरे यार, घर मिल गया.
15: घर तो देख रहा हूँ, लेकिन इट्स हार्ड टू फाइंड अ रियल्टर हु ऑफर्स ग्रेट सर्विस एंड ऑल्सो कैशबैक एट क्लोजिंग.
13: इसलिए कॉल करो अजय प्रभु ऑफ बीम रियल एस्टेट. अजय इज एन एक्सपीरियंस्ड रियल्टर. वो सिर्फ घर नहीं दिखाते, हर प्रॉपर्टी का ऑनेस्ट रिव्यू देते हैं, प्रोज एंड कॉन्स समझाते हैं, बेस्ट प्राइस नेगोशिएट करते हैं, बिल्डर इंसेंटिव दिलवाते हैं और क्लोजिंग पर कैशबैक भी.
15: सीरियसली, अच्छे सर्विस भी और कैशबैक भी?
13: बिल्कुल. विजिट ajayprabhu.com एंड सी व्हाई सो मेनी पीपल आर रेविंग अबाउट हिम.
16: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना.
13: लाइफ हो या हेल्थ, कब क्या हो जाए पता नहीं. 13 साल तक टेक्सास प्राइमरी केयर क्लिनिक ने जीता आपका ट्रस्ट और अब वही ट्रस्टेड केयर अर्जेंट केयर सर्विसेज के साथ नए काइजरवे लोकेशन पर. लुनॉक्सी मेडिकल फाउंडेड बाय डॉक्टर मनदीप आचार्य. एडल्ट्स और बच्चों के लिए प्राइमरी केयर, अर्जेंट केयर, एक्सरे, सीटी स्कैन, हार्ट टेस्टिंग और मेड स्पा, सब कुछ एक ही रूफ के नीचे. लुनॉक्सी मेडिकल अर्जेंट केयर ओपन 7 days a week, 8 a.m. to 8 p.m. Walk in anytime. 9191 Kaiser Way, Suite 205, Frisco.
16: Heere moti, main na chahu.
17: Achha, manifest karne se pehle thoda dubara soch lo. Kyunki ab diamonds mein mil raha hai buy 2 get 1 free offer. Tanmay Jewelers in Irving. Diamond rings, pendants, earrings aur bridal jewelry par buy 2 get 1 free. और वो भी सब कुछ होलसेल प्राइस पर. चाहे प्रपोजल हो, वेडिंग हो या बस अपनी स्पार्कल अपग्रेड करनी हो, अब शाइन डबल विद इन बजट. लग्जरी ब्रिलियंस सेलिब्रेशन. तन्मय ज्वेलर्स इन अविंग.
18: If you or your family member is involved in a truck accident, here's what you must do. First, ensure everyone's safety. Next, gather as much information as possible. Make sure you take great photos talk to any witnesses that may have seen the accident and ensure that you document all of the information for the truck driver and company. Truck accidents often lead to serious injuries, so don't deal with it alone. Call Attorney Omar at 833-GET-OMAR or visit us online at attorneyomar.com. When it comes to representing your case, our goal is simple. We want you to receive the maximum amount of money you deserve.
14: अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है।
19: पनवेल हो या डेलस, सफर तभी मस्त जब गाने हो जबरदस्त। ओनली ऑन फन एशिया रेडियो।

यहाँ तेरे दिल में छे हम तुम कैन डू विद विदाउट यू हम तुम मेरे दिल पे छे हम तुम व्हाट डू वी डू विदाउट हम तुम जी हाँ क्या कर सकते हैं हम आपके बगैर. थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग हम तुम विद आरजे सोमिल. और जैसा मैंने बताया रहूँगा आपके साथ में आज शाम 8 बजे तक और करूँगा आपका मनोरंजन राइट हियर इन स्टेपिंग इन फॉर योर फेवरेट होस्ट आरजे नवनीता.

जी हाँ, एब्सोल्युटली यू सो परफेक्ट. इनफैक्ट कॉल्स आने शुरू हो गए हैं और रिक्वेस्टों का सिलसिला जारी हो चुका है. इनफैक्ट आई हैवंट इवन ओपन्ड द फोन लाइंस, बट यस, रिक्वेस्टों का सिलसिला मैंने जैसा मैंने बताया शुरू हो चुका है और ज़रूर करूँगा पूरी आपकी रिक्वेस्ट. बट इतना ध्यान रखिए कि यार फ्राइडे शाम है, कोई सैड सॉन्ग वगैरह तो शायद ही नहीं बनेगा. बट आपके पास अगर कोई अच्छा सा गाना हो, सुनना हो आपको कोई अच्छा सा गाना, या फिर किसी को डेडिकेट करना हो, अभी एक रिक्वेस्ट, बहुत ही खूबसूरत रिक्वेस्ट आई जो बजाता हूँ इस गाने के बाद.

जी हाँ, हम आपको परफेक्ट से लेके आ गए, सब मस्त है, बस दम दम मस्त है। चलो लेके चलता हूँ इस गाने से आपको अगली फरमाइश जो मैंने बताई थी आपको, उसकी ओर लेके चलता हूँ। और जनाब ने फरमाइश की, यार मुझे गाने का मूवी का नाम तो पता नहीं बट गाना पता है, अगर आप गाना लगा सकते हो। मैंने बोला कौन सा गाना है बताइए तो सही, मैं लगा दूंगा मूवी का नाम भी साथ में, तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया। मैंने बोला यही है यार, टाइटल ट्रैक है इसका, आपने तो बड़ा गेम खेल दिया। फिर मैंने उनसे पूछा कि यार ये तो बताओ, मैं गाना तो प्ले कर दूंगा बट किसकी बाहों में उलझा, कहाँ उलझा, क्या चल रहा है? तो बोले पोजीशन तो ओपन है यार, कोई अप्लाई अप्लाई नो रिप्लाई चल रहा है आजकल, ड्राई फेस चल रहा है शायद, बट चले कोई नहीं, वहाँ तो मैं कुछ नहीं कर सकता आपके लिए, बट आपका गाना ज़रूर लगा सकता हूँ आपके लिए।

0: Are you looking for a smarter approach to reducing taxes while building and preserving wealth? My Time Equity, a registered investment advisory firm led by CPA Sudhir Pai, offers active portfolio management, structured notes, tax and financial planning, real estate strategies, AI and late-stage pre-IPO opportunities, and other alternative investments. Learn how a personalized strategy can help you pursue your financial goals. Visit mytimeequity.com or call 972-330-2771.
1: My Time Equity is a fee-based registered investment advisory firm. This advertisement is for informational purposes only and does not constitute investment, legal or tax advice. Investing involves risk, including the possible loss of principal.
2: कहाँ गया? कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
3: कौन सा?
2: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है।
3: अरे सारे तो सेम है।
2: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये ये ये देखो ये वाला।
3: ओह हाँ, ये तो अलग है।
1: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो हैं। From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection, now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
4: Are you on F1 visa and looking for mortgage options? Ya aap H1B pe hain and looking options with 5% or 10% or even 3% down. So call kijiye Kamna ko at 214-845-4189 kyunki aapka bharosa hi meri pehchan hai. NMLS 926641.
5: ड्यूड, लाइफ में कुछ ऐसा करना है जिसमें मैं फ्रंट पेज पे रहूं।
6: फ्रंट पेज का तो पता नहीं, पर तेरा पेज 3 में होना मेरी गारंटी है।
5: कैसे?
6: पेज 3 ईटरी?
5: नो, नॉट अनदर रेस्टोरेंट अगेन।
6: ड्यूड, इट्स पेज 3। स्टार्ट विद द बार, सिग्नेचर कॉकटेल्स, क्लासिक पोर्स एंड द फूड क्राफ्टेड टू सूट एवरी क्रेविंग, एवरी एपेटाइट।
5: मतलब ग्रेट फूड, ग्रेट ड्रिंक्स एंड ग्रेट कंपनी, यानी कि मैं।
7: पेज 3 ईटरी, ईट, सिप, गॉसिप, रिपीट।
8: If you hold H-1B, F-1, L-1 or any other non-immigrant visa status and are considering the path to permanent residency, contact the law offices of Seema Mehta. Attorney Seema Mehta and her dedicated team of professionals can help you attain permanent residency through the EB-5 Investor Program. For more information on the EB-5 Investor Visa Program, please call 214-432-2499 or email at info@seemamehtalawfirm.com.

0: Lawson Travels Cruises. Honeymoons, custom family trips, stress-free travel every mile. Call 214-631-2458 today.
1: Pritesh, kabhi socha hai? Kal agar tum nahi rahe, to mera kya hoga?
2: Arey relax, sab tumhara hi to hai.
1: Sach? Ya phir court decide karega?
2: Wait, what?
0: Yes, agar proper estate plan nahi hai, to aapki family ke decisions court leta hai.
3: Hi, this is Deepti Varma with NRI Wealth. Main families ko help karti hoon, unki mehnat ko protect karne mein. The right way with estate planning.
0: Agar aapke paas sirf will hai ya kuch bhi nahi hai, to ye call delay mat kijiye. Call 669-243-5799. That's 669-243-5799 for a free 15-minute consultation.
4: ये तारा वो तारा हर तारा
0: अरे अरे अरे डैलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं. बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है, तारा कमर्शियल एनर्जी. 2002 से टेक्स के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर. होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस. तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर 2 decades. कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे. तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे.
5: Coughing or sneezing at home, your air ducts may be to blame. And clogged dry vents can even cause fires. Duct Time removes dust, pollen, allergens and lint, giving you cleaner air, better health, energy savings and peace of mind. Serving the DFW area and 15 plus years of experience with CSIA certified technicians and free estimates. Fun Asia listeners get $100 off duct cleaning plus free dryer vent cleaning and sanitizer with service. Call Jeetu Patel at 972-877-2500 or visit callducttime.com. Breathe easy, live safe with Duck Time.
6: Hi, I am Shah Rukh Khan. You are listening to Fun Asia.
7: Welcome, welcome, welcome back, ladies and gentlemen. मैं हूँ आपका होस्ट सौमिल और स्टेपिंग इन फॉर योर फेवरेट आरजे आरजे नवनीता और करूँगा आपका मनोरंजन. बिल कोशिश तो यही रहेगी कि करूँगा आपका मनोरंजन उसी हद तक जिस तरह से नवनीता जी आपका मनोरंजन करती है एवरी फ्राइडे फ्रॉम 5 to 8. चलिए, इस गाने की रिक्वेस्ट आई थी. मैंने बताया था आपको यार कि इससे पहले तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया तो जनाब उलझ गए थे और मैंने पूछा यार किन की बातों में उलझे हो, थोड़ा हमें भी बताओ, हम भी थोड़े सुलझ जाए. और उन्होंने बताया नहीं यार. तो दूसरा कॉल आ गया उसके बाद. उन्होंने बताया, इस जनाब ने बताया कि मैंने पूछा कि आपको भी गाने का नाम, नहीं नहीं गाने का नाम तो पता है बट मूवी का नाम पता नहीं है. मैंने बोला आपकी कौन सी उलझन हम सुलझाए. उन्होंने बताया नहीं, हमारी उलझन उलझन कुछ नहीं है, बस हमको एक अच्छा सा गाना सुनना है. एंड ही पिक्ड अ सॉन्ग दैट इट इज़ क्या बताऊँ मैं, आप तो फॉरएवर एवरग्रीन सॉन्ग. नहीं नहीं, मैं खुद की टिप्पणी नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको गाने का नाम बता रहा हूँ. गाने का नाम ही है अब तो फॉरएवर.

आप तो फॉर एवर टेकन फ्रॉम तारारम पम। आई गॉट अ वेरी क्यूट कॉल एंड मेरे काफ़ी सारे दोस्त हैं जो अंडर टीनेज ईयर्स, सो वेरी क्यूट किड ईथन कॉल्ड मी एंड सेड यू नो व्हाट, सिंस ही डिडंट नो द नेम, सिंस यू डिडंट नो द नेम ऑफ द मूवी, दिस मूवी दिस सॉन्ग इज फ्रॉम द मूवी कॉल्ड तारारम पम। एंड इफ यू हैवंट सीन दैट मूवी, देर इज अ लॉट ऑफ एनिमेशन इन दैट मूवी विद कार्टून्स एंड स्टफ एंड ईथन कॉरेट एंड थैंक यू ईथन फॉर हेल्पिंग मी आउट। एंड मैंने ईथन को पूछा, चलो आप बताइए आपकी उम्र कितनी है, 11 ईयर्स। एंड देन ही मैंने पूछा कि आपको आपके लिए कौन सा गाना बजाऊँ, एंड आई वॉज टाइपिंग इन Alexa or not Alexa, Frozen and all those songs, and then he came up with a very cute request and he said main koi aisa geet gaun, and the way he said it, I mean it is cuteness overload. Listening to his request I thought yaar itni achhi request hai main hi ga leta hu ye gana, par maine socha nahi itni achhi request hai, I don't want to ruin the song for him. Very beautiful song coming from my boss Ethan. Here's the song coming for you.

जी हाँ, मैं कोई ऐसा गीत गाऊं ईशान अगर तुम कहो. व्हाट अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, व्हाट अ ब्यूटीफुल रिक्वेस्ट. एंड आई वाज टॉकिंग टू ही जस्ट मेड माय इवनिंग. एब्सोल्युटली स्टनिंग रिक्वेस्ट, थैंक यू फॉर कॉलिंग इन. मैं बताता हूँ, इससे पहले मैंने बजाया था सॉन्ग अब तो फॉर एवर. वेल, फॉर एवर की बात हुई तो फॉर एवर से ये तो बनता ही है. मैं आपको बताता हूँ व्हाट इज फॉर एवर. वेल, डायमंड्स आर फॉर एवर. एंड डायमंड्स की बात की तो मलाबार की बात तो छिड़ चुकी है, तो मैं बताता हूँ आपको मलाबार के बारे में. इफ यू लुकिंग टू एड अ लिटिल स्पार्कल टू योर स्पेशल मोमेंट्स इन लाइफ विद अ स्पेशल समवन, हेड टू मलाबार गोल्डन डायमंड्स ऑन प्रेस्टन रोड इन फ्रिस्को, जहाँ पे आपको मिलेगा स्टनिंग डायमंड ज्वेलरी दैट्स एलिगेंट, टाइमलेस एंड क्राफ्टेड टू शाइन फॉर एवर. अब तो फॉर एवर, यस. From beautiful rings and earrings to dazzling necklaces and contemporary diamond styles, find the perfect piece for engagements, anniversaries, celebrations, or simply treating yourself or simply treating the special someone in your life. Sometimes diamonds need no occasion and no excuse. Diamonds are, they just are. And experience unmatched craftsmanship and brilliance at Malabar Golden Diamonds in Frisco. Don't forget to download their app. Malabar Golden Diamonds mobile app is available on your Apple Play Store and Apple iOS ecosystem, and you can check out the latest collection updates and get more details, and then you can say up to forever.

0: यहाँ मर मिट जाने के झूमने की बात की है, मर मिट जाने की बात तो रहने ही दो आप। अगर आपके साथ कोई दुर्घटना घटी हो तो मैं आपको बताता हूँ एक अटर्नी का नाम जिसका नाम है ओमर ख्वाजा। इफ़ यू आर एवर इन्वॉल्व्ड इन अ कार एक्सीडेंट, ट्रक एक्सीडेंट, या फिर आपके साथ हुआ हो स्लिप एंड फॉल जहाँ पे आपकी कोई गलती नहीं हुई हो, वेल डू कॉन्टैक्ट अटर्नी ओमर ख्वाजा हु विल फाइट योर केस एंड गेट यू द राइट रिप्रेजेंटेशन एंड द कॉम्पेंसेशन दैट यू राइटफुली डिजर्व। व्हेन यू ऑलरेडी डाउन विद एन एक्सीडेंट और अ फॉल, यू डोंट वांट टू फाइट द केस, यू वांट टू हैव ऑल द रीइन्फोर्समेंट ऑन योर साइड एंड अटर्नी ओमर ख्वाजा विल ब्रिंग दैट फॉर you in your case. Dealing with insurance companies can be very stressful and tricky, and you need an attorney who knows the rules inside out. If you don't know the games of the rule, how do you expect to win? Get someone on your side who knows the rules and can use it in your favor. You don't pay until you win. For a free consultation of your case, you can call his office at 469-300-5046 or you can visit their website attorneyomar.com. So bindas jhumiye, bindas gaiye, but मर मिटने की बात मत कीजिए। अगर आपके साथ कोई दुर्घटना घटी तो कॉल कीजिए अटर्नी ओमर ख्वाजा को। चलिए लेके चलता हूँ आपको ब्रेक की ओर, और ब्रेक के उस पार बहुत सारी अच्छी रिक्वेस्ट आई है। इनफैक्ट अ वेरी ब्यूटीफुल रिक्वेस्ट केम फ्रॉम एन आर्टिस्ट, सो स्टे ट्यून्ड राइट हियर। दिस इज योर होस्ट आरजे सोमल, यू ट्यून टू हम तुम विद आरजे सोमल। फ्राइडे नाइट यू गेट ऑल ऑफ द क्लास, नन ऑफ द बकवास।
1: At Tanishq, no two diamonds are exactly alike. They're beautifully rare, just like the woman who wears them. That's why this is the perfect time to find yours at the Tanishq Festival of Diamonds, with up to 25% off on diamond value and making charges, plus zero deduction on your old gold exchange above 18 carat. Visit Tanishq Dallas at 2809 Preston Road, number 1200, Frisco 75034 today. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
2: Please don't say your usual place again. I'm tired of the same food.
3: Excuse me. It's called being loyal.
2: It's called being predictable.
3: Okay then. Let me surprise you. Let's go to Neon Cactus in Fairview.
2: And what's so special at Neon Cactus?
3: Went there with my office team last week. Mexican cuisine with global influences. Everything fresh, wonderful flavors, Zabia Halal options, and plenty of great vegetarian choices too.
2: Not bad.
3: Happy hours Monday to Friday, and amazing food and drink deals every day.
2: Okay, this I didn't expect from you.
3: Wait till you experience Neon Cactus. Neon Cactus, Fairview, Mexican cuisine with global influences.
4: It's true. Hum apni sadbuddhi se bahut si problems solve kar sakte hain. But sometimes, even the best need a little guidance. With over 400 years of family tradition, through his extensive knowledge of astrology and palm reading, Pandit Ishwarji can help you with any difficulty in your personal or professional life, from relationship issues to negative energy removal. Call the most trusted astrologer, Pandit Ishwarji, 945-527-0897, or visit astrologerishwar.com.
5: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट्स के बिना अधूरी लगती है तो ये खबर आपके लिए। दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स, तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम। चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स। डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्लैंड, वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन।
6: वीकेंड का प्लान अभी तक नहीं बना? बस 90 मिनट्स नॉर्थ ऑफ डैलस, चौकटाउ कैसीनो एंड रिसॉर्ट ड्यूरेंट में हर विजिट बन जाता है एक विनिंग एक्सपीरियंस। पोकर हो या ब्लैक जैक, एक्साइटिंग स्लॉट्स हो या फिर 20 अमेजिंग रेस्टोरेंट्स में जबरदस्त डाइनिंग, और अगर ब्रेक चाहिए तो लग्जूरियस स्काई टावर और रिलैक्सिंग स्पा आपका इंतजार कर रहे हैं। तो सिर्फ लकी फील मत कीजिए, लकी बन जाइए। चौकटाउ कैसीनो एंड रिसॉर्ट ड्यूरेंट, एंटरटेनमेंट, लग्जरी और एक्साइटमेंट सब एक ही डेस्टिनेशन में। प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली, मस्ट बी 21 ईयर्स ओल्ड टू गेम।
7: मेरे कल वाले खाने में डोसा, आने वाले खाने में डोसा।
8: क्या आपको भी हमेशा डोसा की क्रेविंग्स रहती है, या फिर ऑथेंटिक वेज खाने की तलाश? योर सर्च एंड्स हियर।
9: सैन इडली वेजिटेरियन रेस्टोरेंट, 100% प्योर वेजिटेरियन मेड विद फ्रेश ऑथेंटिक फ्लेवर्स, क्रिस्पी डोसास, फ्लफी इडलीज, कंफर्टिंग साउथ इंडियन थाली, और साथ में शहर की बेस्ट फिल्टर कॉफी। फैमिली डिनर्स टू केटरिंग सर्विसेज विद जैन फ्रेंडली ऑप्शंस।
8: विजिट सैन इडली वेज रेस्टोरेंट एट द हाईवे 121 और कस्टर जंक्शन।
10: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
11: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
12: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
13: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
12: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
14: This 15th of August, don't just celebrate Independence Day, celebrate it the Indian way. Join India Association of North Texas's Anand Bazaar 2026 at the Comerica Center in Frisco. Saturday from 2 p.m. onwards, experience a grand Independence Day parade, authentic Indian food, colorful cultural performances, live music, shopping, family fun, and an unforgettable celebration of India's independence. And the best part? It's completely indoors and free for everyone.
15: Sponsorship booth from $3,000 to $50,000 and vendor stalls at $750. Call 214-529-3257.
14: Celebrate India's 80th Independence Day with the entire community. IANT Anand Bazaar 2026 on Saturday the 15th of August, 2 p.m. onwards at the Comerica Center in Frisco.
0: जी हाँ, व्हाट डू वी डू विदाउट हम तुम, वेल यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। एट फिनेशिया वी हैव योर एंटरटेनमेंट गोल्स राइट इन लाइन विद आवर गोल्स। इन फैक्ट दैट्स द रीजन व्हाई वी ब्रिंग यू द बेस्ट दैट इज एन एंटरटेनमेंट। इन फैक्ट हम अक्सर कहा करते हैं आपसे कि एज एन आरजे एट फिनेशिया वी एस्पायर टू एंटरटेन, इन्फॉर्म एंड इंस्पायर यू। बस यही रहती है हमारी कोशिश, और इस कोशिश में आप लोग की रिक्वेस्टों से जो आप जुड़ते हो, माई गुडनेस मजा आ जाता है। वेल आई ऑलवेज से दैट गुड म्यूजिक ट्रांसेंड्स ऑल लैंग्वेजेस, कंट्रीज, कल्चर्स, बाउंड्रीज, ट्रेडिशंस एंड कंपनीज। एंड म्यूजिक तो म्यूजिक होता है यार, म्यूजिक इज अ यूनिवर्सल लैंग्वेज। एंड अभी हमको ब्रेक पे जाने से पहले हमारे बड़े अच्छे कॉलर्स ने कॉल किया और रिक्वेस्ट किया। ही सेड डू यू प्ले आर्टिस्ट सॉन्ग्स? आई सेड इफ द सॉन्ग हैज द बीट दैट कैन मूव आवर फीट, वी एब्सोल्युटली प्ले दैट सॉन्ग। डजंट मैटर व्हिच लैंग्वेज इट इज इन, एज लॉन्ग एज इट्स नॉट यूजिंग वेरी रेसी लैंग्वेज, इट इज एब्सोल्युटली अ फेयर गेम। सो सतीश, हियर कम्स योर सॉन्ग। सतीश इज इन डैलस DFW, आई थिंक ही रिसेंटली मूव्ड टू डैलस, बट हियर कम्स। जमाना है स्नैपचैट का, इंस्टाग्राम का, और Here comes Instamatic Kadla.

0: स्वागत।
1: जी हाँ, स्वैग से करेंगे सबका स्वागत। आई रिमेम्बर दिस सॉन्ग, बिकॉज दिस सॉन्ग वॉज द वन ऑफ द फर्स्ट सॉन्ग्स दैट आई हैड कोरियोग्राफ्ड, एंड आई हैड सो मच फन विद दिस सॉन्ग, एंड वी हैव डांस्ड ऑन सेवरल स्टेजेस थ्रू आउट द मेट्रोप्लेक्स ऑन दिस सॉन्ग। स्वैग से करेंगे सबका स्वागत। द बीट इज अनमिस्टेकेबली एंकरिंग, एंड व्हाट अ ब्यूटीफुल ट्रैक। वेल, दैट वाज विशाल अडलानीज क्रिएशन, विशाल शेखर्स क्रिएशन फ्रॉम टाइगर जिंदा है। यहाँ स्वागत से मुझे याद आया यार, अगर आपको इवेंट कर रहे हो तो बताता हूँ मैं आपको वैनेसा इवेंट्स के बारे में। ऑफकोर्स स्वैग से करोगे आपका स्वागत, बट ऐसा माहौल भी बनाने के लिए आपको कॉल करना पड़ेगा वैनेसा इवेंट्स को। इफ़ यू प्लानिंग अ वेडिंग, ग्रेजुएशन, हाउस वार्मिंग, या कोई स्पेशल सेलिब्रेशन आप सेलिब्रेट कर रहे हो, बिफोर यू स्टार्ट स्ट्रेसिंग अबाउट वेन्यूज, डेकोर, केटरिंग, ये वगैरह वगैरह वगैरह, डू लेट यू नो दैट वैनेसा इवेंट्स कैन टेक केयर ऑफ ऑल दोज थिंग्स फॉर यू। दे मेक प्लानिंग सिंपल बाई ब्रिंगिंग एवरीथिंग टुगेदर इन वन प्लेस, so you focus on the event and the celebrations and not about the logistics behind the event. Swag se karo aap sabka swagat, aur baki sab rehne do Vinasa events ke bharose, and you can call Hari Basera today at 469-442-8770. Let me give you that number again, 469-442-8770. Vinasa events, your celebration partner, so you can focus on the events and aap karo sabke saath swag se sabka swagat, and leave everything else to Vinasa events.

0: is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
3: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show suna tha, and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land, or up ye $1 million property bhi.
4: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
5: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com. Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, Division of Brazos National Bank.
6: Is on everyone's mind at the moment in Dallas, cause the hottest destination to party with your tribe is in town. Mirage Lounge, a premium lounge offering hookahs, bites, crafted cocktails and live music and DJ nights. And guess what? A happy hour from 11 a.m. to 5 p.m. Monday to Thursday with hookahs at $15.99 and shots at $4.99 each. Plus, ladies' night and college nights bhi.
7: Visit Mirage Lounge at McKinney Ranch Parkway. Cause miracles happen in Mirage.
8: Beta, 95% aaye?
9: Haan, mummy.
8: Good. Ab chaliye, papa. Aap apna report card dikhaiye.
10: Mera?
8: Haan. Profit margin, cash flow, tax planning, business goals. Sare accounts updated.
10: Whoa.
11: School ka report card saal mein ek baar aata hai. But business ka report card har mahine. AG FinTax helps you understand profitability, cash flow, tax planning, business growth through bookkeeping and CFO services. Visit agfintax.com. Call 972-618-8555. AG FinTax, led by Forbes Finance Council member Anil Grandhi. Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
12: Ocho.
13: Hoko.
12: Ocho.
13: Hoko.
12: Ocho.
13: It's Hoko.
14: Arey, bas bhi karo yaar.
13: Arey, naya restaurant hai, but naam samajh hi nahi aa raha hai.
6: Naam Hoko ho ya Hocho, kya farak padta hai? Ek baar wahan ke legend. Legendary chana puri, iconic sandwiches, delicious curries, chaats aur famous cold cocoa taste karoge na, phir naam nahi, sirf taste yaad rahega.
11: India ke sabse loved food brands mein se ek, Hoko, ab Frisco mein. Wahi iconic flavors, wahi unforgettable taste and varied catering options. Taste India, relive memories.
15: Jeet unki hoti hai, jinki nazar sirf target par hoti hai. Chahe Olympic style archery ho ya 10 meters indoor precision shooting. Focus, discipline, consistency. Frisco Precision Sports Academy, one and only in North Dallas. From beginner to competitive athletes, structured coaching, expert guidance, and performance driven training, ages 8 and above.
16: Frisco Precision Sports Academy, powered by Arjun Archery Academy, conveniently located on Quiet Road in Frisco. Visit friscoprecisionsports.com or call 469-333-1099.
15: Mention Fun Asia and get 50% off on tryout session.
11: Hey Maps, take me to my Desi grocery store.
17: Calculating route, rerouting.
11: Arey, ye kya? Mujhe mere wale grocery store mein jana hai.
17: Location upgraded. Now heading to India Bazaar, Fort Worth.
11: Kyun?
17: Kyunki Fort Worth, Keller, Hazlitt aur Hearst ke smart log jante hain. Daily groceries ho ya puja essentials, authentic Indian products aur ghar ki har zarurat. Find everything Desi at India Bazaar in Fort Worth.
11: Achha. तो सीधा वही ले चलो
18: इंडिया बाजार एट 5152 क्वाड्रेंट वे फोर्ट वर्थ स्विच द रूट
17: योर न्यू डेस्टिनेशन हैज अराइव्ड
19: ये तारा वो तारा हर तारा
11: अरे अरे अरे डैलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है तारा कमर्शियल एनर्जी 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर होटल्स गैस स्टेशंस वेयरहाउसेस मेडिकल फैसिलिटीज रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस तारा कमर्शियल एनर्जी पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर टू डेकेड्स कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे तारा कमर्शियल एनर्जी जो आपके बिजनेस को रोशन रखे
20: अजी सुनते हो सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे
21: इंडिया में
9: तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं, वो कैसे अटेंड करेंगे?
10: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा।
9: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
10: सच में सब संभालेंगे?
9: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर। वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह। सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
11: कॉल हरी बसेरा ऑन 4694428770. Vanessa Events, your celebration partner.
12: वेलकम वेलकम वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन। आपको फिक्र नहीं करनी पड़ेगी कि व्हाट डू यू विदाउट हम, तुम हम आपको छोड़ के कहीं नहीं जाने वाले। यू गेट द एंटरटेनमेंट राइट हियर 24/7 एट फाइनेंशिया। वेल, दिस इज योर होस्ट आरजे सोमिल। यू ट्यून इन टू हम तुम विद आरजे सोमिल ऑन दिस ब्यूटीफुल फ्राइडे। अभी यार इतनी धूप है, आफ्टरनून कहो इवनिंग कहो एक ही है यार। माय गॉडनेस, आई वाज सिटिंग इन द कार, इट वाज 108 एंड आई लाइक यार हाई गर्मी। यू नो व्हाट, आई एम नॉट नोरा फतेह, बट निकल ही गया मुंह से ओके यार हाई गर्मी। चलिए लेके चलता हूँ आपको अगले गाने की ओर। फरमाइशें पे फरमाइशें आ रही है और ऐसा मौसम बना है बाहर, क्या बताऊँ, हाय कयामत। चलिए कयामत की ओर लेके चलता हूँ आपको। Taking you to the world of Houseful 5, which was brought to you by Phoenicia Films. Here comes a beautiful track. I love the songs of this movie. And here comes Hai Kayamat.
14: Nachdi fir, nachdi fir, nachdi fir.

जी हाँ, सारी की सारी कयामत नच दी फिर टेकन फ्रॉम हाउसफुल 5, जैसा मैंने बताया आपको। चलिए लेके चलता हूँ आपको अगले गाने की और बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही हैं। इनफैक्ट अभिजीत, योर रिक्वेस्ट कमिंग अप नेक्स्ट। इन्होंने रिक्वेस्ट किया, जस्ट लाइक आई ऑलवेज से, मीन गुड म्यूजिक ट्रांसेंड्स ऑल लैंग्वेजेस, एंड व्हेन आई वाज प्लेइंग इंस्टामैटिक कादला, देन आई गॉट अ कॉल फ्रॉम अभिजीत सिंह, यू नो वट, सिंस यू प्लेइंग सॉन्ग्स विच हैज गॉट अ गुड बीट, कैन यू लाइन अप माई सॉन्ग? एब्सोल्युटली। बट उससे पहले बताता हूँ मैं आपको पैशन हेल्थ केयर प्राइमरी केयर, पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर के बारे में। सो किसी का पैशन होता है म्यूजिक, किसी का पैशन होता है प्राइमरी केयर, एंड पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर इज हियर फॉर यू। एंड अगर आपको लगता है कभी कभी कि यार आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर कभी मिलता नहीं है, देखते नहीं है, 5 मिनट में अंदर आए और निकल गए, कभी कभी डॉक्टर भी नहीं आते, पी आके मिलके चले जाते हैं, वेल 5 मिनट्स 10 मिनट्स तो दूर की बात है, कभी कभी डॉक्टर भी नहीं मिलते हैं आपको। वेल एट पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर एवरी अपॉइंटमेंट इज स्केड्यूल फॉर 30 मिनट्स, बिकॉज दे ट्रूली अंडरस्टैंड दैट योर हेल्थ टेक्स टाइम व्हेन यू आर फ्रेजाइल, व्हेन यू आर वल्नरेबल, द डॉक्टर इज द वन हु कैन गिव यू द अश्योरेंस दैट यू नो वॉट, ही योर हेल्थ इज इन हिज हैंड्स एंड ही कैन टेक केयर ऑफ वॉट एवर यू गोइंग थ्रू, बिकॉज एट पैशन हेल्थ यू नॉट जस्ट अ पेशेंट, यू आर कंसिडर्ड अ फैमिली फॉर यू एंड फॉर योर फैमिली, द हेल्थ ऑफ योर आवर कम्युनिटी इज टेकन केयर बाय Passion Health Primary Care. 30 minutes is all it takes to complete your annual physical, anxiety care, fibroscan, or for any alcohol-related liver concerns, vitamin B12 deficiency, well, वगैरह वगैरह वगैरह। अगर आपके पास कोई health issue है and you're not getting proper attention from the doctor, do check out Passion Health Primary Care. You can call 214-666-6259 to book your next appointment. Passion Health Primary Care says your health is our passion.

ये हाँ जी, वाला अभिजीत के रिक्वेस्ट पे सुनाया था हमने आपको ये गाना, मराठी सॉन्ग। जी हाँ, पिंजरा बनाया सोने का, ताला लगाया चाबी का, कुछ वेल द सॉन्ग इज अबाउट मैना। नहीं, महीना नहीं, मैना, तोता मैना, वो मैना। यस जी हाँ, तो सॉन्ग है उस सिलसिले में। चलिए लेके चलता हूँ आपको अगले गाने की ओर। और बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही है, और क्या बताऊँ मैं, इट्स द टाइम, इट्स द वर्ल्ड ऑफ मोनिका। देर आर टू मोनिकाज, एक तो है मोनिका, दैट मोनिका, एंड देन देर इज दिस मोनिका।

0: Lawson Travels Cruises. Honeymoons, custom family trips, stress-free travel every mile. Call 214-631-2458 today.
1: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
2: Kuch bhi nahi. Oura Debt Relief will do it for us.
1: Kya matlab?
2: Oura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
1: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
2: Oura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
1: Ab to karna hi padega, madam.
3: Don't let debt ruin your life. Visit Oura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
4: Main shaadi karungi to Kareena wala designer lehenga pehen ke karungi.
5: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
0: अब करेगा, बिकॉज इंडियन अटायर फ्रिस्को समर सेल इज ऑन. स्टनिंग लहंगास, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी, मेंस एंड किड्स वेयर.
5: वेट, इतना सब और प्राइस?
0: अप टू 25% ऑफ ऑन लहंगास एंड ब्राइडल कलेक्शन. समर सेल थ्रू द एंड ऑफ ऑगस्ट, ओनली एट इंडियन अटायर फ्रिस्को. ट्रेडिशनल हो या फ्यूजन, अब हर आउटफिट बोलेगा
6: मैं हीरो.
7: One mistake doesn't have to define your future. A DWI or DUI charge can bring serious consequences, including license suspension, fines, and even jail time. But you don't have to face it alone. At Mathur Law Offices PC, we provide experienced legal representation in criminal defense matters, including DWI cases.
8: We also assist with related legal issues, including immigration consequences that may arise from criminal charges. Every case is different. The right legal strategy depends on your specific facts and circumstances. Call 214-378-8880. Mathur Law Offices PC. Right advice, right defense.
9: Paid spokesperson, Principal Office, Dallas, Texas.
10: For decades, one man has made the world dance.
9: Now, Mathangi Entertainment Group proudly brings India's Michael Jackson, Prabhu Deva, live to DFW. Joining him are Lauren Gottlieb, Sonal Bhadoria, Alexander Noel, Harini Nilakantan, Natasha Sherpa and Sanve Meghna for the ultimate pan-Indian dance concert. Saturday, August 1st at the Texas Trust CU Theatre, Grand Prairie. Book your tickets now. Call 248-233-3828. Media partner Fun Asia Network.
11: वेलकम वेलकम वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन. यू ट्यून इन टू हम तुम विद आरजे सौमिल. और जैसा मैंने बताया, वी रीच्ड द हाफ टाइम ऑफ माय स्टे टुनाइट. स्टेपिंग इन फॉर योर फेवरेट आरजे आरजे नवनीता. एंड कर रहा हूँ बहुत ही कोशिश के आपका मनोरंजन करूँ. और आपकी खूबसूरत कॉल्स आ रहे हैं और जैसा आपने सुना अभी प्रभुदेवा का कॉन्सर्ट भी आ रहा है कल. डेफिनेटली गो एंड चेक दैट आउट. वेल, प्रभुदेवा वॉज नॉट जस्ट ही क्रिएटेड अ मूवमेंट बैक इन द डे. जैसा मैंने बताया था आपको, मैंने आई प्लेड दैट सॉन्ग दुनिया दिल वालों की प्रेमी देश. Same time, along the same time, there was this movie, which is Hum Se Hai Mukabla, and iska jo signature song tha. Of course, they have recreated this song. Original ki baat hi kuch alag thi. Miriam, thank you for requesting this beautiful track, and yes, original song coming your way.

जी हाँ, दैट वाज मुकाबला मुकाबला. वेल, प्रभुदेवा लाइव इज हैपनिंग दिस वीकेंड, सो बताता हूँ मैं आपको हाउ यू कैन गेट अ चांस टू विन अ टिकट फॉर प्रभुदेवा लाइव. मथंगी एंटरटेनमेंट ग्रुप प्राउडली ब्रिंग्स इंडियाज माइकल जैक्सन, प्रभुदेवा द वन एंड ओनली लाइव इन DFW. जॉइनिंग हिम आर लॉरेन गॉटलिब, सोनल भदुरिया, अलेक्सेंडर नोएल और हरिणी नीलकंतन, Natasha Sherpa and Sanve Meghna for the ultimate pan-Indian dance concert. जी हाँ, ये होने वाला है सैटरडे जो है कल अगस्त 1st को at Texas Trust Credit Union Theatre, Grand Prairie. इतने सारे आर्टिस्ट और डांसर्स और कोरियोग्राफर्स लेके आ रहे हैं एंड द मैन हिमसेल्फ, द वन हु क्रिएट द मूवमेंट एंड मूव्ड द नेशन, प्रभुदेवा लाइव हैपनिंग टुमारो अगस्त 1st. बुक योर टिकट्स नाउ. यू कैन कॉल 248-233-3828. Media partner is Phanesha Network. And here's your chance to give away, to win one of the tickets for the event. आपको मुझे बताना है इस जो मैंने गाना बजाया वो कौन सी मूवी से लिया था. एंड इफ़ यू द मोर मूवी नेम्स यू गिव मी, वेदर इट वॉज हिंदी नेम, तमिल नेम, तेलुगु नेम, द मोर चांसेस यू गेट अ चांस टू विन प्रभुदेवा लाइव. 972-235-5555 है स्टूडियो का नंबर. एंड बहुत सारी रिक्वेस्ट आई है. इनफैक्ट मोहम्मद भाई, तृप्ति, नुक्ता, हसन भाई, आपकी सब रिक्वेस्ट लाइंड अप है. अगर आपको कुछ सुनना हो, कुछ सुनाना हो तो ज़रूर कॉल कीजिए. 972-235-5555 है स्टूडियो का नंबर. क्योंकि यार बिन तेरे सनम

जी हाँ, आई गॉट द विनर, थैंक यू सो मच, एंड आना ही पड़ा आपके लिए, जालिम है दिल की लगी. थैंक यू सो मच फॉर प्लेइंग अलॉन्ग एंड पार्टिसिपेटिंग. बहुत सारे रिक्वेस्ट आ रही है, बहुत सारे सही जवाब भी मुझे मिले हैं, और चलिए लेके चलता हूँ आपको कड़ी से कड़ी जुड़ाते हुए अगले गाने की ओर. और बहुत ही खूबसूरत रिक्वेस्ट आई थी, इनफैक्ट तृप्ति इज सेलिब्रेटिंग हर बर्थडे एंड हर यंग डॉटर कॉल्ड एंड सेड माई मॉम इज सेलिब्रेटिंग हर बर्थडे, कैन आई रिक्वेस्ट अ सॉन्ग. सो आई आस्क्ड हर इफ यू वॉन्ट टू गो ऑन एयर एंड से समथिंग स्पेशल टू योर मॉम ऑन एयर एंड शेयर विद द लिसनर्स ऑफ फनीशा. शी वॉज अ लिटिल कॉयस, शी सेड नहीं, मेरे को बस सॉन्ग डेडिकेट करना है, तो आप अगर प्ले कर सकते हो तो आई सेड येस जरूर. आई वॉज थिंकिंग यार मेरी प्यारी अम्मी कोई ऐसा सॉन्ग, बट द सॉन्ग शी रिक्वेस्टेड इज सो क्यूट. द सॉन्ग इज फ्रॉम द मूवी हम, एंड हम का कितने अच्छे गाने थे, और द सिग्नेचर ट्रैक ऑफ कोर्स इज जुम्मा चुम्मा दे दे. एंड व्हेन शी वाज टॉकिंग टू मी इन शी वाज टेलिंग मी अबाउट द सॉन्ग नेम, तो होता है ना कभी कभी एक्सेंट से आपको पता चल जाता है कि कितनों किसकी हिंदी कितनी शुद्ध होगी, राइट. सो मैंने पूछा उनसे कि यार आपने तो सॉन्ग बहुत ही अच्छा रिक्वेस्ट किया, आपको पता है इस सॉन्ग का मतलब, लिरिक्स का मतलब, जो दे मॉम जंप्ड इन, शी सेड नहीं पता नहीं सॉन्ग का लिरिक्स का मतलब, बट आई सेड आई वाज ओनली गोना आस्क फॉर जुम्मा, शी इज टू यंग फॉर द सेकंड पार्ट, बट आई वाज ओनली आस्क फॉर जुम्मा. सो तृप्ति, हैप्पी बर्थडे टू यू फ्रॉम द एंटायर टीम ऑफ फनीशा एंड द लिसनर्स ऑफ फनीशा. हैप्पी हैप्पी हैप्पी बर्थडे टू यू तृप्ति. हियर कम्स ब्यूटिफुल सॉन्ग दैट वॉज रिक्वेस्टेड बाई योर ब्यूटिफुल डॉटर साईशा.

भी चल दिया, मुझे मत आकर था, अरे तू बोली थी पिछले जुम्मे को चुम्मा दूंगी अगले जुम्मे को।

0: तुमने कभी इंश्योरेंस लिया?
1: लिया।
0: कभी पॉलिसी समझ भी आया?
1: नहीं आया।
0: मुझे भी नहीं आया। आएगा भी कैसे, इंश्योरेंस चीज ही ऐसी है, इसलिए स्मार्ट लोग चूज करते हैं सिनारा इंक एंड हुमेरा जुमानी इंश्योरेंस। वेदर इट्स होम, ऑटो, हेल्थ और बिजनेस, एवरी पॉलिसी इज कस्टमाइज्ड अराउंड यू। होटल्स, मोटेल्स, गैस स्टेशंस एंड स्मॉल बिजनेसेस, दे हेल्प प्रोटेक्ट व्हाट यू वर्कड हार्ड फॉर। No confusion, no unnecessary extras. Call Humera Jamani at Sonata Inc. 972-863-7772. That's 972-863-7772.
2: Visit www.sanadainc.com today.
3: Jaane wo kaun sa desh jahan tum chale gaye.
2: आपका डॉक्टर गया लॉन्ग वेकेशन पर, कोई बात नहीं। पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर के मल्टीपल लोकेशंस, एक्सपीरियंस फिजिशियंस के साथ क्वालिटी केयर कभी नहीं रुकती। और सिर्फ ट्रीटमेंट ही नहीं, आज ही अपना एनुअल फिजिकल शेड्यूल कीजिए। रेगुलर स्क्रीनिंग्स के साथ डिप्रेशन और एंजाइटी स्क्रीनिंग, अल्कोहल हेल्थ स्क्रीनिंग, फाइब्रो स्कैन, विटामिन B12 टेस्टिंग और बहुत कुछ। पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर, हेल्थ केयर दैट नेवर टेक्स अ वेकेशन।
4: कॉल 214-666-6259 टू बुक योर अपॉइंटमेंट्स टुडे।
5: जिंदगी एक रंगमंच है
6: और घर ढूंढना सिर्फ इंटरवल। असली क्लाइमेक्स तो तब है जब क्लोजिंग स्मूथ हो, पेपर वर्क क्लियर हो और चाबी आपके हाथ में हो। पर्दा गिरने से पहले फर्स्ट यूनाइटेड टेक्सास टाइटल, हम पक्का करते हैं कि घर सच में आपका हो, हर कदम आपके साथ।
4: कॉल 972-897-1530, firstunitedtexastitle.com।
0: देसी फ्लेवर्स भी और टेक्सास के फेवरेट्स भी, अब सब कुछ मिलेगा एक ही जगह HEB में। सोना मसूरी राइस, नानक पनीर, पाले जी बिस्किट्स और बहुत कुछ, वही ऑथेंटिक स्वाद जिसके साथ आप बड़े हुए हैं। और साथ ही HEB के एक्सक्लूसिव टेक्सन फेवरेट्स जो आपको यहाँ पसंद है। अब एक ही शॉपिंग ट्रिप में ज्यादा काम निपटाइए और इस समर जरूर देखिए HEB के नए DFW स्टोर्स, मिड सिटीज, अर्विंग और मर्फी में खुल रहे हैं। तो आज ही अपने नजदीकी HEB पर जाएं और खरीदिए अपने ट्रेडिशनल्स और टेक्सन फेवरेट्स। HEB, हियर एवरीथिंग इज बेटर।
7: Hello Texas Parivar, where do you go when bank says no? Are you self-employed and are you struggling with your qualification? Yes, we have loan options for you, so call KJ Kamna Co at 214-845-4189 kyunki aapka bharosa hi meri pehchan hai and this 96641.
8: यार मेरे फोन में हम दोनों के कितने सेल्फीज है यार।
9: तो चल उन सेल्फीज से पिज़्ज़ास खाते हैं।
8: What?
6: This friendship day, bring your friendship to Fun Pizza Kitchen. Post a selfie with your friends on Instagram, tag Fun Pizza Kitchen and enjoy 10% off your bill or a free garlic bread. Offer valid till August 3rd. Visit funpizzakitchen.com for more details.
10: एक्सीडेंट के बाद इंश्योरेंस कंपनी से डील करना बहुत मुश्किल हो गया था। ना वो हेल्प कर रहे थे, ना मुझे समझ आ रहा था कि क्या करूं। आई फेल्ट कम्प्लीटली स्टक। फिर मैंने ओमर ख्वाजा टीम को कॉल किया और सब कुछ चेंज हो गया। उन्होंने सारे कॉल्स हैंडल किए, मेरी तरफ से बात की और इंश्योर किया कि मुझे फेयर ट्रीटमेंट मिले। हर स्टेप पे मुझे अपडेट किया, सब कुछ क्लियरली समझाया और मेरी टेंशन कम कर दी। उन्होंने मेरी केस के लिए सच में फाइट की और आज मैं दिल से थैंकफुल हूँ।
4: कॉल नाउ टू 833-GET-OMAR, द लॉ ऑफिसेज ऑफ ओमर ख्वाजा। आपका हक, उनके जिम्मेदारी।
11: Hi, this is Akshay Kumar and you're listening to Fun Asia Radio.

यहाँ तेरे दिल में छे हम तुम कैंट लिव विद विदाउट हम तुम। वेलकम वेलकम वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, यू ट्यून इन टू हम तुम विद आरजे सौमिल और रहूंगा आपके साथ में 8 बजे तक और पूरी कर रहा हूँ आपकी रिक्वेस्ट एक के बाद एक। इतनी अच्छी रिक्वेस्ट, बस आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है, आपकी रिक्वेस्ट पूरी करने में के लिए मेरे पास एक ही रिक्वेस्ट है आपके पास कि यार आप ऐसा गाना रिक्वेस्ट करिए फ्राइडे नाइट है जिसमें हो थोड़ी बीट तो बात बन जाएगी, राइट। चलिए लेके चलता हूँ आपको अगले गाने की ओर। और कॉल आई थी, इनफैक्ट किसकी कॉल थी है? मैं बताता हूँ आपको, नुक्ता की कॉल थी और इनको सुनना था धुरेंद्र का गाना और मैंने सोचा यार फ्राइडे नाइट है, थोड़ा आई वांट टू प्ले अ ब्यूटीफुल रोमांटिक ट्रैक बट आई डोंट वांट टू स्लो इट डाउन, आई वांट टू कीप द माहौल कीप द एम्बियंस गोइंग, सो आई सेड आई एम गोना प्ले गहरा हुआ विद अ ट्विस्ट, हियर इट कम्स।

जी हाँ, रंग इश्क का इनका गहरा हुआ। अगर इश्क का कोई रंग होता तो क्या होता? विल इट बी ब्लू, विल इट बी पिंक? आई थिंक इट विल बी मच डीपर दैन ब्लू और पिंक। इट कुड बी समथिंग एज इनोसेंट एज प्लेन वेनिला वाइट, और इट कुड एनकम्पस एवरीथिंग एल्स एंड इट कुड बी ब्लैक। रंग इनका इश्क का रंग गहरा हुआ। उम्मीद करता हूँ आपको ये गाना पसंद आएगा। दिस वर्जन ऑफ गहरा हुआ सॉन्ग इज़ परफेक्ट फॉर फ्राइडे इवनिंग। चलिए लेके चलता हूँ आपको अगले गाने की ओर, और बताता हूँ मैं आपको, इट्स ऑल अबाउट द मनी। सोविल क्या बात कर रहे हो, मैं बताता हूँ। वी आर इन दैट टाइम ऑफ द ईयर वेयर अ लॉट ऑफ पीपल हैव टू प्लान अबाउट देयर टैक्सेस। नवंबर दिसंबर माइट बी टू लेट टू मेक सम एडजस्टमेंट्स एंड ट्रेनिंग, सो इफ यू हैव टू डू सम प्लानिंग, लेट मी टॉक टू यू अबाउट एजी फिनटैक्स। वेल, दिस पार्ट ऑफ द शो इज प्राउडली ब्रॉट टू यू बाय एजी फिनटैक्स, वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग टैक्स एंड अकाउंटिंग फर्म्स in the United States. Whether you're an individual, a startup, or an established business, AG Fintax offers innovative financial solutions tailored to your needs. From bookkeeping, payroll, accounting, and bank and credit card reconciliation to proactive tax planning, tax compliance, financial reporting, and business advisory services, they help you keep your finances organized and compliant, and you stay future ready. They're trusted, efficient, and committed to your success. AG Fintax is your partner in building a stronger financial future. Ji haan, inki website hai agfintax.com, aur aap inko call kar sakte ho at their office number 469-942-9888. That is 469-942-9888. Kyunki at the end of the year, at the end of the day, yaar, it's all about the money.

जी हाँ, इट्स ऑल अबाउट द मनी। ये हो मुसीबत ना हो तो ज्यादा मुसीबत, पैसा ये पैसा। लेकिन फ्रॉम टोटल धमाल चलिए लेके चलता हूँ आपको अगली रिक्वेस्ट की ओर, और सुनाता हूँ मैं आपको ब्यूटीफुल सॉन्ग बाय नोरा फतेही, टेकिंग यू टू द वर्ल्ड ऑफ जॉन अब्राहम एंड नोरा फतेही, टेकिंग यू टू द वर्ल्ड ऑफ सत्यमेव जयते।

जी हाँ, दैट वाज दिल बर टेकन फ्रॉम सत्यमेव जयते, एंड द नेक्स्ट सॉन्ग इज रिक्वेस्टेड बाय तृप्ति, एंड दिस विल टेक अस टू द ब्रेक, एंड ब्रेक के उस पार मिलूंगा मैं आपको, विल पिक अप सम पेस, एंड फ्राइडे की रात है, फ्राइडे की नाइट है और डांस तो बनता ही है, सो दिस सॉन्ग विल टेक अस टू द ब्रेक.

0: The Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: कहाँ गया, कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
3: कौन सा?
2: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है।
3: अरे सारे तो सेम है।
2: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये ये ये देखो ये वाला।
3: ओह हाँ, ये तो अलग है।
4: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है। From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection, now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit Shri Krishna.